0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM. वो मैं थोड़ा सा जो डिटेल ले रहा था मैं सोहेल अफरीद साहब के बयान की, तो मैंने कहा चले अभी वो उसमें फिर कंप्लीट कर लेता हूँ. उनका कहना था काबीना के इजलास से वो खिताब कर रहे थे, उनका कि बिलावल के नाना और जनरल यहिया ने बांग्लादेश को हमसे जुदा किया, अब बिलावल के वालिद और एक और मशरकी पाकिस्तान चाह रहे हैं जो हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे. उन्होंने हुकूमत वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की और गवर्नर की जानिब से सिक्योरिटी इजलास की सदारत को आइन और जमहूरियत पर हमला करार दिया. उनका कहना था कि वफाक की मौजूदा पॉलिसी ना तो खैर पख्तूनख्वा में मौसर है ना ही बलोचिस्तान में. दो तहाई अक्सरियत वाली मुंतखब हुकूमत और काबीना की मौजूदगी में गवर्नर का सिक्योरिटी इजलास बुलाना इंतहाई अफसोसनाक और गैर आइनी अमल है. आईजी और चीफ सेक्रेटरी किसी भी गैर आइनी या गैर कानूनी हुक्म पर अमल ना करें. हम हर हाल में पुरअमन रहेंगे और सिर्फ आइन और कानून की बात करेंगे. अब जिस तरह के बयानात दोनों तरफ से जारी हैं और कोई अमल नहीं हो रहा, यानी गवर्नर राज लगा देंगे, एमरजेंसी लगा देंगे, इस्लामाबाद मार्च करेंगे, वहीं घूम रहे फिर रहे हैं, तो कहीं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान को नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही? इस पर बात करेंगे आगे चल के. कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे. स्टे ट्यून.
1: यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक आपके लिए लाए हैं गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम की एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आप घर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं और हुकूमत से 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक का लोन हासिल करें जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है. ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें कोई एग्जाम भी नहीं है, कोई क्रेडिट चेक नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, कोई पर्सनल गारंटी नहीं और ना ही कोई इनकम रिक्वायरमेंट. इनकी फीस सिर्फ $199 है. अभी कॉल कर लें 4372643175. इट्स 4372643175. कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए. शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं. इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है. मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल. कॉल शिराज हुसैन 6472714147 6472714147. SSR ऑटो रिपेयर 3438 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट स्कारब्रो वार्डन और शेपर्ड का इंटरसेक्शन 24/7 ऑटो रिपेयर वेरी क्लोज टू हाईवे 401. तमाम मेजर रिपेयर वर्क करते हैं. बॉडी शॉप, एक्सीडेंटल रिपेयर, डेंटिंग पेंटिंग, इंजन रिपेयर, ऑयल चेंज, टायर चेंज, ब्रेक पैड्स एंड राउटर, व्हील अलाइनमेंट, बैटरी एंड एसी सर्विस. 24/7 टोइंग सर्विस भी अवेलेबल है. SSR ऑटो रिपेयर कॉल नजीर चौधरी, अवैस चौधरी और मुनीर हुसैन 6473217444. इट्स 6473217444.
2: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में. 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं. बारबेक्यू आइटम्स बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज. जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन. पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868. बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829868.
1: हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो फरीजा हज अदा करे. अल खैर ग्रुप दुनिया का नंबर एक हज ग्रुप है जिन्हें सऊदी अरब की तरफ से इस साल का बेहतरीन ग्रुप करार दिया गया है. पिछले 30 सालों से बेहतरीन हज और उमरा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और अगले साल हज की सादत हासिल करना चाहते हैं तो अल खैर के नॉर्थ अमेरिका के लिए एक्सक्लूसिव ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सफरुल मोमिन से राब्ता करें. बेहतरीन पैकेजेस, मुकम्मल रहनुमाई और बेहतरीन इंतजामात. मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए साद शेख और आरिफ शेख 4166782743. इट्स 4166782743. क्या आप अपने कारोबार या इंतखाबी मुहिम को नुमाया करना चाहते हैं? प्रिंट प्रोमो कनाडा आपके साथ है. अपने लोगों के साथ कस्टम टी शर्ट, हुडीज और जैकेट्स बनवाएं. ऑटोमोटिव कारोबार के लिए कस्टम लाइसेंस प्लेट फ्रेम्स, ऑयल चेंज स्टिकर्स और पेपर फ्लोर मैट्स दस्तयाब हैं. सियासी जमातों और इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए पुरकशिश और मजबूत लॉन साइंस भी बनवा सकते हैं. बेहतरीन मयार, मुनासिब कीमत और काबिल एतमाद सर्विस. आज ही कॉल करें 6473359550. इट्स 6473359550 या विजिट कीजिए printpromocanada.com. Print Promo Canada, आपका कारोबार हर जगह नुमाया.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा। इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
3: अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर काउंसलर कैंडिडेट नाइला सईद फ्रॉम वॉट 7 मिसिसागा। आई एम एन एजुकेटर, मदर ऑफ 3 डॉटर्स, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राउडली सर्विंग द कम्युनिटी लास्ट 28 ईयर्स। वोट एंड सपोर्ट, मैं 28 साल से कम्युनिटी के साथ जुड़ी हूँ और मैंने अपनी सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ एस्टैब्लिश किया है, जिसके जरिए से हजारों सब्सिडाइज चाइल्ड केयर स्पेसेस क्रिएट हुए हैं, कई सौ जॉब्स क्रिएट हुई हैं। नाउ आई वांट टू मेक अ रियल चेंज इन व्हाट 7। आई एम ब्रिंगिंग दैट प्रैक्टिकल कंपैशनेट लीडरशिप ऑन द टेबल एंड आई नीड योर हेल्प टू बी योर वॉइस। आई नीड योर सपोर्ट टू बिकम योर रिप्रेजेंटेटिव फॉर व्हाट 7 मिसिसागा एज अ काउंसलर कैंडिडेट।
4: जी हाँ, वार्ड 7 मिसागा से काउंसलर कैंडिडेट हैं नाला सईद साहबा, और बड़ी प्रोफेशनल हैं, बिजनेस वेमेन हैं, वेरी क्वालिफाइड हैं। अगर आप वार्ड 7 में रहते हैं मिसागा में, तो नाला सईद साहबा को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू उनसे करें। नाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बिजी है मुझे पता है, और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कोई जो एडवांस पोलिंग है उस हवाले से बता दीजिएगा कि कब हो रही है, और अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किस तरह से आपसे रब्ता करे।
5: जी डेफिनेटली, एडवांस पोल शुरू हो चुके हैं कल से।
4: ठीक हो गया।
5: और कल और आज जो था वो सिर्फ मिसिसागा सिविक सेंटर में थे।
4: ठीक है।
5: और जो है अब 11 तारीख तक हैं, जो है एडवांस पोल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और कल से जो है और भी कई साइट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, जैसे कि ह्यूरॉन कम्युनिटी सेंटर है, वहां पर कर सकते हैं अपना वोट कास्ट, और जो है मिसिसागा सिविक सेंटर भी लगातार 11 तारीख तक रहेगा, और उसके अलावा जो है ये सुपर स्टोर है मेविस पर, वहाँ सेकंड फ्लोर पर, वहाँ पर भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, और जो बाकी की जो साइट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, हमसे राबता कर सकते हैं। अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, राइड की जरूरत है, तो हमें जो है वो फोन के जरिए से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, तो हम उनके राइड का इंतजाम कर सकते हैं। जो भी अगर उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, वो अगर उनका वोटिंग कार्ड उन्होंने रिसीव नहीं किया है, या फिर जो है वो और कुछ उनका एड्रेस चेंज हुआ है और उनको जो है नए एड्रेस पर जो है वो कैसे वोट कास्ट कर सकते हैं, तो ये इस हवाले से हमसे राबता कर सकते हैं, हम उनको हेल्प कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं।
4: वेरी राइट। और जनाब नंबर आप नोट कर लें, 6477998098, 6477998098। आई रिपीट, 6477998098 पे आप रब्ता कर लीजिए। naila@nailasaid.ca जो है वो इनका ईमेल एड्रेस है, और nailasaid.ca इनकी वेबसाइट है। अच्छा नाला साहब, आप अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आपका, जो उसकी थोड़ी सी ये बाउंड्रीज बता दीजिए कि कौन कौन इलाके हैं जिसमें लोग रहने वाले, बाज़ को नई आइडिया होता है, उनको थोड़ा सा वो आइडिया दे दें।
5: जी बिल्कुल, ये कुक्सविल का एरिया है, इसमें फेयरवुड का भी एरिया आता है, और ये बर्नम थ्रॉप से लेकर जो है QEW और कॉथरा से लेकर मेविस तक है इसकी बाउंड्रीज। और अगर फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज हमसे डायरेक्ट राबता कर सकते हैं 6477998098 पे, और वो अपनी जो है एरिया को चेक भी कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे मैप भी है, और वेबसाइट जो है nailasaid.ca, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। और अगर फिर भी अगर ये वो चाहते हैं कि हम उनकी जो है हेल्प कर सके कि उनका नियरेस्ट सेंटर क्या है और कब वो वोट डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, तो प्लीज डायरेक्टली रीच आउट टू अस।
4: एंड फॉर कॉन्टेक्ट आप कॉल कर लीजिए 6477998098। आखिर में ये भी सवाल, जाहिर है बहुत से लोग इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्यों लोग नाला सईद को वोट दें?
5: जी बिल्कुल वाजिब सवाल है कि क्यों नायला सईद को वोट दें. मैं एक तो काफी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ आ रही हूँ. मैं 28 साल का तजुर्बा है और पिछले 3 साल का मिसिसागा सिटी के साथ काम करने का, चाहे वो जोनिंग के हवाले से हो, प्लानिंग डिपार्टमेंट के हवाले से हो, बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस का स्ट्रगल हो, और मैंने वो फैमिलीज का स्ट्रगल मैंने खुद झेला है और वो स्ट्रगल से मैं खुद गुजरी हूँ. तो मैं फैमिलीज की, अपने सीनियर्स की परेशानियों को बखूबी समझती हूँ और उनके उस स्ट्रगल को मैं बखूबी महसूस कर सकती, उस तकलीफ को मैं बखूबी महसूस कर सकती हूँ. तो मैं अब तैयार हूँ अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करने के लिए, अपने आप को कमिट करने के लिए कम्युनिटी के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए. सो मैं और मेरे जो मेरी एजुकेशन है वो मास्टर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अंडर ग्रेड मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है. मैं एजुकेटर हूँ और जो है पिछले जो 2 साल में मैंने मिसिसागा में जो सब्सिडाइज चाइल्ड केयर सेंटर्स हम 11 खड़े कर रहे हैं उसके जरिए से हमने कई 100 लोकल जॉब्स क्रिएट की हैं. सो दैट्स द प्रैक्टिकल एंड कंपैशनेट लीडरशिप आई एम ब्रिंगिंग ऑन द टेबल.
4: वही राज जी बिल्कुल. और यकीनन आप अगर वार्ड 7 मिसिसागा में हैं तो जरूर नाला सईद साहब को सपोर्ट कीजिए, उन्हें वोट कीजिए. नाला जी थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी गुड लक. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. थैंक
5: यू.
4: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. नाला सईद वार्ड 7 मिसिसागा से काउंसलर के उम्मीदवार हैं. अगर आप वार्ड 7 में रहते हैं तो आप उन्हें जरूर सपोर्ट कीजिए. nalasaeed.ca पे जाके मजीद इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं. अच्छा, हम साइंसदानों ने खबरदार किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंसानियत को ही खत्म कर सकती है. इंसानियत के खात्मे की बात होती है तो इंसानी दिमाग में अमून, एटमी धमाके, खतरनाक वायरस, टर्मिनेटर जैसे रोबोट्स, मतलब कहते हैं कि जिस तरह फिल्मों में आप देखते हैं कि कोई ऐसी आफत आ गई कि उसके बाद जो है लोग शायद उससे बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी. लेकिन हकीकत इससे भी कहीं ज़्यादा खामोश और पेचीदा हो सकती है, माहिरीन का यह ख्याल है. बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि सबसे बड़ा ख़तरा यह नहीं कि कोई मशीन अचानक इंसानों के खिलाफ जंग शुरू कर देगी, बल्कि यह कि इंसान खुद अपनी सोचने और फैसला करने की सलाहियत AI के हवाले करता चला जाएगा. शेफील्ड हॉलाम यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स और मसनू जहानत के माहिर डॉक्टर सैम्यूल विनेंजी के मुताबिक मुसलसल AI पर इंसार इंसानों की तनकीदी सोच, मनसूबाबंदी और फैसला साजी की सलाहियत को बतदरीज कम कर सकता है. माहिरीन के मुताबिक मसला एक दिन में पैदा नहीं होगा, बल्कि हम छोटे छोटे काम AI के सपोर्ट करते जाएंगे. तहरीर, तहकीक, कोडिंग, फैसले, मालूम का तजिया और वक्त के साथ इंसान के लिए खुद सोचने के बजाय मशीन से जवाब लेना ज़्यादा आसान महसूस होने लगेगा. और यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि इंसान अहम फैसलों जब अपने राय पर AI को ज्यादा काबिल एतमाद समझने लगेगा तो फिर नतीजे भयानक हो सकते हैं और एक छोटी सी गलती सभी कुछ तबाह कर सकती है. AI पे जरूर इन्हिसार कीजिए, लेकिन अपनी इनपुट और अपनी सलाहियत का भी इस्तेमाल जो है बहुत जरूरी है. 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM शिंगार बैंकेट हॉल 50 कैनेडी रोड साउथ यूनिट 10 ब्राम्पटन 50 से 400 अफराद तक की पार्टी, शादी, मेहंदी, मंगनी, बर्थडे, इसके लिए आप यहाँ पे बेहतरीन 2 हॉल्स हैं, खूबसूरत और साथ ही बहुत लजीज खाने हैं. 20 साल से इसी बिजनेस में हैं, मेलनी से अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं. केटरिंग के सब जबरदस्त पैकेजेस हैं, 1099 से स्टार्ट हो रहे हैं. और पाकिस्तानी स्टाइल का गाजर का हलवा 5 किलो की ट्रे, 11 पाउंड की ट्रे आपको $100 में मिलेगी और 5.5 पाउंड की $55 में. रेडियो पाकिस्तान के वाले दिन पर 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो मजीद आपको सस्ता मिल जाएगा. किचन हेल्प की भी इन्हें जरूरत है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इधर ही साहब से रब्ता करें. 416-721-5000 416-721-5000

0: बाहर हाथ कर एक दूसरे का रिकॉर्ड करें। बाकी मेरे नजदीक आप दूसरी वो जो बात कर रहे हैं ना
1: जी,
0: DGISPR को फौज का एक अहदेदार होने के नाते आपको जरूरत क्या है कि
1: नहीं, वो जब गैर मुल्की मीडिया से बात हो रही होती है तो फिर जाहिर है बताना तो तस्दीक तो करनी पड़ती है ना सर। मतलब अगर वहां पे अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ मसला हो जाता है तो आपको बताना होता है कि भाई हाँ हमारे बंदे वहां मौजूद हैं ऑलरेडी।
0: तो फिर से दर पर्दा सर दुनिया को पता तो है ना।
1: लेकिन फिर भी वो अगर कोई चीज न्यूज में रिपोर्ट जाती है तो उसको फिर हिफ्ज़े मात कर दूंगे।
0: लेकिन मैं भट्टी साहब इस बात पे मकसद मुतफिक नहीं हूँ कि हम सऊदी अरब का मकसद ठेका तो ले लिया हमने, लेकिन हमारी कौम को क्या मिला है? जब तक कौम के भी थोड़े बहुत मसाइल हैं भट्टी साहब, उनके भी महंगाई के आगे पीछे बिजली पानी गैस इनको भी खत्म करना चाहिए, तब जाके कोई मामला ठीक होते हैं। ठीक है, हो जाएंगे या होंगे, तो ये ऐसी बातें नहीं, पहले कौम का भी देखिए।
1: ठीक सर, थैंक यू सर, गुजार चीमा साहब जो हैं वो हमारे इस वक्त टिकटॉक पे हैं। तो उनका जी गवर्नर ने गैर जो है वो कानूनी इजलास बुलाया था और उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो हैं बंदूकों गोलियों से डरते हैं, इमरान खान की हिमायत बहुत ज़्यादा है, लोग खौफजदा हैं। और जब भुट्टो साहब को कहते हैं फांसी दी थी तो कितने लोग निकले थे, और नवाज शरीफ जब आए थे तब कितने लोग निकले थे, तो डर खौफ की वजह से लोग जो हैं वो इतने नहीं आते। 7997 सर आप ऑन एयर हैं, 7997 सर आप ऑन एयर हैं,
2: कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया शुक्रिया सर।
2: देखिए आपने जो कहा ना ये नूरा कुश्ती, ये पाकिस्तान में 75 साल से 70 साल से नूरा कुश्ती
1: हो रही है।
2: और हम जो है हम ये पाकिस्तान ऊपर जाएगा, यूं हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी,
1: नहीं नहीं होगी
2: वो हम नहीं रही। एक सेकंड, इंशाल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह चाहे,
1: आपका
2: मतलब है अभी तक जो अभी जो जो बदबख्तियां हुई है क्या अल्लाह नहीं चाहता था?
1: नहीं नहीं,
2: आपके अच्छा हो जाता सब।
1: हर काम के लिए जो है दुआ होती है, ये दुआ है क्योंकि अल्लाह खुदा रब्बी।
2: हाँ दुआ है, लेकिन मुझे बताया ये हमारी अपनी कोताहियां हैं।
1: अच्छा ठीक,
2: ये हम जिम्मेदार हैं।
1: ठीक,
2: 75 साल से आप तो मेरे से छोटे हैं उम्र में।
1: जी जी,
2: आपने अय्यूब खान का माशाल्लाह नहीं देखा?
1: नहीं नहीं, मैंने पता,
2: आपने पता नहीं और कौन कौन सी चीजें नहीं देखी? भुट्टो साहब को जो नहीं देखा कि वो क्या कर रहे थे,
1: वो भी बस
2: लोग कहते नहीं सुना। बात सुने, भुट्टो साहब ने जो जो जो जो मसले खराब किए थे ना भुट्टो साहब ने, अभी तो उनको बहुत अजीम बना के पेश किया जाता है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से आगे जा रहा, ठीक है अय्यूब खान की कुछ गलतियां थी, लेकिन भुट्टो साहब ने आके नेशनलाइजेशन किया। अब वो नेशनलाइजेशन ना उनको सोशलिज्म का पता था ना इस्लाम का पता था। इस्लामिक सोशलिज्म क्या होता है? अगर जो लोग पढ़ते हैं जो साइंस को समझते हैं वो बताएंगे आपको कि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहरहाल तो ये जो आपने कहा ना नूरा कुश्ती, आपने बहुत आज है ना एक और बहुत जबरदस्त आपने कोटेशन दिया है, ठीक है, कि ये नूरा कुश्ती होती रहेगी, आप देखते रहेंगे। और ये हमारी आवाम भी ऐसी है, मुझे बताया ये PTI वाले हैं, इनके मुतालबात में कहीं पब्लिक की सपोर्ट या पब्लिक की इमीडिएट इशू पे कोई बात नजर आती है आपको? मुझे तो नहीं नजर आती। एक ही बात है कि इमरान खान को छोड़ दे, ठीक है। जो अकलमंद होते ना ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट क्या फौजी की, फौजी अगर अकलमंद होते तो बोलते भाई ये लो छोड़ा हमने इमरान खान को, जाओ जी खान साहब चुप लो, जो करना है अपने जो भी तोड़ना ताड़ना है तोड़ लो कर लो, क्या कर लेते हो आप? एक तो ये बात हो गई, बाकी बात हो गई उसकी कि फौज हमारी है। मुझे एक बात बताएं, एक फौज है हमारी, उसकी ट्रेनिंग पूरी, लोगों का पूरा पूरा कैरियर होता है, ठीक है। क्या फौज के करियर में यही है कि कोई जनरल जाके पब्लिक प्लेसेस में बैठ जाए और कब्जा कर ले?
1: कौन
2: भाई ये प्रोफेशनल लोग हैं?
1: कौन सी पब्लिक प्लेस पे कब्जा किया कौन सी?
2: भाई अभी इलेक्शन जो हुआ हमारा, लोग तो उस पर एतराज है ना।
1: बात ये हर चीज पे होता है एतराज, तो हर चीज पे होगा।
2: नहीं मैं देखे ना हमारे लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे फौजी अच्छे ट्रेंड है, कस्बे के साथ है। मक्का मदीना क्या पूरी जमीन ही सब अल्लाह की, जाना इंसाफी होगी आपको खड़े हो जाना है अगर आप वाकई इस्लामी फौज हो तो।
1: चलिए ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5415 सर आप ऑन है, 5415 5415।
3: अस्सलाम वालेकुम
1: वरहमतुल्लाह। जी वाले सलाम सर, वालेकुम सलाम।
3: यहाँ पट्टी साहब क्या हाल है?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल।
3: अच्छा पट्टी साहब, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ जिन गलियों में वो घूम फिर रहा है काफिला,
1: शहर में घूम रहा है,
3: वहाँ तो शहरों में कर लें, देहात में कर लें, गलियां कर लें, सड़कें कर लें, पूरे KPK में कर लें, वहां तो भट्टी साहब रात को ये खुद ये किसी मिनिस्टर को बोले उन गलियों में से घूम के दिखाए। तो भट्टी साहब

0: देखें, एक तरफ हम मुल्क हालत जंग में है और दूसरी तरफ ये उन लोगों को जो अफगानिस्तान के तालिबान, जो उनके भी तालिबान होंगे, वो अगर इस जुलूस के बेस में काफले के अंदर शामिल हो जाएं, वहां पे बम ब्लास्ट करके इनकी पूरी क्यादत को उड़ा दें,
1: अल्लाह ना करे सर ऐसा।
0: मैं कहता हूं अल्लाह ना करे, लेकिन अगर वो उड़ा दें, उस इसकी कोई गारंटी है किसी के पास? कोई सिक्योरिटी चेक है इसका?
1: तो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है सर, दहशतगर्दी के तो
0: नहीं। जब आप गलत जगह पे गलत पिच पे खेलेंगे तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं।
1: ठीक है
0: बट्टी साहब, बात ये है कि वो जिन एरियों में और जो हालात है उनको उड़ा के वो कहेंगे जी पाकिस्तानी फौज ने कर दिया, तो एक खाना जंगी बनी कि ना बनी मुल्क के अंदर।
1: ठीक,
0: मतलब है ये ना आकबत अंदेशी, इसको आप आला किस्म की अगर कोई मिसाल कहना चाहते वो कह सकते हैं बट्टी साहब।
1: ठीक है सर, ठीक हो गया।
0: और दूसरी बात बट्टी साहब, बात ये है कि मैं जब आपको कहता होता हूँ ना कि आप कहते हैं कि यार ऐसी बात नहीं है, वो पाकिस्तानी मुहिबे वतन है, मेरा दिल करता है कि वो मुहिबे वतन हूँ, वो पाकिस्तानी हूँ
1: जी,
0: लेकिन भट्टी साहब एक अमल होता है और एक मुसलसल अमल है, एक दिन की बात नहीं, दो दिन की बात नहीं, चार दिन की बात नहीं, भट्टी साहब लगातार एक पार्टी ने डे वन से ये वतीरा बना लिया हुआ है, वो चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं चाहे वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक गर्दान रट ली हुई है कि पाकिस्तान की फौज ये कर गई है, ये कर गई, वो मतलब इनका टारगेट क्या है? पाकिस्तान की फौज है। और भट्टी साहब, जिन मुल्कों की फौजें नहीं होती फिर वहां पे दूसरे मुल्क की फौजें होती हैं भट्टी साहब,
1: ये तो फिर होता है,
0: ये होता है ना
1: जी।
0: तो मतलब ये कि जो भी इस पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना चाहता है वो उसका एजेंडा नहीं, वो दुश्मन का एजेंडा है और वो उस एजेंडे पे पूरा पूरा अमल दरामद कर रहा है।
1: ठीक हो गया सर, ठीक सर।
0: और मैं आज भी कहता हूँ, ये जो आपको टिकट पे मैसेज आया था
1: जी जी,
0: मैं वो क्लियर कर दूं, भट्टी साहब फैसल करीम कुंडी ने कोई अमनो अमान का इजलास नहीं लिया, उसने कोई आर्डर नहीं किया, उसने सिर्फ ब्रीफिंग ली है कि सूबे में क्या हो रहा है और वो वफाक का नुमाइंदा है भट्टी साहब।
1: ठीक हो गया सर,
0: ये हक है आईन तौर पे।
1: ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 8156 आप ऑन है सर, 8156
2: हेलो
1: जी जी, आप ऑन है सर जी जी।
2: देखें जी, वो उन्होंने जो किया है वो गैर कानूनी काम किया है, तो पीपल पार्टी का गवर्नर है, उनको अपने आप को बड़ा जमहूरी कहते हैं, तो उनको उससे पूछना चाहिए किसके कहने पे भी उसने इजलास बुलाया।
1: ठीक है,
2: या तो भाई उसको 10 दिन से शोर मचा हुआ है इमरजेंसी को तो लगा देना, फिर वो सही लगेगा, बैठेगा, कंट्रोल करेगा, ऐसे छुप के क्या खेलना, सामने आके लगाए वो करे। बाकी हो गया क्या था, देखें पब्लिक नहीं है उनके
1: नहीं
2: साथ,
1: ये जो आपस में जो लगे हुए नूरा कुश्ती नहीं हो रही है, कोई करते कराते हैं नहीं, बस एक दूसरे को बस ऐसे ही बस।
2: मुझे नहीं जी, दोनों पार्टी जो एक दूसरे से डिले हुए, उनको भी पता है इस दफा इस्लामाबाद आए तो उन्होंने वो 9 मई जैसे 100, 200, 300, 400 लोगों को गोलियों से मार देना है, तो ये होगा और उसका डर है, इनको ये डर है कि भाई ये सच्ची सचमुची क्यों जो लेजिटिमेट हुकूमत नहीं होती है ना उसको हमेशा डर ही लगा रहता है कि हमारे साथ ये ना हो जाए वो ना, क्योंकि मुल्क अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई है 48% जो है मुल्क की आबादी वो $3 पर डे से भी कम कमाती है, दहशतगर्दी में आप नंबर 1 हो गए हैं पूरी दुनिया में, अदालती सिस्टम में नंबर 4 ही मुल्क आपसे नीचे, बहुत सारी
1: वो तो फिर केपी में ज्यादा हो रही है ना, तो वो तो फिर मसला तो है ना, उसको कैसे करें, वो तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि वहां पे करने दें ऑपरेशन,
2: फेडरल ऑपरेशन तो पहले भी किए थे, लाही शरीफ आया था उसने बगैर पूछे वो ऑपरेशन शुरू कर दिया था, क्या नाम था उसके ऑपरेशन का ऑपरेशन तो बेसब हुए, कोई भी प्रोटेक्टिव नहीं हुए बल्कि उसके उल्ट असर हुए. तो ऑपरेशन इज नॉट द सोल्यूशन. सोल्यूशन है आप बैठे हैं, सबको साथ मिलाए, सारी पार्टियों को सोल्यूशन ढूंढे और उस पर अमल करें.
1: ठीक हो गया सर. राइट, थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया. 6141 आप ऑन रहे सर. 6141
3: बड़ी साहब.
1: वालेकुम सलाम सर.
3: बड़ी साहब अपनी हुकूमत को कह दें कि फूलों के हार रख के बैठे, क्योंकि जब गोलियों की बात होती है तो लोग इस्लामाबाद आने से डरते हैं और वो इनकलाब लेके आएंगे. और हम लोग जो हैं वो कहते हैं कि बांग्लादेश की तरह कोई आएगा हुकूमत को उतार के फेंक देगा और जो है हम लोग आके हुकूमत में बैठ जाएंगे. जैसे ईरान का भी कहा गया था कि जनाब 3.5 लाख लोग सिर्फ टोरंटो में निकले, तो आप लोग तैयार हैं ना, हम हुकूमत गिरा देंगे और आप आके बैठ जाना. ये खालिद जी का घर है जनाब, ये जबरदस्त काम है. ये ऐसे होता तो कब का हो चुका होता. और जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात करता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे हमला कर रहा होता है. ये रीढ़ की हड्डी की बात है. और जहां बात हो रही है हरमैन शरीफैन की, बड़ी साहब वो दिल ही क्या है, वो दिल ही क्या जिसमें शहीद होने का जज्बा ना हो और फिर वहां जाके जान जाए तो कैजुअलिटी तो नहीं होती, वो तो जन्नत अल फकीह है. वो तो जनाब वो तो ख्वाहिश यार मुसलमान की. बड़ी साहब एक बात मुझे कहने ने.
1: जी जी.
3: देखें ये जो बात हो रही है ना नूरा कुश्ती वाली, ये ऐसा है कि उन्होंने इन्हें उसी हिसाब से रखा और बहुत अच्छे कंट्रोल में रखा. मैं हुकूमत को सिर्फ एक ही ब्लेम दूंगा, वो ये कि आप लोग अवाम के पैसे खर्च कर रहे हो, 2000 लोग नहीं निकले तो 2000 का तो आप लोगों ने जनाब कंटेनर रख दिए उधर.
1: ठीक हो गया.
3: तो ये ज्यादा शो किया उन्होंने. बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया. कौसर, कौसर साहब, कौसर सोनक आप आने रहे सर. कौसर
4: जी. बड़ी साहब, बड़ी साहब एक गल की समझ नहीं लगती.
1: असि
4: वाहद कौम हैगे आ,
1: ते
4: साडे गुआंढी जिहड़ा साडा दुश्मन हैगा उन्हां अपनी फौज हार भी जाए तो उन्होंने तमगे देंदे ने, आवाम भी उन्होंने जनाब चुक के रखदी है. असि जित भी जाइए तो साडी आवाम फिर फौज तो राजी नहीं. इस चीज की समझ नहीं लगती. खुदा दा वास्ता जे फौज नाल प्यार करो. दूसरी चीज बड़ी साहब, मैं पीटीआई नू हमेशा मजाक च लिया सी, लेकिन अज वाकई मैं सीरियस लै रहा. जदों मैं मीडिया ने सुनिया है उन्हां दी डिमांड है जी असीं ड्रोन नहीं उड़ान देंगे तुहानूं, इत्थे असीं इह असला यूज नहीं करन देंगे. ड्रोन उड़ान नाल ओह फर्क की पैंदा, अल्लाह माफी दे को बेपरदगी होंदी है. इस एरिए च नहीं असीं करन देंगे ऑपरेशन, इस एरिए मेरे ख्याल नाउज़ बिल्ला के अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई उत्थे हादसा हो जाए ते जिन्ना दे बच्चे डेथ होएगी, असीं उन्हां नूं मुबारकबाद देईए या असीं अफसोस करिए ते लो जी तुहाडी गवर्नमेंट ने, अल्लाह माफी दे के तुहाडी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ही नहीं करन देंदी.
1: तारिक भाई, तारिक खान साहब, तारिक खान साहब आप आने रहे सर जी. तारिक भाई, तारिक खान साहब वालेकुम सलाम सर. वालेकुम सलाम जी. बिल्कुल आप सुनाए सर.
5: मैं ये कहूंगा कि जब 2000 निकलना है उनको तो इतनी खौफ सुधरती क्यों, इतने कंटेनर ले लिया आपने, लोगों के कंटेनर लगा दिए, ये लगा दिया, पूरा इस्लामाबाद आपने ब्लॉक कर दिया, आपने धड़के मारे, आप धड़के मारे, आप सारे काम कर लो जब 2000 की थे उनके वो तो
1: ठीक हो.
5: अजीब अजीब अजीब गेम इन्होंने किया 2000 के लिए बड़ा पैकेट लगाया है. नंबर एक बात, मतलब दूसरी बात में कर रहा था
1: जी जी,
5: ये टेक्निक है, थोड़ा सा लेट कर रहे हैं ये लोग भी, इनकी टेक्निक है, थोड़ा घूम के और जहाँ जाए टेक्निक है, ये भी थोड़ा सा
1: टेक्निक
5: कर रहे हैं. क्यों
1: ठीक.
5: सर सामने सामने सिर्फ स्टेट फायर खुलता है,
1: सही हो गया,
5: आपको सोचना पड़ेगा.
1: ठीक
5: हो जा रही है सामने वो स्टेट,
1: ठीक
5: वो तो आखिरी
1: है ना. ठीक हो गया सर,
5: ये लेंगे उनकी,
1: चले
5: वो तो स्टेट फायर खोलेंगे वहाँ से.
1: चले ताई भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. जरदारी साहब आप आने रहे सर. जरदारी साहब लास्ट कॉल होगी. जरदारी साहब आप आने रहे दरली. जी जी
6: पटेल साहब, देखें फौज की अपनी जगह पे इज्जत है प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से. दुनिया भर में फौजें होती हैं, ये नहीं कि अपने मुल्क की फतेह करें और दूसरा जाके आप किराए के जो आप बने, ये इट्स नॉट एब्सोल्युटली राइट. और अगर जंग शुरू हो गई और मामला शुरू हो गए और ईरान के साथ मामला हमारा बिगड़ गया तो 10 साल तक भुगतोगे. और कल मैंने बात करी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने और आप इतना हाइप क्रिएट कर
1: रहे हैं, आप लिसन पता क्या होता है,
6: आप सुन लिया करें, आप सुन मेरे फिर देखे आप इंटरप्ट कर रहे हैं. देखो मैंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग को किया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी मोटरवेज और अपना जितने भी मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे, और ये पाकिस्तान की बात हो रही, मैं बड़ा खुश हुआ। डिटेल न्यूज जब चली सारे के सारे आपके न मुल्तान में, न ये जो सारा सिराकी बेल्ट है उसमें, न केपी में, न बलूचिस्तान में, न सिंध में बात करो तो पीपुल्स पार्टी ने क्या, मैं पीपुल्स पार्टी का को ठेकेदार हूँ, पीपुल्स पार्टी आज दफन हो जाए हम सिंधियों की जान छूट जाए, क्योंकि हम तो समझते हैं, आप समझने लगे कि पीपुल्स पार्टी पंजाब की एजेंट है, इस्तेदार के लिए वो इस हद तक जाती है।
7: चले,
6: हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए पाकिस्तान के अंदर।
7: चलो ठीक हो सर साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जितनी कॉल ले सकते थे मैं माजरा, जो लोग रह गए हैं तो इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे फिर उनको भी ऑनर ले लें। आपसे चाहेंगे इजाजत, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी हारने की चीज़ एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशत जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अब कल शाम 7 बजे। स्टूडियो इंजीनियर कायनात, मेज़बान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द-ए-माला।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, फेरी बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: just don't care.
1: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
2: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. Toronto से just 2 hours north on Highway 400. Perfect getaway, Grand Departure Resort near Fairy Sound, Muskoka. Her season ke liye perfect destination. Private beach, indoor swimming pool, or stay in cozy, sundar cottages and hotel rooms. Khana, hamare special restaurant mein bahut special cuisines hain by a brilliant Indian chef. So call today at 705-378-2210. 705-378-2210.
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एटसेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 9 946 1000 for Midland and Sears and 416 757 1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर.
0: कैशपॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड. अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.

0: सबके लिए
1: एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट
0: नंबर टू कॉल इज 416-910-2000 दैट्स 416-910-2000
2: कुछ लोगों का नाम उनके काम

0: एशियन कनेक्शन रेडियो सुन रहे सारे श्रोताओं का करने से निकाल स्वागत मैं रणवीर चौहान आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और आज है 8 अक्टूबर दिन है थर्सडे और बड़ा ही प्यारा मौसम है 17 डिग्री टेम्परेचर और सनी डे आउटसाइड। सो आपका और हमारा साथ दोपहर के 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे सुनते हो आप प्रोग्राम 10 AM टू 12 PM 2 hours नॉन स्टॉप ऑन CMR 101.3 FM। और कोई बातचीत करना चाहें स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। प्रोग्राम के बाद मेरा डायरेक्ट नंबर 416-910-2000 416-910-2000। और काफ़ी खबरें आज लेकर हम हाजिर हुए हैं, काफ़ी एंटरटेनमेंट भी होगा आज के प्रोग्राम में और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स होगी आज के प्रोग्राम में और शुरुआत करेंगे हम क्रिकेट अपडेट के साथ। गिरीश जी वेलकम सर, हाउ आर यू?
1: जी रणवीर जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग लिसनर्स। और क्रिकेट चेस पहले कोई बहुत बड़ी गेम नहीं हो रही लेकिन इस वीकेंड पे काफी गेम्स आ रही हैं और स्टार्ट कर दें नामीबिया एंड यूएस। यूएस की टीम लगातार सरप्राइज कर रही है और इन्होंने जो अपना पूल हैगा वो इस वेले टॉप ते ने। सो नामीबिया जो 50 ओवर की गेम हुई बेसिकली दे आर गैटिंग रेडी फॉर ODI वर्ल्ड कप जो कि एक साल दूर आ, नैक्सट ईयर इन्होंने दिनों च वर्ल्ड कप का पूरा खुमार होगा। और नामीबिया दे बैटेड फर्स्ट 298 for 9 एंड यूएस 299 for 6 48.5 ओवर इन्होंने ये मैच जित लिया। और मोनांक पटेल यूएसए के कैप्टन ने एंड ही मेड सेंचुरी 108 और इन्होंने 100 बॉलों पर यह सेंचुरी बनाई। और नामीबिया के जो ओपनर थे माइकल एंड ही मेड सेंचुरी एज वैल 124 और 11 चौके इन्होंने लगाए। सो 298 वॉज द स्कोर। और फॉर यूएस इट वॉज आदिल, इन्होंने 4 विकेट्स मिली एंड जय सूर्या इन्होंने 3 विकेट्स मिली। लेकिन बैटिंग च ऑफकोर्स ओपनर और कैप्टन मोनांक पटेल 108, स्मिथ पटेल अनदर ओपनर मेड 50 एंड वन डाउन बैटर जय सूर्या जो कि ऑलराउंडर ने एंड ही आल्सो ही टुक 3 विकेट्स एंड 74 9 इन्होंने चौके लगाए और एक छक्का लगाया। सो ये जो मैच आ इस वेले खत्म हो चुका। इंडिया और वैसट इंडीज ऑफकोर्स सीरीज चल रही है, 1-0 तो इंडिया लीड कर रहा शानदार तरीके। पहला जो मैच है लखनऊ इन्होंने जित लिया 8 विकेट ते। और हुण दूसरा जिहड़ा मैच है दैट इज स्केड्यूल 9:30 कल सवेरे 9:30 ते टोरंटो टाइम दे हिसाब नाल ए मैच स्टार्ट होगा। MS धोनी हुणा दा शहर हैगा ब्यूटीफुल रांची, उत्थे ए मैच खेलिया जाऊगा और उहदी असीं लगातार अपडेट्स 10 बजे तो बाद पेश करांगे। सो 5 मैचां दी सीरीज दा अगला जिहड़ा गेम आ दैट इज ऑन संडे 9:30 और उस नैक्सट वीक 2 होर गेम्स हैगियां ये भी गेम जिहड़ियां लगातार असीं लाइव लैके आवांगे। सेम टाइम ते पाकिस्तान जो ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है वुमेन अंडर 19 दी, उहदे विच श्रीलंका पाकिस्तान और बंगलादेश दीआं टीमां खेल रहीआं ने, वह भी काफ़ी अच्छी इस वेले मैच चल रहे हैं। फैसलाबाद जो मैच होया वो श्रीलंका वुमेन दे बीट बंगलादेश बाय 6 विकेट्स और इन्हों के कुछ मैचिज होर बाकी ने और इन्हों का जो फाइनल हैगा दैट इज स्कैजल ऑन फ्राइडे 16 अक्टूबर और यह भी टूरनामेंट इस वेले चल रहा है। और कल अर्ली मॉर्निंग 3:30 ते साउथ अफ्रीका एंड आस्ट्रेलिया पहला जरा टेस्ट मैच है यह भी स्कैजल हैगा। सो कल काफ़ी जीडिया बड़िया टीम एक्शन हो गई इस श्रीलंका और पाकिस्तान इन्हों की जी T20 सीरीज आ दे आर आलसो गोइंग टू स्टार्ट टुमारो। सो अर्ली मॉर्निंग तुसी टेस्ट देख सकते हो आस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका का, दोनों टीम टॉप ते ने एंड ऑफकोर्स उन्हों का मैच जो काफ़ी बढ़िया होंगे। एंड श्रीलंका और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो इन्हों की जी T20 सीरीज आ रावलपिंडी सारे मैचिस हो गए और पहला जो मैच आ 9 बजे सवेरे खेलिया जाऊगा। सो 9 o'clock तुम यह मैच देख सकते हो और 9:30 ऑफकोर्स इंडिया और वैसट इंडीज। सो पैरल दोनों T20 गेम्स जो तुम देख सकते हो। रणबीर जी बैक टू यू।
0: प्रोग्राम तो सुन रहे एशियन कनेक्शन 101.3 FM ते साडा कोई भी गलबात करना चाहते हो तो नंबर है 416-910-2000 416-910-2000।

0: एशियन कनेक्शन रेडियो सुन रहे सभी लिसनर का एक बार फिर हार्दिक हार्दिक स्वागत। और क्रिकेट अपडेट आपने सुनी अभी ग्रीष काले की जबानी, और साथ साथ कुछ ना कुछ इंश्योरेंस की बात भी करेंगे, कुछ टिप्स ग्रीष जी नाल
1: जी बिल्कुल
0: दे दिया करें। और कल कुछ मैसेज जारी करें, उनको बोलो कि आधी पंजाबी बोला करें आधी हिंदी।
1: अच्छा हिंदी भी बोला करें।
0: आधी बोला करें बीच बीच में।
1: I'll try my best।
0: हमारा दोस्त होता था वो बड़ी मजेदार हिंदी बोलता था।
1: अच्छा
0: कहते यार मुझे हिंदी हिंदी नहीं आती है।
1: अच्छा
0: पर कहना मैं बोलूंगा जरूर। हाँ एक और हमारे स्पॉन्सर थे, मैंने कहा थोड़ी हिंदी बोलो, कहता तुम थोड़ा ट्रांसलेट कर दिया करो, कहता मेरा हाथ टाइट है हिंदी में। नहीं खैर दोनों मिक्स ऑडियंस है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वैसे तो जड़ी ऐसी पंजाबी बोलते हैं वो भी बड़ी सिंपल पंजाबी,
1: सिंपल पंजाबी है,
0: सिंपल वर्ड्स होते हैं, हर बंदा समझ जाता है।
1: जी जी जी,
0: लेकिन सिंपल वर्ड्स विच
1: मेरे ख्याल कार्तिक हुनी भी पंजाबी समझने लग गए।
0: हाँ जी हाँ जी जी, कार्तिक तो पंजाबी आम बंदे को ज्यादा समझता है।
1: चलो जी अब हिंदी में बात करते हैं कि जो जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा अपनी पॉलिसी को अप टू डेट रखें। और इसके अलावा अभी भी समर जैसा फील हो रहा है, एंड मेनी पीपल यू नो दे आर गोइंग आउट और अपनी वेकेशन पे जा रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि विजिटर एंड ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा साथ रखें, और जाने से पहले उसको पॉलिसी को एक्टिवेट कर लें। और फोन पे आजकल सारा कुछ हो जाता है, मेक श्योर कि जो जिससे भी आप पॉलिसी लें, चाहे आप ऑनलाइन किसी से बाय करें या फिर किसी एजेंट से, अपनी जो हेल्थ कंडीशन है वो 100% राइट डिक्लेयर करें। लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां चोर होती हैं जी, पैसे नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सारा कुछ सही बताएंगे और पूरा उनका प्रीमियम देंगे तो वो भी आपको पैसे देंगे इनकेस आपको जरूरत हो, और इनकेस कोई आपको कोई क्लेम हो जाए तो। इसके अलावा जो मेरी सर्विसेज है उसमें आरडीएसपी ऑफकोर्स डिसेबिलिटी प्लान, बहुत लोगों को अवेयरनेस मिल रही है अभी और बिगनिंग है, इसकी लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक दिन दो दिन वाला प्लान नहीं है कि आपने शुरू किया और आपके पैसे अकाउंट में आ गए, लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत ही बढ़िया प्लान है गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा का, फेडरल गवर्नमेंट का। और कैनेडा में कहीं भी हो, कोई भी हो, चाहे डिसेबल हो, अगर वो क्वालिफाई कर गया, सीआरए ने डॉक्टर ने अप्रूव कर दिया, तो उसको अप टू 90,000 की ग्रांट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कोई भी बात करनी, माई फोन नंबर इज 416-451-4001।
0: 416-451-4001। और छोटी जी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर खबरें काफ़ी हैं आज के प्रोग्राम में। एक तो सर बॉलीवुड तो जो नाना पाटेकर साहब,
1: हाँ,
0: अब हमारे बीच नहीं रहे, और हार्ट अटैक हुआ, उनको इमिजिएटली राइट वे ले जाया गया हॉस्पिटल
1: जी,
0: लेकिन वहाँ उनको डेड डिक्लेयर किया गया।
1: 75 ईयर्स ओल्ड।
0: क्या जबरदस्त उनकी अदाकारी आप कह सकते हो, जो डायलॉग डिलीवरी है बड़ी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी है।
1: ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है, वो वाला डायलॉग उन्होंने सब तो फेमस ही वेलकम मूवी था।
0: क्या
1: ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है, बस लाइफ पार्टनर की जरूरत है। दैट वाज हिज वेरी फनी मूवी। और देखो कितने वर्सेटाइल एक्टर से गए, किसी भी तरह की एक्टिंग करा लो, सीरियस करा लो, एज ए कॉप उन्होंने पुलिस विच, और उस तो बाद फिर उन्होंने जी कॉमेडी हुई है वेलकम मूवी च, सदा बहार मूवी बन गई, और अनिल कपूर उन्होंने मिलकर क्या मूवी बनाई सी सारी। एंड ऑफकोर्स ये जरा खाली होगी जगह भरना बहुत मुश्किल है।
0: या बिल्कुल, ऐसे कलाकार जो है वो बार बार इंडस्ट्री में नहीं देखने को मिलते। क्या जबरदस्त, इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, कुछ गीत भी उनके ऊपर पिक्चराइज किए हुए लगाएंगे, बड़े बड़े कटने गीत जिन्हें उन्होंने ऊपर पिक्चराइज किए हुए
1: जी,
0: लेकिन है जितने भी हैं जो भी हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े
1: बहुत
0: बहुत बढ़िया, और इनके बारे में बातचीत चलती रहेगी, मिलता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
2: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda ji 647-822-9607।
3: यदि आप होंडा की कोई भी न्यू और यूज्ड कार या वैन लेना चाहते हो तो एक बार बोल्टन होंडा ऑफिस जरूर जाओ। इनका दावा है कि यहाँ आपको बेस्ट डील्स के साथ साथ सर्विस भी बेस्ट मिलेगी। आपका क्रेडिट खराब है? डोंट वरी, फाइनेंसिंग ऑन द स्पॉट, सोचो मत, एड्रेस नोट करो, 65 पिल्सवर्थ रोड बोल्टन। यू कैन कॉल 905-457-0888, दैट्स 905-457-0888, और विजिट boltonhonda.ca।
4: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट मैंगो लीव्स खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
5: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए है, जे दुख होवे दसना जरूर चाहिए है। और आप शायद इसलिए नहीं हंस रहे कि आपके दांतों में रहता है दर्द। डोंट वरी, जस्ट गो टू डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स लाइक फिलिंग ब्रेसेस इम्प्लांट और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। एड्रेस 735 ट्वेन एवेन्यू मिसिसागा नॉर्थ ऑफ डेरी ऑन मेविस रोड। टेलीफोन 2894010076 दैट इज 2894010076। थोड़ा थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिदा, दुख होवे दसना जरूर चाहिदा। Always remember dental office of Dr. नील गजर।
6: यदि आप एजुकेशन सेल्स में एक एक्साइटिंग करियर ढूंढ रहे हैं तो कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज इज हायरिंग एजुकेशन रिक्रूटर्स सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एजेंट्स टू प्रमोट हाई डिमांड एंड करियर फोकस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन पर्सनल सपोर्ट वर्कर अर्ली चाइल्ड केयर असिस्टेंट क्लाउड बेस्ड आईटी सपोर्ट साइबर सिक्योरिटी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिव एआई। यदि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो या आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस है तो कॉल करें 416-850-1456 और ईमेल योर रेज्यूमे study@thecanadiancollege.ca। कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज, बिल्ड योर करियर, क्रिएट योर फ्यूचर।
7: यदि आपको घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स तो एक ही नाम कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। हमारी कम्युनिटी का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी स्टाइलिश डिजाइंस एंड ग्रेट प्राइसिंग। चाहे सनरूम हो या कस्टम कैनोपी सब कुछ मिलेगा यहाँ। एशियन कनेक्शंस रेडियो का रेफरेंस देने पर मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। फॉर फ्री कोट अभी कॉल करें 416-831-4790 दैट इज 416-831-4790 और विजिट कैलिफोर्निया ऑनिंग.ca।

0: राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: स्टेशन कनेक्शन रेडियो सुन रहे सभी लिसनर्स का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सर आपकी सेवा में हाजिर हूँ और गिरीश जी मेरा साथ दे रहे हैं स्टूडियो में। गिरीश जी, काफी खबरें आज डिस्कस करने वाली और नाना पाटेकर के बारे में बातचीत भी होगी। सो क्या उमदा कलाकार थे और साथ साथ कैनेडियन कॉन्टेंट भी, जो कैनेडा के बारे में जो खबरें आ रही हैं, सो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सब तो पहले मेयर दी इलेक्शन जी चल रही है टोरंटो दी, इट्स हॉट राइट नाउ, राइट?
1: हॉट हो गई और कल भी ज्यादा डिबेट हुई और हेड टू हेड डिबेट सी की, क्योंकि तीसरे जड़े से उन्होंने स्टेप साइड हो गए। सो हुण ये दोनों रह गए, ओलिविया चाओ एंड ब्रैड ब्रैडफोर्ड।
0: हाँ, दोनों भी टक्कर है दोनों के बीच।
1: काफी हीटिंग सीगा, कम उत्थे काफी हीटेड हो गया सीगा और एक टाइम ते तो समय नहीं आ रहा कि दोनों कह की रहे, क्योंकि दोनों लगातार बोल रहे थे।
0: अच्छा,
1: और ए कई बार कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता। पहले मिसिसागा की जो हुई डिबेट ओ भी कुछ इस तरह का होया और कल रात भी लोगों ने विटनेस किया कि इन्होंने दरम्यान भी जेडे इस वेले, क्योंकि बहुत क्लोज हो गई फाइट रणबीर जी, चार पॉइंट्स रह गए सारे।
0: अच्छा, ओके,
1: चार पॉइंट्स इज नथिंग बेसिकली, 50-50 हो गए चांसेस। और ये देखो कि 10 दिन पहले 11 पॉइंट्स गए, सारे कहते कि चाओ नु हराना बहुत मुश्किल आ, लेकिन हुण उन्होंने स्टेप साइड होने करके क्रिस अलैगजेंडर जेडे सीगे उदे करके जेडी आ ए हैगी आ नंबर्स बहुत क्लोज चले गए ने, और आने वाले दिनों च हो सकता कि ब्रैडफोर्ड साहब उपर चले जाए इन्हों।
0: अच्छा,
1: अगेन
0: लेट्स सी,
1: ए कहते कि 18 टाइम्स आउट ऑफ 20 ये ठीक होंगे, दो बारी गलत भी हो सकते हैं, सो देर आर चांसिस कि ए रोंग भी हो सकते हैं। सो इन्हू लैके तुसी फाइनल डिसीजन नहीं हैगा, फाइनल डिसीजन जेड़ा जनता जनार्दन ने करना हैगा, और ओदे विच हले भी काफी वोटर्स आ जेड़े अनडिसाइडेड आ, उन्हां दे हाथ विच सारी गेम हैगी आ, बट वी आर नॉट टू फार, कुछ ही दिन रह गया। और एदे विच इसे तरह लगातार ये जेड़ा पॉलिटिक्स का माहौल हैगा टोरंटो या बाकी अपने ओंटारियो च, ये गर्मा गर्म चल रहा हैगा।
0: बिल्कुल जी, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और चारों तरफ कल भी हमने रिपोर्ट दी थी मिसागा में, देखो चाकू मारा किसी सपोर्टर को, तो
1: बिल्कुल
0: आज उनके बारे में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, एक बंदा पकड़ भी लिया गया।
1: अच्छा,
0: हाँ, बंदा फड़ भी लिया उन्होंने,
1: वेरी गुड।
0: तो देखो इन्नी जेलसी नहीं होनी चाहिए, राइट, कि पोस्ट लगा रहा है और तुम उनको चाकू मार रहे हो, ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, बस समझ नहीं आ रही।
1: वही लोग कई परसनल लैवल ते लै जांदे आ, बई एक फ्लायर ना जा एक जिहड़ा साइन हैगा ओदे नाल क्या फर्क पै जाना, साइन देख के वैसे भी किन्ने क लोग ओदा माहौल जिहा बन जांदा कि चलो वोटां ते साइन लग्गे तो वोटां हो रही, अदरवाइज साइन देख के आई डोंट थिंक कि अपना माइंड बना हैगा। अजकल इंटरनेट सब दे कोल हैगा, लोग अपनी सर्च करते आ, चैट GPT हैगा, AI हैगा, सब कुछ पता चल जांदा कि केड़ा कैंडीडेट किन्ने पानी च हैगा, उन्हें की कीता हिस्टोरिकली, और उन्हें देख के आई थिंक लोग अपना माइंड बनाते आ। लेकिन अगेन बहुत लोग हैगे जिन्होंने ऑलरेडी माइंड बनाया हैगा, और कुछ ही लोग आ जिन्होंने नहीं बनाया हैगा, उन्होंने हाथ में गेम हैगी। सो और रणबीर जी अपने कैनेडा लिए बहुत अज प्राउड न्यूज आ कि जरा लिटरेचर का नोबल प्राइज सेगा वो कनेडियन मिले।
0: अच्छा,
1: एंड शी इज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और बहुत बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी का, और एन कार्सन इन्हों का नाम हैगा, और इन्होंने जो अपनी बुक्स लिखिया रिसर्च की बेस से इन्हों इनाम मिलया। ये वीक वैसे नोबल प्राइज का ही हैगा, और फ्राइडे न सब तो बड़ा जिहड़ा पीस प्राइज हुंदा उहदा भी नाम अनाउंस किया जाऊगा। एंड ऑफकोर्स यू नो अपने गुआंच बैठे ने बड़े अपने बिग ब्रदर मिस्टर ट्रंप
0: साहब, सुनना कहते हैं इसमें नाराज हो जाएंगे वो,
1: उनकी निगाह मुझे लगातार लगी है।
0: हाँ, तो उनका रिएक्शन आने ही वाला, देखना क्या कहते हैं वो।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अभी आया तो नहीं कोई, उनकी न्यूज तो नहीं आई कोई,
1: हाले तक तो कोई नहीं आया, लेकिन जल्दी आ जाएगा। बट जो फ्राइडे नु आना ओदे विच उनां दा नाम भी हैगा, हालांकि ये जी लिस्ट है ना 280 समथिंग कंटेंडर आ, ये विच रणजीत जी इन्हां चो 287 कैंडिडेट पूरे आ, इन्हां चो कोई भी जित सकदा, आपां सारयां नु बेस्ट विशेस कर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, और अपने लिए प्राउड की गल कि अपने प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क कार्नी साहब का नाम भी है, उन्होंने भी मिल सकता।
0: अच्छा, दैट्स वेरी गुड
1: जी, लेकिन
0: मार्क कार्नी को मिल गया तो फिर तो ट्रंप ने कहना है ये मेरे साथ बहुत ज्यादा नजायज हुई है
1: जी। और देखो ये नॉर्वे की कंपनी है, और ये जेडे कमेटी हैगी पिछले 50 सालों तो ये अवार्ड दे रहे हैं, और ऑफकोर्स पैसे है जो अज इन्होंने मिलिया एन उन्होंने कार्नी कार्सन न, दैट्स क्लोज टू 1.5 मिलियन कनेडियन डॉलर के नाल इन्हों चैक भी मिले, और ये जरा नोबेल प्राइज है मेन प्राइज का वो भी काफ़ी बड़ा प्राइज है, वो चैक मिलना है नाल। आई एम श्योर ट्रंप साहब न चैक बारे कोई नहीं है, लेकिन वो कहें कि एक बारी मैंने ट्रॉफी मिल जाए सारी दुनिया च मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, और पिछले एक साल तो यही कह रहे कि नोबेल प्राइज के उ हकदार ने। कल भी मैं CNN ते इंटरव्यू देख रहा सीगा, और वो भी लगातार निगाह अपनी लगा के बैठे ने कि घड़ी कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने का नाम आ गया जी।
0: हाँ,
1: बट इदा का कुछ हालात लग नहीं रहे जी,
0: लग रहे
1: मैनू तो नहीं लग रहे परसनल लैवल से, बट क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम
0: पर मार्क कार्नी को यदि मिल गया तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी मुझे जो लग रहा है।
1: ਨਵਾਕਰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਕੋ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਯੂ ਨੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ
0: ਚਲੋ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਤੋ ਗਿਵ ਅਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ 416-593-0055 ਪੇ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਆਪ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਮਿਲਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋ ਤੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਕਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ ਗਿਵ ਅਸ ਕਾਲ 416-593-0055 ਜੀ ਜੀ ਗਿਰੀ ਜੀ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹਰੀਕੇਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਯਾਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੋਸਟਨ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅਪ ਟੂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਕੈਟੇਗਰੀ 3 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ $2 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰੀਕੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏ
0: ਓ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
1: ਜੀ
0: ਕੈਸੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ $2-3 ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ $10 ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ $100-150 ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ $500 ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 700-800 ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੁਕੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਊਗੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਡ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹਨੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚੋ ਲੇਕਿਨ ਵੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ
0: ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਮ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਔਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
0: ਔਰ ਖਬਰੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੇ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਗੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਤਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲੀਡਰਸ
1: ਜੀ
0: ਇਨਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
1: ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੈਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 4-5 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਅਲਰਟ ਰਹੋ
0: ਔਰ ਜੋ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ
0: ਜੀ ਆਪ ਏਅਰ ਪੇ ਹੈ ਜੀ ਵਿਪੁਲ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਆਪ
2: ਬਸ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੇ ਲਿਏ ਪੌਪ ਲੀਓ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ
0: ਕੌਨ
2: ਪੌਪ ਲੀਓ
0: ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਓਕੇ
2: ਪੌਪ ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੋਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਇਹ ਸਭ ਪੀਸ ਡਾਇਲੋਗ ਉਸ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਨਕਾ
0: ਚਲੋ ਜੀ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ
2: वैसे कार्नी जी भी लिस्ट में है वैसे हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर कार्नी जी भी लिस्ट में है
0: हाँ हाँ
2: लेकिन पोप का चांसेस ज्यादा है
0: अच्छा पोप का चांसेस ज्यादा है तो अच्छा आपको क्या लगता है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप साहब को यदि ना मिला तो क्या लगता है क्या होगा
2: डोनाल्ड साहब तो वो चिल्लाएंगे हर तरफ हर बार की तरह चिल्लाएंगे
0: हाँ
2: और अगर कार्नी साहब को मिल गया तो फिर स्टोरी कुछ अलग होगी
0: फिर तो स्टोरी अलग ही होगी
2: हाँ जी
0: उन्हें कहना कनाडा हमारा पक्का दुश्मन बन गया
2: फिर और टैरिफ का दौर चलेगा ये सब बहुत चलेगा फिर
0: हाँ टैरिफ ने आ गई कहते ना कमर तोड़ दी ऑलरेडी लेकिन
2: ऑलरेडी यस सर बहुत बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया इकोनॉमी
0: इकोनॉमी सारी खराब होगी। तो चलिए चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: उसके बारे में देखते हैं कि उनको भी मिलना चाहिए नोबल प्राइज के, नहीं
1: बिल्कुल जी,
0: लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं बता रहा था कि पील पुलिस जो, आपको पता कि चोरियां जो रिटेल जो स्टोर जोन में चोरियां बहुत ज्यादा होती थी,
1: हाँ जी,
0: तो पील पुलिस ने एक स्पेशल एक विंग बनाया, यूनिट बनाया, तो वो अब जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं और सिक्योरिटी टीम्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगी ताकि जो शॉपिंग स्टोर्स में चोरी की जो घटनाएं हैं उनको कम से कम किया जा सके।
1: वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी,
0: बहुत ज्यादा,
1: हाँ जी,
0: या
1: सो आई थिंक वो अपने अंडर कॉप्स हो गए तो विच रहोगे यू नो एज ए नॉर्मल ड्रेस, और इन केस कुछ इदा दा हो जाता तो उत्थे उन्होंने पकड़ोगे, सो दैट इज वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड न्यूज, क्योंकि जेडे बिजनेस से ना वो भी बहुत डरे हो सके, खासकर ज्यूलर्स हो गए जेडे वाचिज का कम करते, ईवन कुछ केसिस का सेलफोन के स्टोर से भी इदा के हादसे हुए हैं। सो उन्हों की सेफ्टी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस जरा कस्टमर का ना वो हमेशा आना चाहिए कि लोग खुले दिल ना जान, अपनी फ्रीडम हैगी है, और आने वाले जो कुछ महीने तो पता क्रिसमस नॉट टू फार, और भी शॉपिंग बढ़ती है, मॉलों जी रौनक बढ़ती है।
0: हाँ, तो आज फिर पुलिस ने एक वार्निंग इशू की है कि नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो सीनियर्स हैं,
1: हाँ जी,
0: जैसे एक सीनियर वुमन के जो गोल्ड ज्वेलरी की चोरी हुई थी और ब्रैम्पटन में एक सीनियर वुमन थी, वो $19,000 की गोल्ड ज्वेलरी है चोरी होने का मामला उनका सामने आया, और पुलिस ने जो रेजिडेंट्स हैं स्पेशली सीनियर्स उनको अलर्ट रहने की सलाह दी है कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर आपसे ज्वेलरी या किसी बहाने से कॉन्टेक्ट करता है तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें।
1: बिल्कुल जी,
0: और जो हमारे जितने भी लिसनर हमारे सुन रहे हैं वो भी अपने उनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि बुजुर्गों को शौक होता है कि चल यार मैंने गहने बनाए सारी जिंदगी मैं पहनूं, पहन के बाहर जाऊं।
1: बिल्कुल,
0: और शायद आजकल जैसे पंजाब में था इंडिया में हम बात करते थे कि जमाना रहा नहीं गहने पाके बाहर को मणदा, वो हालात अब यहाँ बन गए,
1: चेन स्नैचिंग होते भी बहुत होती है
0: कनाडा में, कभी ये बात हमने सोची भी नहीं थी कि ऐसा यहाँ भी हो सकता है, तो दैट्स वेरी बैड।
1: ये भी होता है कि पेरेंट्स आते हैं पहली बार और बच्चे उन्होंने कई बार गिफ्ट देते हैं गोल्ड का उन्होंने खुश करने लिए, और पा के फिर बाहर जाते उन्होंने अच्छा फील हों, लेकिन बाहर जेडे उन्होंने निगाह देखो जी लगी होंगी है। और रणवीर जी बहुत सालों तो हो रहा है, ये मतलब 8-10 साल हो गए, हर वेले इदा की न्यूज़ आती रहती है, और ये मामले च भी पुलिस को थोड़ा होर स्टैप जेडे थोड़ा टाइट करना चाहिए कम, और सज़ा जी जरूर चोरों को देनी चाहिए
0: जी। और आज एक और मैं खबर दे दूँ कि जैसे अभी आज 8 अक्टूबर है, राइट,
1: हाँ जी,
0: आज ब्रैम्पटन में जो फायर स्टेशन है ना
1: जी,
0: कुछ लोगों को होता है ना कि फायर फाइटर्स कैसे काम करते हैं, ये कैसे आग बुझाते हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो उनके लिए आप अपने बच्चों को अपनी फैमिलीज को लेके जाएं। आज क्या होने वाला कि जो 225 सेंट्रल पार्क ड्राइव पे जो फायर एंड लाइफ सेफ्टी एजुकेशन सेंटर में ओपन हाउस लगाने जा रहे हैं, वो आज लगेगा दोपहर 3:30 से लेके शाम के 6 बजे तक,
1: राइट,
0: आप वहाँ फैमिलीज को बच्चों को लेके जाएं और फायर फाइटर से मिलने का और फायर सेफ्टी के बारे में जानने का एक बहुत बढ़िया मौका है। वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट
1: ये जरा वीक है ना, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका च हर साल फायर प्रिवेंशन वीक के नू डिक्लेयर किया गया, सो ए अपनिया जेडे स्मोक अलार्म्स ने जेडे कार्बन मोनोऑक्साइड के अलार्म ने उदिया बैटरियां चैक करो, चेंज करो उन्होंने, और कई बार होंगे कि जेडे पुराने लगे हुआ 10 साल की इन्हों की लाइफ होंगी, वैसे उस तो बाद रिप्लेस करना भी बहुत जरूरी होंगे, उन्होंने टेस्ट करो, अगर नीड हैगा तो उन्होंने रिप्लेस करो, क्योंकि विंटर का टाइम आ गया और ये अग्गा बहुत लगदियाँ
0: जी, बिल्कुल,
1: और हूँ तो होर भी रीजन हो गया कि रमीर जी जो छोटे छोटे बाइक जने रख लेंगे ना वो बैटरीज में बहुत अग्गा लग रही हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, बहुत ज्यादा एवरी डे हूँ तो न्यूज़ आ रही है, और बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि तुम वो जीडिया चीज़ा उन्होंने अपने घर के अंदर ना रखो, क्योंकि वो चीप जी है बैटरीज आ, और इस करके उन्होंने फायर जल्दी लग जाता वो करके हादसे बहुत।
0: दैट्स राइट, और जैसे कि आज तो 8 तारीख है, कल 9 फ्राइडे, राइट, 10, 11, 12 तारीख जो है मंडे जो आ रहा है,
1: हाँ जी,
0: वो है थैंक्स गिविंग लॉन्ग वीकेंड।
1: बिल्कुल जी,
0: और इसमें मैं बता दूं कि इस दिन ब्रैम्पटन में जो काफी जो म्युनिसिपल ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे, और ब्रैम्पटन ट्रांजिट की जो हॉलीडे सर्विस लागू होगी,
1: राइट,
0: तो इसलिए यदि कोई आपका सिटी में कोई काम मतलब लटका हुआ है, सिटी रिलेटेड कोई भी काम पेंडिंग है, कहने का मतलब है, तो उसे आप पहले ही प्लान कर सकते हैं, आज और कल में प्लान कर सकते हो
1: जी।
0: तो जी, और 8 अक्टूबर 2026 नाना पाटेकर साहब हमारे बीच नहीं रहे, और नाना पाटेकर साहब क्या जबरदस्त एक्टर, डायलेक्ट डिलीवरी बड़ी पावरफुल डायलेक्ट डिलीवरी थी, और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते थे नाना पाटेकर, क्योंकि क्या होता ना कि जैसे हमने कई बार जब थिएटर करते थे,
1: हाँ जी,
0: तो डायलेक्ट बोलने का एक तरीका होता है, राइट
1: जी जी,
0: एक तो डायलेक्ट बोलना सिंपल,
1: हाँ,
0: और कई बार जब गुस्सा शो करना तो डायलेक्ट को हमने फास्ट करना पड़ता है,
1: हाँ।
0: 90% जो आर्टिस्ट हैं जब डायलेक्ट की डिलीवरी फास्ट करते हैं
1: जी,
0: तो उनकी जो क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है ना, वो प्रोनाउंसिएशन,
1: हाँ जी, हाँ,
0: वर्ड्स की जो क्लैरिटी होती है वो खत्म हो जाती है। ये ऐसे शख्स थे आप उनको जो इनकी रिकॉर्डिंग करके उनको स्लो में करके देखो, एक एक वर्ड क्लियर इनका
1: क्लियर है।
0: ये थिएटर आर्टिस्ट क्या जबरदस्त
1: और डिफरेंट जी उन्होंने एक इमेज सी डिफरेंट जी एक्टिंग करते सके हो।
0: हाँ।
1: बाकी वांगू नहीं सके कि यू नो वो कहते भी सी कहते कि आई डोंट बिलोंग टू फिल्म इंडस्ट्री, कहते मैं पता नहीं थे किस तरह पहुंच गया। ते बड़ी ही सिंपल लाइफ, अपनी सिंपल ड्रेस पाके घूमते जी, कभी तुसी उन्होंने बिल्कुल हाई फाई यू नो उदा नहीं देखोगे कि कोई भी उन्होंने पिक्चर इदा नहीं हैगी।
0: हाँ
1: मूवीज अकॉर्डिंग टू रोल उन्होंने करना पैंता सीगा, बट अदरवाइज ही वाज वेरी डाउन
0: मल्टी मिलियनेयर बंदा, और इनके बारे में खास जाना था कि बड़ी सिंपल ड्रेस में सिंपल उनकी बातचीत और हाँ काम के लिए बड़े वो अपना सिंसियर थे। नाना पाटेकर साहब, कोशिश करेंगे इनके कुछ डायलॉग सुनाए आज निकाल के या कोई गीत सुनाते हैं इनके। और दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ब्रॉट टू बाय राजधानी स्वीट्स, और राजधानी स्वीट्स जितनी भी लोकेशंस हैं उन पे अभी स्पेशल शुरू हो चुका है, और प्योर वेजिटेरियन फूड के लिए एक ही नाम है जो हमारे सिटी में बड़ी तेजी से ग्रो किया है इन्होंने, राजधानी स्वीट्स, और इनकी आई थिंक मोर देन 26 लोकेशंस हैं, ज़्यादा होंगी बल्कि। तो आप राजधानी स्वीट्स .ca पे जाके सारी जानकारी ले सकते हो। तो ब्रेक लगी छोटी जी, खबरें तो बहुत है आज, और उन्होंने अनाउंसमेंट की है अभी लीवे चाहिए, मैं साथ साथ न्यूज़ भी देख रहा था, ए मेक्स कंपेन अनाउंसमेंट ऑफ ऑन बिल्डिंग हाउसिंग। हाँ जी हाँ। अच्छा इन्होंने कहा ना कि काफी जॉब्स भी क्रिएट किए हैं, अली बचाव ने ये कहा
1: हाँ जी, हाँ
0: कि 37,000 डॉलर कहते मेरे टेन्योर में जॉब्स इतनी क्रिएट की गई हैं। तो उनको ये एक मुद्दा लेके जा रहे हैं कि मैंने इतनी हेल्प की है कम्युनिटी की, तो शायद देखो कांटे की टक्कर है बड़ा, जब कांटे की टक्कर जैसे क्रिकेट मैच होता है
1: हाँ,
0: हाँ जी पांच बाले छह रन वो चल रहे भाई
1: कैच ड्रॉप हो गया, आउट हो गया, छक्का लग गया,
0: या दैट्स राइट। तो चलिए जी, बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, और मैं बता दूं कि 31% ऑफ वोट्स जो है, और जो लोग हैं काफ़ी पोलिंग एडवांस पोलिंग जो है लोग करने जा रहे हैं, और 31% लोगों ने कह दिया है कि हम एडवांस पोलिंग ही करेंगे क्योंकि हम एंड तक वेट नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ जितने लोगों की से उम्मीद है इस बारी कि पोलिंग में हिस्सा लें हैं उतना लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। कल भी हमने कवर किया, आज फिर वो न्यूज़ आई है कि लोग कहते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं ना,
1: 4 साल बाद,
0: तो ये 4 साल कहाँ रहते हैं कहते हैं हमें पता नहीं,
1: फिर नहीं देख रहे हैं
0: ये क्या रीज़न है यार, होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो आवाम जो पब्लिक है उनका राइट है इनके ऑफिस में कॉल करके उनसे बात करना, इनसे पूछना,
1: तुसी जाओ वो ये कहंदे कि जी आ साडा ईमेल एड्रेस आ इत्थे सानू अपनी जिहड़ी प्रॉब्लम है वो ईमेल कर दिओ।
0: हाँ।
1: उस तो बाद उन्हां दा मूड जदों होगा उदों तुहानू रिप्लाई करूंगे।
0: नो, नो, नो।
1: और तुसी बार बार किन्नी किन्ना किसे को टाइम, और काफी लोगों च यह भी हुंदा कि ईमेल उन्हां नू पता नहीं हुंदा किद्दां लिखनी है, वो कहंदे छड्डो जी की जाना है, इन्हां दा तो यही हाल आ। और एक वो अपनी वो रिसेप्शनिस्ट कोई बिठा देंदे हैगे आ, ऑफकोर्स उन्हां दी जॉब आ, और कोई भी उत्थे प्रॉब्लम लैके जांदा तां कहंदे जी ईमेल करो, साहब जी बिजी आ, मिनिस्टर साहब बहुत बिजी आ। हुण इह बिजी कित्थे आ, मैं तो यह भी नहीं समझ आया कि बिजी कहते हैं, तो जो काम है लोगों की सेवा करनी, तो पैसे मिलते हैं और टैक्सपेयर की मनी नाल पेमेंट मिलती है, तुसी उन्हां नाल डेली बेस से मिलो ना। लेकिन नहीं इदां दा ये बहुत बड़ी बैड इमेज बनी हुआ कि इलेक्शन तो बाद कोई पॉलिटिशियन नहीं तुहानू नजर आता।
0: हाँ ये क्यों ने अभी अभी जब वो नजर आ रहे हैं तो उनसे पूछो भाई कि क्या आप हमें बाद में भी मिलोगे कि 4 साल बाद ही मिलोगे वोट लेने के लिए। तो चलिए जी, और साथ साथ हम जानकारी देते रहेंगे। और दो इस वक्त जो एरियाज़ के हैं, इस बार एक मैं खबर पढ़ रहा था, कहते ब्रैम्पटन की मेयर की जो इलेक्शन है वो तो लोग ना थाली में परोस के उनको दे रहे हैं पोस्ट, ले जी पैट्रिक ब्राउन जी ये आपकी जो मेयर की सीट है
1: हाँ
0: ये सारी आप ही की है, वो तो उनका बड़ा सॉलिड चल रहा है उनका।
1: हाँ जी,
0: तो उनके जो अपोजिशन के जितने भी लोग खड़े हैं तो किसी में इतना वो है नहीं
1: हाँ,
0: पावर कि उनको टक्कर दे सके,
1: बिल्कुल
0: मतलब कोई आसपास भी नहीं है,
1: आसपास भी
0: नहीं। इसलिए उनकी तो जो सुनने में आया कि उनकी तो सीट जो है वो 100% पक्की है। उस दिन मिलने का मौका मिला
1: अच्छा।
0: और सारे लोग इकट्ठे थे, बॉब दोसांझ जी, पैट्रिक ब्राउन, सारे उनके सपोर्टर्स, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, कहते हमें इस बार इलेक्शन की कोई टेंशन नहीं है,
1: कोई टेंशन नहीं है।
0: लेकिन दो जो मेन सबसे ज्यादा कंसर्न लोगों का है वो है मिसिसागा में और टोरंटो में,
1: और दोनों बड़े शहर,
0: दोनों बड़े शहर हैं।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और टोरंटो में भी मिसिसागा में बड़ी जबरदस्त
1: टक्कर,
0: हाँ जी। तो और देखते हैं कल के प्रोग्राम में बातचीत होगी, कल बताएंगे आपको कि क्या लेटेस्ट पोजीशन है। चलिए जी, और सुनते रहिए एशियन कनेक्शंस 101.3 FM पे, CMR आप सुनते हो, और 10 AM टू 12 PM 2 hours मंडे टू फ्राइडे ऑन वन एंड ओनली CMR 101.3 FM। ब्रेक ले लीजिए।
1: बिल्कुल जी,
0: मेरे खबरें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: खबरें डिस्कस करेंगे सिलसिला। हाँ तो, इंडिया की भी बातें करेंगे, इंडिया भी बड़ा हलचल हो रही है बड़ी जबरदस्त। वो तो राजीव गांधी भाई वो भी अपना पूरा जोश आ गया, पूरा
1: जोश आ गया और
0: एक्टिव हो गया बड़ा।
1: धरने तो करे भैन भरा दोनों ही,
0: दोनों बहन भाई लगे हुए आजकल। वो धक्के मार रहे थे पुलिस वाले को।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: कहना हमें बताओ कहाँ बैठे। कहता एक वीडियो देख, कहता घर जाओ। कहना घर क्या करूंगा बैठ के, मैं घर से निकल के तो ये काम करने आया हूँ, मुझे यही रहने दो।
1: वैसे दैट्स हिज जॉब की देखो जी, वो ऑपोजिशन दे लीडर आ तो उन्हों का कम है हर गल ते क्वेश्चन करना, पूछना, डिटेल पूछनी, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। सो दोनों अपनी जॉब सही कर रहे हैं, लेकिन वायलेंस नहीं होनी चाहिए। चलो जो शांति नाल हो रहा काम वो ठीक है, लेकिन पंजाब दे इलेक्शन जेड़े आ रणवीर जी नेक्स्ट, वो बड़ी बिग थिंग आ। ऑलरेडी जेड़े बीजेपी दे दिग्गज प्लेयर है, बड़े खिलाड़ी आ, वो ऑलरेडी पंजाब दे चक्कर लगा चुके
0: हैं। असली इलेक्शन तो वहां होता है।
1: अमित शाह जी मोदी साहब, देखो अजे मैनू नहीं पता 6-7 महीने पए है, डेट फाइनल अनाउंस नहीं हुई, बट तैयारियां सब ने शुरू कर दी उत्थे।
0: हाँ जबरदस्त।
1: हाँ जी,
0: तो चलिए जी ऐसा करते हैं, गीत सुन दी, एक गीत सुनने, नाना पाटेकर की बात चल रही थी, उनके ऊपर पिक्चर्स किया हुआ गीत, आई थिंक अदनान सामी की आवाज है।
1: अच्छा,
0: और आइए इसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर सिलसिला बातचीत का यूं ही चलता रहेगा। सुनते रहिए एशियन कनेक्शंस ऑन CMR 101.3 FM।

0: इमिग्रेशन।
1: जी हाँ, किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को चाहिए विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा या स्पाउस और पेरेंट्स को इमिग्रेशन दिलानी है तो राजीव रामपाल को मिले 7895 ट्रेनमेर ड्राइव यूनिट 22 इन मिसिसागा एट डिक्सी एंड डेरी। कॉल 416-500-8036, दैट्स 416-500-8036।
0: ब्लू ओशन इमिग्रेशन।
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया है अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले आज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288557 अनाज मार्ट।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड हफ्ते के 24 घंटे और सातों दिन खुले रहते हैं, जो एक ही छत के नीचे तीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ट्रक वॉश करना, तेल बदलना और रिपेयर करना। इनके पास बहुत बड़ा यार्ड है जहाँ काफी कैमरास लगे हुए हैं, ताकि आप ट्रक को वॉश और सर्विस के लिए ड्रॉप करके नेक्स्ट डे पिक कर सको। ट्रक वॉश विद ऑयल चेंज ओनली फॉर $45। फॉर बेटर डील्स एंड बेस्ट सर्विसेज एक बार जाओ ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, 71 स्टैफोर्ड ड्राइव, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9054529955, दैट इज 9054529955.
2: Hello, let's talk about your mortgage. One of your most important financial decision. Right advice at the right time can save you thousands of your hard-earned dollars.
3: Hi, I'm Amit Khurana with Centum Indigo Mortgage Corporation. I provide timely, transparent and expert service for residential and commercial mortgages. Whether you're a new immigrant, self-employed or you're struggling with your credit, I can help you get the right mortgages at the best rates.
2: That's Amit Khurana. Expect expertise, reliability and prompt service at the best rates. Call now. 6473412785, license number M1200871।
1: प्रेम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जितों तुसी हर तरह दी मिठाई ला सकदे हो, बहुत ही वधिया क्वालिटी ते बहुत ही रीजनेबल प्राइस। प्योर वेजिटेरियन फूड तुसी बैठ के भी खा सकदे हो ते केटरिंग भी करवा सकदे हो। इन्हां दे स्पेशल्स नोट करो, वेडिंग भाजी $6 पर पाउंड, चना भटूरा $7.99 ते थाली $11.99। फोर लोकेशंस टू सर्व यू, कॉल 9056071123, 9056071123, या पहुंचो 3176 रिजवे ड्राइव, यूनिट 66, मिसिसागा, एट डंडास एंड रिजवे, प्रेम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।

0: क्रैश करने जा रही हैं। आईपीएल और पीएसएल दुनिया के दोनों बहुत बड़े टूर्नामेंट्स ने और लोगों को इंतजार होंगे। सो उसके बारे जो न्यूज़ आ रही है कि 18 मार्च तो लेकर 2 मई तक जरा पाकिस्तान सुपर लीग का जरा 12th सीजन आ वह शुरू हो सकता और जी आईपीएल हैगी वह भी इन दिनों ही होगी। सो ये बारे भी लगातार अपडेट्स पेश करांगे जी।
1: जी और गृह का नंबर नोट कर लो 416-451-4021। कल हम आंखों देखा हाल लाइव हम क्रिकेट के बारे में बातचीत करेंगे और बताते रहेंगे कि कौन सी बॉल पे बजा छक्का या चौका कि या फिर कोई आउट हुआ। और चलिए जी, जैसा कि हमने अभी मैसेज सुना है अमित खुराना साहब का और उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अमित जी वेलकम सर, वेलकम वेलकम, कैसे हो आप? आपके इंतजार कर रहे थे हम, लास्ट वीक भी वेट किया आपने, आप बिजी बहुत हो।
2: बढ़िया चौहान साहब, बस माफी चाहूंगा एक तो लास्ट वीक के लिए मैं आपकी इनॉग्रेशन पे नहीं आता है। सॉरी बॉटम।
1: नहीं नहीं सर, आप तो हमारे परिवार के मेंबर हो, आपके साथ आई थिंक मोर देन 15 इयर्स का साथ है, 15 साल से, और आप हमारे साथ दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत तहदिल से धन्यवाद। और आप कम्युनिटी को भी बहुत सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, गाइड करते हो, अच्छे अच्छे रेट्स लेकर देते हो, इसके लिए भी आपका तहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जर्नलिस्ट को बता दूं कि गृहजी जैसे हमने कल बातचीत की थी वेडनेसडे को, जो नई सेगमेंट जो हम शुरू करने जा रहे हैं, अमित जी ने मुझे हाँ कर दी है, ही इज सो काइंड कि हम रियल स्टेट, क्योंकि रियल स्टेट का और जो मॉर्गेज का दोनों का
0: बिल्कुल
1: कहते ना साथ साथ बड़ा साथ करीबी रिश्ता है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो रियल स्टेट के बारे में टिप्स दिया करेंगे राजीव जी और मॉर्गेज के बारे में वन एंड ओनली अमित खुराना साहब अगले बुधवार से। और अमित जी पहले थोड़ी सी जानकारी दें कि अभी लेटेस्ट क्या हालात हैं, कोई मॉर्गेज रेट्स अभी बढ़ने के या कम होने के कुछ चांसेस हैं?
2: सबसे पहले तो चांस, सबसे पहले मैं मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा आपको,
1: थैंक यू,
2: आपके इस नए वेंचर के लिए। और मेरी मातरानी से प्रार्थना है कि आपके जो भी इस वेंचर को लेके आपके जो ड्रीम्स हैं, जो भी आपके आपने जो सोचा है, आपने जो टारगेट्स किए हैं, वो मातरानी आपके सारे सपने ड्रीम्स पूरे करें।
1: वेरी नाइस।
2: और जैसे आप कम्युनिटी को आई थिंक 25-30 साल से हेल्प कर रहे हैं, आगे भी करते रहे अपनी न्यूज से, अपनी इंफॉर्मेशन से, अपनी म्यूजिक से, अपने टैलेंट से, जो भी आपका है हमको सपोर्ट करते रहें, हमको साथ देते रहें और इसी तरह से अपना नाम बनाए, रोशन करें, हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन करें। अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड टू योर टीम।
1: थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी हमारा?
2: लेटेस्ट तो जॉन साहब रेट्स का थोड़ा सा लग रहा है कि शायद बैंक ऑफ कनाडा अपना प्राइम रेट इंक्रीज करेगा, बट अभी इट्स नॉट ऑन द कार्ड्स, इट्स अगेन ऑन द न्यूज। 50-50% चांसेस हैं, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बट माय गट फीलिंग इज सेइंग दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट। बट अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट। तो जो नेक्स्ट मीटिंग है बैंक ऑफ कनाडा की, उसमें शायद उम्मीद है 0.25 सेंट्स को वो कर सकते हैं, बट अगेन इट्स नॉट 100% श्योर, इट्स नॉट ऑन द कार्ड्स। Lot of things will be revolving around it. So, Mark Carney साहब और जो हमारे गवर्नर साहब है बैंक ऑफ कनाडा के, वो सारा उसको पूरा कंसिडर करके, उसको देख करके ही दे विल टेक दैट डिसीजन, बिकॉज इट विल नॉट बी एन ईजी डिसीजन टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉट विल बी ईजी डिसीजन बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स इन दिस सिचुएशन, जो अभी हालात चल रहे हैं, कि देर विल बी ए इंक्रीज, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। फिक्स रेट्स, बॉन्ड यील्ड सबको पता है थोड़ा सा ऊपर गया, तो फिक्स रेट हैज गॉन अप
1: जी,
2: इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा फिक्स रेट ऊपर गए हैं, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मॉर्गेज इंडस्ट्री। 0.25 सेंट, 0.30 सेंट्स प्लस माइनस, ये हमेशा चलता रहता है। वी कैनॉट होल्ड अवर हाउस बाइंग और वी कैनॉट होल्ड अवर रीफाइनेंसिंग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 25 सेंट्स टू 30 सेंट्स।
1: जी अच्छा, कल किसी ने सवाल पूछा भी था, आपका भी नजरिया जानना चाहते हैं कि आजकल जिनकी क्लोजिंग आ रही है तो उनको क्या करना चाहिए कि वेरिएबल लें या फिक्स लें, यदि फिक्स भी लेते हैं वो 3 साल के लिए लें या 5 साल के लिए लें या 2 साल के लिए लें या 1 साल के लिए लें, क्या कहना चाहते हो आपका एक्सपर्ट एक्सपीरियंस?
2: चौहान साहब, इसके आंसर मैं ऐसे दूंगा, हम सबको अभी वेरिएबल रिकमेंड कर रहे हैं, बट व्हाई वी आर रिकमेंडिंग वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल में आपके पास दो सबसे बड़ी पावर्स होती हैं, आई विल यूज द वर्ड पावर्स, ओके, या आप अपनी मॉर्गेज को कभी भी फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद नो पेनल्टी नो क्वेश्चंस, ठीक है। और आप जब भी अपनी मॉर्गेज फॉर एनी रीजन आप ब्रेक करते हैं, वेरिएबल में पेनल्टी बहुत कम लगती है। ये दो बहुत बड़े फीचर कह लीजिए या ये वेरिएबल के दो बहुत बड़े पावर्स कह लीजिए। तो व्हाई वी आर रिकमेंडिंग क्लाइंट्स टू गो फॉर अ वेरिएबल, क्योंकि अभी फिक्स रेट बैंक्स के ऊपर चले गए हैं,

0: नॉट लाइक इट विल स्टे ऊपर, नीचे भी जाएंगे. जैसे सबको पता है बीच में फिक्स रेट 3.69 तक चले गए थे, 3.79 तक चले गए थे, चले गए. एक्चुअली रेट कम डाउन
1: जी,
0: क्लाइंट्स हैव एन ऑप्शन टू लॉक देयर मॉर्गेज फ्रॉम वेरिएबल टू फिक्स्ड. तो आपने दोनों टाइम का फायदा उठा लिया, आपने अभी वेरिएबल ले लिया जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है
1: जी,
0: और जैसी फिक्स रेट नीचे आया, जैसी आपको मैसेज मिला कि फिक्स रेट नीचे आ गया, यू कैन गो एंड यू कैन कॉल द ब्रांच एंड लॉक द रेट. सो यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पावर और यू हैव दैट फीचर. आप वेरिएबल क्लोजिंग आ रही है दो साल बाद, ढाई साल बाद, कोई बिल्डर की क्लोजिंग आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप फॉर एनी रीजन आपको बैंक चेंज करना पड़ रहा है, तो वेरिएबल में पेनल्टी बहुत कम लगती है
1: जी.
0: तो आपको वो स्ट्रेस नहीं होता कि यार अगर मेरे को एनी रीजन मैं नेक्स्ट हूँ या मेरे को किसी वजह से मॉर्गेज पे करनी पड़ रही है तो मेरे को पेनल्टी बहुत लगेगी. नहीं, वेरिएबल में पेनल्टी बहुत कम लगती है. सो बिकॉज ऑफ दीज टू गुड फीचर्स वी रिकमेंड क्लाइंट्स टू गो फॉर वेरिएबल. बट ये कोई फिक्स्ड नहीं है बिकॉज एवरीबडीज मॉर्गेज केस, एवरीबडी क्लाइंट्स टेम्परमेंट इज डिफरेंट. सबका टेम्परमेंट डिफरेंट होता है, सबकी मॉर्गेज सिनेरियो डिफरेंट है. ये हम एक एज अ बिगर पिक्चर बात करी है कि अभी वेरिएबल लें या फिक्स लें. दिस ऑन अ बिगर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ क्लाइंट टू क्लाइंट पर्सनल टेम्परमेंट और उनकी सिचुएशन क्या है. आफ्टर टॉकिंग ऑल दिस देन वी रिकमेंड कि आप 3 साल का फिक्स लें या आप वेरिएबल मॉर्गेज लें. यस आंसर.
1: वेरी नाइस. 6473412785 इनका नंबर है, 6473412785 कर सकते हो. 6473412785 पे आप इनसे बातचीत कर सकते हैं. और अमित जी, एनीथिंग एल्स वांट टू
0: से? चौहान साहब, डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से हम टॉक शो पे बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे. किसी के क्वेश्चन है तो वो भी, कंसर्न है वो भी टॉक शो पे लेंगे अगर आप अलाउ करेंगे तो.
1: बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली. अगले बुधवार से एक डिफरेंट लेवल पे हम बातचीत किया करेंगे रिगार्डिंग मॉर्गेज इंडस्ट्री और रिगार्डिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री. और दोनों का देखो आप बड़ा करीबी रिश्ता है. मॉर्गेज होगी, बंदे की मॉर्गेज होगी तो ही कर लेगा वो, अदरवाइज क्लोजिंग ही नहीं हो पाएगी, राइट. तो एक हम कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी को एजुकेट किया जाए, राइट. लोगों को क्या होता ना अमित जी, लोगों को पता तो है क्या रेट लेना है, वेरिएबल लेना है, फिक्स लेना है, ये भी पता चल जाता है, लेकिन एजुकेशन नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है. मॉर्गेज वो अभी कहते हैं यार पाजी हमारी कल क्लोजिंग है, कुछ करो जल्दी, राइट. तो अमित जी क्या करेंगे 24 घंटे में, राइट. तो इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट हम लेकर आ रहे हैं अगले बुधवार से. सो स्टे ट्यून्ड. 6473412785 है इनका नंबर, अमित खुराना साहब का. बहुत मेहरबानी सर, विश यू ऑल द बेस्ट. हेलो,
0: थैंक यू. वॉइस अगेन ऑन 101.3.
1: थैंक यू
0: एंड वी विल टॉक एवरी वीक. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच जी. और बहुत जल्द स्टूडियो में पहुंच रहे हैं हुसैन नीम और इनके बारे में बातचीत करेंगे, और जो कि इलेक्शन वो लड़ रहे हैं सिटी काउंसिल सबडाना फोर्ट यॉर्क वार्ड नंबर 10, इनके साथ भी बातचीत करेंगे. लेकिन गृह जी, कभी मैसेज आया था आसमी जी, बड़े हमारे रेगुलर लिसनर हैं कई सालों से
2: जी,
1: मोर देन 25 ईयर शी इज लिसनिंग.
2: अच्छा.
1: और आजकल वो इंडिया गए हैं और इंडिया से भी देखो ये प्यार है, एक रिस्पेक्ट है.
2: ओके.
1: और वहां से भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं. तो उन्होंने जिक्र किया था अभी कि देखो कि एक मूवी आई थी अंकुश.
2: अच्छा.
1: हाँ, अंकुश मूवी आई थी, नाना पाटेकर और निशा थे स्टार में, स्टारकास्ट में
2: जी.
1: सो कुलदीप सिंह का म्यूजिक है, मुझे याद है. मैंने बहुत प्यारा, बड़ी प्यारी चीज है जो हम प्ले करने वाले हैं.
2: ओके.
1: और बड़ी हकीकत है और ये सुनाते हैं. ये इसमें नाना पाटेकर भी थे और सुषमा श्रेष्ठ और पुष्पा पगधरे की आवाजें हैं.
2: ओके.
1: बड़ा ही प्यारा ये शब्द है, भजन है, भगवान का नाम है.
2: क्या बात.
1: और हकीकत है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता.
2: yes.
1: मन का विश्वास कमजोर होना,
2: विश्वास सारा कुछ है.
1: हम चले नेक रस्ते पे लेकिन भूल हमसे कभी भी होना. बड़ी प्यारी चीज है ये कंपोजिशन. ध्यान से सुने और इन शब्दों को ध्यान से सुने
2: जी.
1: और हम यही दुआ करते हैं परमात्मा से कि सबकी जिंदगी में खुशियां वो लाए. और ये आसमी जी, थैंक यू सो मच. और आपकी फरमाइश आपकी नजर से पहले, हाँ चलो कॉल्स बाद में लेते हैं, पहले उसके बाद फिर पाकिस्तान की खबरें भी होंगी.
2: okay.
1: लेकिन फ्रॉम द फिल्म अंकुश.

0: प्रोग्राम तो सुनरेशन कनेक्शन 101.3 एफएम ते साडा कोई भी गलबात करना चाहंदे तो नंबर है 416-910-2000
1: जी। और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। क्यों जी कृषि, मजा आया ना? क्या क्या सुकून मिलता है हाँ। और मुझे दो दिन मैसेज आए, कहता है ये मजा आ गया, कहते सुन के
2: क्या बात,
1: इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर ना हो। और देखो भगवान से क्या हम यही अर्ज दुआ करते हैं कि यार हमारा विश्वास जो है ना वो कमजोर ना हो। और विश्वास यदि कमजोर हो गया तो गेम सारी खत्म होगी,
2: फिर काम खराब है
1: आपका जो मनो क्या कहते हैं मनोबल और जो आत्मविश्वास है
2: बिल्कुल
1: वो दृढ़ है तो फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। टेंशन लेनी नहीं चाहिए जिंदगी में। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आप समझो,
2: पार्ट ऑफ लाइफ
1: बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहता दिल पे मत लो यार पर कई बार टच कर जाती कई चीजें।
2: हाँ जी हाँ जी,
1: हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो। और लक्षण देवी गलबात ऐसी कर रहे हैं, नांदीलाल और हुसैन भाई स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, स्पिडाना फोर्ट यॉर्क वार्ड नंबर 10। हुसैन नीम साहब बड़ी बड़े पुराने हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, क्या हाल चाल है सर? किसान भाई नॉट ए प्रॉब्लम सर, आपका अपना प्रोग्राम है, आप जब भी आना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे चल रही तैयारी और क्या क्या इस वक्त महसूस कर रहे हो? दिस आई लाइक दिस, वी गॉट दिस THIS, टी इज फॉर ट्रांजिट, एच फॉर हाउसिंग, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एस फॉर सेफ्टी।
2: क्या बात,
1: वेल डन सर।
3: विदाउट दैट एक्चुअली रणबीर जी वी एंड गिरीश वी डोंट हैव एनीथिंग विदाउट, आई मीन इट्स नॉट वन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर, चारों चीज इम्पोर्टेंट है। ट्रांसिट ना हो तो पीपल कैन गेट बैक एंड फोर्थ,
1: हाउसिंग ना हो तो
3: हाउसिंग इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ इट्स मोर अबाउट नॉट अवेलेबिलिटी बट इट्स अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग। वी डोंट हैव हाउसिंग lack of housing, it's more about affordable housing.
1: Yeah.
3: Infrastructure, whether it's parks, whether it's elevators, whether it's a crumbling gardener, and safety. I mean, if you're going to go home at 11 or 12 o'clock, you don't need to be unsafe in your own neighborhood.
1: Yeah, that's true.
3: We live 40 floors above the ground, and we have a safe place where your kids can play around. And so THIS.
1: अच्छा, इस बार वैसे आपका को ज़्यादा पता होगा, इस बार के जो elections हैं, वो पिछली बार की election से कैसे different देख रहे हो आप?
3: There are three, as you know, आपके listeners शायद जानते हैं, there are three levels of election,
1: okay.
3: Federal हो, provincial हो, या municipal elections. In the federal politics or federal government, we've got Mr. Carney in charge at the in Ottawa, Queen's Park with Doug Ford ji hai, and then over here we've got Olivia Chow. This election is very different because people are asking for change. Agar aap vote na kare, you're not going to get much change if you don't vote. So, I mean, on that note, mujhe ek statistic aapko dena hai. Hamare riding mein 135,000 log hai.
1: 135,000 कैटलिस्ट वोट को इस्तेमाल तो करो यार, वोट डाल के तो आओ, किसको डालनी हम ये नहीं कहते, हम कभी भी नहीं कहेंगे। आपका अपना डिसीजन है, जो आपको लगता है कि आपके इलाके में आपके एरिया में जो कैंडिडेट अच्छा है जो आपके काम आ सकता है तो उन्हीं को सपोर्ट करें, लेकिन वोट जरूर करें।
3: एंड नोट रणबीर जी, वोटिंग इज वेरी इन दिस केस बिकॉज इट्स म्युनिसिपल पॉलिटिक्स, इट्स न्यूट्रल, इट्स नॉट पार्टी स्पेसिफिक।
1: दैट्स राइट,
3: या आप एनडीपी को वोट दे या लिबरल को वोट दे या कंजर्वेटिव को वोट दे, इट्स वेरी न्यूट्रल। आई एम नॉट लाइंड अप विद एनी पार्टी ईदर, आई एम इन फैक्ट वन ऑफ द फ्यू कैंडिडेट्स हु इज वेरी सेंट्रिस्ट। कि आई एम नॉट रनिंग एज अ कंजर्वेटिव और ए लिबरल और एनडीपी, केयर पीपल हैव प्रेफरेंसेस ऑन हाउ दे सी देमसेल्व्स वोटिंग,
1: बट
3: इट्स वेरी न्यूट्रल, वेरी सेंट्रिस्ट अप्रोच इज व्हाट आई हैव टेकन। एंड या आई मीन इफ पीपल डोंट गेट आउट एंड वोट, आई थिंक आपने जो बताया कि सही बात है कि जाके वोट करें आप, घर पे बैठे यू आर पेइंग टैक्सेस, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, बट यू हैव टू हैव अ से, यू हैव टू हैव अ वोट, यू हैव टू हैव पुट योर थॉट्स अक्रॉस, एंड इफ यू डोंट वोट देन यू गॉट नो
1: ठीक है
3: कंप्लेनिंग।
1: तो आप, मैं बता दूं कि हुसैन नीम इनका नाम है और नंबर बड़ा अच्छा लिया आपने, 647 नंबर 4 हुसैन HUSAIN, दैट इज 4487246, या हुसैन नीम .CA की वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी आप ले सकते हो। और वहाँ पे सारा एरिया भी, एरिया थोड़ा थोड़ा रफली बता देंगे कहाँ कौन सा एरिया
3: आपको? जी जरूर, इट्स डाउनटाउन टोरंटो राइट बाय द वाटर, सो रॉजर्स सेंटर, एयर कैनवा सेंटर, स्कोशा बैंक सेंटर जो है, इट्स द सेंटर ऑफ द राइडिंग। इट गोज फ्रॉम डफ Dufferin on the west side, all the way to Don Valley Parkway, east side tak, Dundas, Northway Hoge, and the islands.
1: Yeah.
3: So it's a very large, and in fact, it's probably one of the most densest.
1: बड़ा जबरदस्त एरिया सारा ही
4: सबसे बड़ी सबसे बड़ा शूज एरिया का जो मेरा एक्सपीरियंस है आई बीन इन कनाडा टोरंटो फॉर मोर देन 30 इयर्स ट्रैफिक
3: Absolutely.
4: और कंस्ट्रक्शन है वो खत्म होने का कभी नाम ही नहीं लेती
3: देयर आर टू सीजंस और थ्री सीजंस इन टोरंटो कंस्ट्रक्शन एंड मोर कंस्ट्रक्शन अभी भी आ रहा था
1: इसका हाल सॉरी आपकी बात इसका हाल सबसे बेस्ट यही है गाड़ी चलाना बंद करो और ट्रांजिट में जाओ
3: इसीलिए हम टी फॉर ट्रांजिट
1: टी फॉर सबसे ऊपर लिखा आपने
3: ट्रांजिट ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन यू नो द वे टू गेट अराउंड
1: क्योंकि डाउनटाउन में हमारे जानने वाले फैमिली में उनके बच्चे डाउनटाउन मूव कर गए हैं तो उन्होंने गाड़ी भेज दी है हाँ कहते हैं कोई गाड़ी की जरूरत नहीं कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं इतना कहते हमारे $2,000 बच रहे महीने के
3: वेल एंड आल्सो 250 फॉर द पार्किंग स्पॉट
1: या बहुत महंगा है
3: स्पॉट इंश्योरेंस मेंटेनेंस ऑफ द कार एंड देन द कार गेट्स ब्रोकन और बस्टेड और ब्रोकन इनटू सो
1: जी बिल्कुल जी और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और वैसे चलो हटके थोड़े बात करते हैं एज ए सिटीजन ऑफ कनाडा और उस आपके एरिया में जो क्या लगता है कि मेयर के किसके चांसेस हैं As a citizen, not as a candidate.
3: Not as a, so this is on air, but it's not on air.
1: Not on air, yeah. As a...
3: Haanji. No, we've got three candidates, of which one has just recently dropped out. So abhi do candidates say if you want change, you know which way to go. If you want to keep things the way they are, some people are happy with the way things are running. You don't need change.
1: Believe it or...
3: Ji. In our riding, downtown Toronto, Spadina, Fort York, we need change.
1: Okay.
3: We need change. I'm one of the few...
1: अपने विचार ओपनली हम दे सकते हैं विचार सबके अपने अपने और मैं पहले कह दूं कि हाँ इस चैनल पे जो भी विचार आते हैं सबके अपने अपने विचार हैं और सीएमआर का स्टेशन का और हमारा सहमत होना जरूरी नहीं ये विचार हम दे रहे हैं अपने
3: और मेरा पॉइंट है कि मैं न्यूट्रल हूँ इट्स नॉट कि आप मुझे वोट दे क्योंकि मैं इंडिया से हूँ या मैं कनाडा से 30 साल से हूँ इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट इट्स व्हाट कैन दिस पर्सन डू फॉर यू
1: दैट्स राइट
3: आपके लिए क्या कर सकता है बंदा जो 6 महीने पहले आया या 30 साल पहले आया
1: तो आपके कहने का मतलब उस इलाके में चेंज इज रिक्वायर्ड
3: आई थिंक सो
1: आपके लगता है
3: पर
1: टक्कर बड़ी कांटे की सुनने में ही आया क्योंकि आप तो वहां रहते हो तो मैंने कहा क्यों जी हम तो ऑन एयर जो खबरें हम देख रहे हैं टीवी पे या पढ़ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आप वहां रहते हो
3: जी रणवीर सिंह यू वांट समबडी हुज एक्सेसिबल हुज हेल्ड अकाउंटेबल यार कोई रिबन काटने की चीज हो या कैमरा हो तो लोग आ जाते हैं पॉलिटिशियंस आ जाते हैं बट जो वहां पे रहते हैं आई ब्रीद द सेम एयर आई वॉक द सेम स्ट्रीट्स एज माय नेबर्स सो आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन आई एम योर नेबर आई एम योर नेक्स्ट डोर नेबर आई एम अ फादर आई एम अ रेजिडेंट फ्रॉम दैट प्लेस एंड आई ब्रीद द सेम एयर सो यू नॉट लुकिंग कि यार कोई पॉलिटिशियन बंदा है
1: वंडरफुल
3: कोई नेक्स्ट डोर नेबर आपका आके यू नो आपका वोट मांग रहा है कि भाई आई कैन डू व्हाट यू वांट मी टू डू being accessible being held accountable otherwise bahut sare politicians hai ki 4 saal ke baad aayenge aapka vote
1: ha na chalo sir aap humko dher sare shubhkamna dete hain lekin koshish kare jaise unhone kaha ki ek traffic ki bahut badi problem hai us area mein aur crime to overall canada ka bahut bura haal hai is pe kuch na kuch government ko karna padega nahi to otherwise bahut mushkil ho jayegi
3: no and girish ji I can offer you my parking spot visitors parking jo hai very few buildings downtown toronto so just ki nahi बिल्डिंग बनती है द डेंसिटी सो मच दैट इन फैक्ट नाउ दे डोंट इवन हैव विजिटर्स पार्किंग आपकी खुद की गाड़ी के रेजिडेंस पार्किंग का भी there's a problem for that as well
1: yes.
3: but visitors parking there anyway so we're going more towards bicycle racks
1: okay.
3: we're going more towards accessible ways to get around aadhe ghante ka distance ho to main to chal padta hu
1: like
3: aadha ghanta you have a nice little walk you go through
4: so you live in that area
3: ji yeah, I live right downtown at the corner of Spadina and Fort York and that's the riding I'm running from Spadina to Fort York
4: okay
3: so no downtown aaye mera number to hai aapke paas 647-4-HUSSEIN
4: okay 4-HUSSEIN
1: number 4 HUSSEIN HUSSEIN थैंक यू सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए और बड़ी अच्छी जानकारी आपने शेयर की और बातचीत आपसे होती रहेगी विश यू ऑल द बेस्ट और जी समा हो चले खबरों का और स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 खबरें आप सुने और इन्हीं खबरों पर चर्चा होगी खबरों के साथ ब्रेक के बाद शफकत भाई होंगे हमारे साथ फ्रॉम पाकिस्तान
5: आइए सुनते हैं शफकत अली की जुबानी खबरें पाकिस्तान से
6: अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड मॉर्निंग आप सुन रहे हैं एशियन कनेक्शन ऑन सीएमआर 101.3 एफएम पर और पाकिस्तान से आज की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं शफकत अली खबरनामे में सबसे पहले आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद। मौलाना फजल रहमान मुजाकराती डेडलॉक खत्म करवाने के लिए किरदार अदा करने को तैयार, रिपोर्ट वजीर आजम को पेश हुकूमती मुजाकराती कमेटी ने। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की रिपोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान मुजाकराती डेडलॉक के खात्मे और तनाजात को तय करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। कमेटी ने मौलाना फजल रहमान की जानिब से मुसालियत का किरदार अदा करने के लिए पेश की गई शराइत से भी वजीर आजम को आगाह कर दिया। वजीर आजम को मौलाना फजल रहमान का खसूसी पैगाम भी पहुंचाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान के साथ जल्द टेलीफोनिक राब्ता भी मुतवक्के। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान के साथ इक्तसादी जायजा मुजाकरात का एलामिया जारी कर दिया, जिसमें वसी पैमाने पर पेट्रोलियम सब्सिडी स्कीम फौरन खत्म करने का मुतालबा किया गया। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद पाकिस्तान को 1.21 अरब डॉलर मिल जाएंगे। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 1.21 अरब डॉलर फ्राहम करने की मंजूरी देगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने माशी अहदाफ के हसूल के लिए बेहतरीन कोशिशें की। पाकिस्तान में IMF के प्रोग्राम से माशी इस्तेहकाम आया, पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल तेज तर हुआ। शिमाली वजीरस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 4 कमांडर समेत 9 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में अजमे इस्तेकाम विजन के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 4 अहम दहशतगर्द कमांडर समेत 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी से अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की मुलाकात। मुलाकात के दौरान आलमी और इलाकाई सूरत हाल, अमन मिशन्स के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग लड़ रहा है। अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं, जो दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा हैं। आलमी बिरादरी को इस खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान अक़वामे मुत्तहिदा के अमन मिशन्स में अपना भरपूर किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तानी पुलिस के अफसरान और एहलकार अक़वामे मुत्तहिदा पुलिस में भी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट करक में मुसल्ला अफराद की पुलिस पर फायरिंग से SHO समेत 2 एहलकार शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में न्यू कड़पा के मुकाम पर मुसल्ला अफराद की पुलिस पर फायरिंग के नतीजे में SHO बांडा दाऊद शाह दाऊद खान और उनके गनमैन फरहाद शहीद हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही आला पुलिस अफसरान जाए वकुआ पर पहुंच गए। विफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की होसियों के खिलाफ पाक फिजाइया के तैयारों के इस्तेमाल की खबर बेबुनियाद और झूठी करार दे दी। वजारत इत्तलात और नशरियात ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर झूठा और बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तानी फिजाइया के जंगी तैयारे यमन में होसी अहदाफ के खिलाफ सऊदी अरब की फौजी कार्रवाई में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी सरगर्मियों और एहतजाजी लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी वसाइल के मुबैना इस्तेमाल से मुतल्लक केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब कर लिया। रवां हफ्ते वजीर आला KP सोहेल अफरीदी उस वक्त तनकीद की जद में आए थे जो वो अदालती अहकाम के बावजूद PTI के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए पेशावर से लक्की मरवत सरकारी हेलीकॉप्टर पर पहुंचे थे। दूसरी जानिब पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। सेलुलर कंपनियों की जानिब से मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली से मुतल्लक कोई बाज़ाब्ता मौकफ सामने नहीं आया। ताहम ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च की गुजरगाहों और मुलहका इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंदिश का फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया, ताकि काफले के गुजरने के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचा जा सके। مارچ 4 اکتوبر کو لکی مروت سے شروع ہوا اور بدھ کی شام مظاہرین ضلع خیبر پہنچ گئے تھے. آپ سن رہے ہیں پاکستان کی خبریں. پاکستان سے شفقت علی کی زبانی, ایشین کنیکشن, سی ایم آر 101.3 FM پر.

0: किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 9054573131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: जब हम कोई भी कार, वैन या एसयूवी लेने के बारे में सोचते हैं तो सोचते ये हैं कि पैसे कम हो पर गाड़ी बढ़िया हो, फाइनेंस रेट भी अच्छा मिले और वारंटी भी ज्यादा से ज्यादा माइलेज पे हो। ये सारा कुछ आपको एक ही जगह से मिल सकता है और वो है माजदा ऑफ ब्रैम्पटन एट बवेड एंड वैन क्रिक। यहाँ के जनरल मैनेजर मनजिंदर संधू आपको ऐसी डील्स देंगे जो और कहीं से नहीं मिलेगी। कॉल 9054590290, 9054590290। माजदा ऑफ ब्रैम्पटन।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288 8557 Anaj Mart।

0: जी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, और मैं रणबीर सोन आपकी सेवा में हाजिर हूँ और मेरा साथ दे रहे हैं गिरी जी। गिरी जी, मैंने मैसेज आया, क्या नाम था, हमारे बड़े पुराने दोस्त भी हैं, प्रोग्राम को सुनते भी हैं, हुसैन भाई, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहते यार म्यूजिक बड़ा सुन के मजा आता है,
1: डिफरेंट डिफरेंट है म्यूजिक।
0: मैंने कहा जी म्यूजिक तो हमारी जान है, हमारे ब्लड में है, संगीत नहीं होगा तो क्या होगा भाई।
1: बिल्कुल
0: राइट,
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक एंड न्यूज एंड डिस्कशन, दैट्स अ शो,
0: दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगीत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो चलिए ले चलते हैं आपको पाकिस्तान। शकुत भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है?
2: वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताएं आप कैसे?
0: हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं सर, और आजकल आपको पता है यहाँ पे इलेक्शंस की गहमा गहमी चल रही है, कुछ कैंडिडेट्स आए थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए, पर एनीवे नो प्रॉब्लम। चलिए मैं कुछ सवाल आपसे करूँगा, कुछ मैसेज भी मुझे आए हैं, लेकिन हमारे साथ पहले हमारे कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। लाइन वन प्लीज़। हेलो हेलो, लाइन वन प्लीज़, कैन यू हियर मी सर जी? हेलो चलिए दोबारा आप कॉल कर लें, स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। और जब कल भी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन्होंने मैसेज किए थे, मैं यदि आपने कवर नहीं किया तो एक बार बता सकते हो कि अभी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है केपीके की?
2: जी बिल्कुल, अगर केपीके की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की जाए तो आज पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रही और तमाम स्कूल्स और कॉलेज वहाँ पर छुट्टी दी गई। और अगर बात की जाए पीटीआई के लॉन्ग मार्च की, तो आज पीटीआई का लॉन्ग मार्च पांचवें रोज में दाखिल हो चुका है, और आज के दिन पीटीआई के जो लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे हैं वजीर आला के पी सुहेल अफरीदी साहब, वो डिस्ट्रिक्ट खैबर पहुँचेंगे, और डिस्ट्रिक्ट खैबर से फिर आगे उनका जो पड़ाव होगा, बताया ये जा रहा है कि वो चारसद्दा भी जा सकते हैं और वो सवात भी जा सकते हैं। ताहाल अभी तक सवाबी या पेशावर पहुंचने की इत्तलात नहीं है। कल ये पेशावर जाना था कुहाट से, लेकिन कल रात को अचानक ये प्लान चेंज किया गया, और प्लान चेंज करके जो लॉन्ग मार्च का रूट है वो तब्दील किया गया। ओवरऑल अगर क्राउड की बात की जाए तो हजारों की तादाद में लोग सुहेल अफरीदी साहब के काफिले में शरीक हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्ला साहब, उन्होंने भी इस पर तबसरा किया, उनका कहना था कि 3,000 या 4,000 लोग हैं, बाकी तो जितनी फोटेजेस जारी की जा रही हैं वो एआई के जरिए जारी की जा रही हैं। हालांकि लाइव कवरेज चल रही है, आप एआई के जरिए वीडियो को एडिट तो कर सकते हैं या कोई वीडियो बना तो सकते हैं, आप लाइव नहीं चला सकते, और जो लाइव मनाजर दिखाए जा रहे हैं उसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग बासानी नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की जाए, मुजाकरात का सिलसिला टूटा हुआ है लेकिन बैकडोर रबते जारी हैं, और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उनकी एक मुलाकात भी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ हो चुकी है। इत्तलात यह है कि हुकूमती वुजरा के साथ भी उनका राबता है, मोहसिन नकवी साहब के साथ भी उनका राबता है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को उम्मीद है कि मुजाकरात का एक और सिलसिला कल तक शुरू हो सकता है। जी
0: जी, और साथ साथ बातचीत का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा, और कॉल्स भी हम लेते हैं। लाइन वन प्लीज। हेलो
3: जी, थैंक यू जी।
0: जी बताए सर, क्या
3: शफल भाई, कल भी आपने एक पॉइंट उठाया था जी के ये जो मसला जिस बात पे मुज़ाकरात टूटे हैं वो मिलिट्री ऑपरेशन है 5 अजला में, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। गवर्नमेंट का यही प्रोपेगेंडा है, 1992 से ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पे, और ये 5 अजला वही है जो बेसिकली फाटा था, ट्राइबल एरिया था, और 7 में से 5 में ऑपरेशन हो रहे हैं, और ऑपरेशन आज भी हो रहा है। असल वजह तो आके उसने बताई ना, जो बैरिस्टर है अकरम राजा है, क्या है कह जी, वो कहते जी माफीनामे दाखिल करें, रहम की अपील करें, तो फिर हम देखेंगे जो बीमार शिमार हैं निकालेंगे। असल वजह भी आप लोग बता दिया करें, मैं इससे भी आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी। दूसरा आप ये बताएं कि ये बैकडोर पे बातचीत हो रही है, जाहिर है ये भी इस बात से कम पे नहीं मानेंगे, कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल करें, उस बंदे को जो बीमार है उसको अस्पताल में शिफ्ट करें, और दिन की रोशनी में शिफ्ट करें, भाई चोरों की तरह लेके आते हैं उसको, रात के 12 बजे 1 बजे 1 घंटा अस्पताल में बिठाया, कोई टीका शीका लगाया, वापस ले गए, सारे काम चोरों की तरह ना करें, खुल के आए, जरा लेके निकालें उसको। इस बात असल अड़फस हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में?
2: बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सॉरी टू से, जिसे आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, ये भी सलमान अकरम दादा साहब ने ही ये आकर के बताया कि इस एक पॉइंट पर मुज़ाकरा टूटे, और पीटीआई के जो दीगर लोग थे मुज़ाकराती कमेटी में, अलावा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचंजई, उन्होंने भी यही बताया और हुकूमती वज़रा ने भी इसकी तस्दीक की। ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन टारगेटेड है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। ये ऐसा नहीं है कि पूरा इलाका खाली करवा कर वहां पर एक बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया हो। हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मुतालबा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जैसे माजी में ऑपरेशन रायरास हुआ, ऑपरेशन जरबुल अजब हुआ, इसी तरह के ऑपरेशन इन छह डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी लगाकर लोगों के बुनियादी हकूक मुअत्तल किए जाए, लोगों को यहाँ से निकाला जाए, IDPs बनाया जाए और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया जाए, जिस पर पीटीआई रजामंद नहीं है। और दूसरा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि बैकडोर रास्तों की जरूरत ही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दें, इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, आपका 80-90% मसला हल हो जाएगा। जी
0: जी। और नेक्स्ट कॉल प्लीज, 6141। जी बताएं सर, आप क्या?
4: थैंक यू वेरी मच रणवीर जी। शफकत भाई, ऐसा है कि खान साहब का कहना है कि मैं शोर शराबे से निकलने वाला नहीं हूं, मुझे जब तक अदालत जो है वो बरी नहीं करेगी अपने इल्जामात में, और मैं मतलब अदालत के थ्रू, अदालत के हुक्म पे मैं निकलना चाहता हूं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो कहते हैं रिलीज इमरान खान, इसका क्या मतलब हो, ये टोटल बेमकसद बात है। और दूसरी बात ये कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं जो चल रही है इस वक्त कि ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं उधर, जहां से फौजी जाके तो निकाल लेना चाहते हैं और ट्रंप साहब को दे देना चाहते हैं, और ये बात कहां तक सच्ची है कि वो इसी खातिर, वो क्रिटिकल मिनरल्स की खातिर वहां पे ऑपरेशन करना चाहते हैं? इस बात, अपनी दोनों चीजों पे अपना पॉइंट बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया सर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीज इमरान खान का मतलब ये है कि इमरान खान के मुकदमात तो कम से कम समाअत के लिए लगाएं। साल से ऊपर हो गया इमरान खान के मुकदमात ही समाअत के लिए लग रहे। पहले आपको इतनी ज्यादा जल्दी थी कि आपने राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल के जो बुनियादी हकूक हैं वो तक पामाल कर दिए, और आप रोजाना की बुनियाद पर समाअत करते थे, समरी ट्रायल करके आपने सजाएं सुनाई। अब जब मामला अपील में गया है तो 1.5-1.5 साल हो गया, मुकदमात ही समाज के लिए नहीं लगा रहे, तो सरासर बदनीयती है। आप किसी भी शफाफ अदालत में, किसी भी कानून और आईन के मुताबिक चलने वाले बाज़मीर जज के सामने ये मुकदमा लगाएं, आधे घंटे की मार है इमरान खान के मुकदमा। और दूसरी बात, आपने मिनरल्स की, मिनरल्स बिल्कुल दुरुस्त बात है, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स तो यहाँ पर मौजूद है। और आपको याद होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जब सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए गए थे तो वो एक बक्से मिनरल्स के लिए गए और उन्होंने सदर ट्रंप को मिनरल्स दिखाए भी थे। और मिनरल्स निकालने की साजिश नहीं हो रही, मिनरल्स ऑलरेडी निकाले जा रहे हैं और उन इलाकों से भी निकाले जा रहे हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां पर नो गो एरियाज बने हुए हैं, और वहां से ट्रकों के ट्रक मिनरल्स के निकालकर भेजे जा रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें कोहाट है, जिसमें हंगू है, जिसमें टांक है, डेरा इस्माइल खान के भी कुछ इलाके बताए जा रहे हैं, और ये सारे वो इलाके हैं जो दहशतगर्दी से मुतासर है। डिस्ट्रिक्ट खैबर भी है और उसके अलावा भी साबका फाटा के कुछ इलाके हैं जहां से ऑलरेडी मिनरल्स निकल रहे हैं। जी
0: जी। और नेक्स्ट कॉल प्लीज, 5601, गो अहेड सर।
5: शफकत भाई, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, उसको किसी की पूछगिछ की जरूरत नहीं होती कि हमने फलानी जगह ऑपरेशन करना है। पाकिस्तान के एनमी, पाकिस्तान के गद्दार, पाकिस्तान के दुश्मन, जहां भी उनको इंडिकेशन हो वो बिला झिझक ऑपरेशन कर सकते हैं और 24/7 कर सकते हैं। नंबर एक बात, मराना केसेस जो आप कह रहे हैं 10 मिनट की मार है, इतनी बात होती थी 4 साल से अंदर क्यों है? उसका वकील ही नहीं पेश हो रहे वो 190 मिलियन पाउंड में और गड़ी चोर केस में, तो ये कैसे आप कर सकते हैं कि अदालतें नहीं काम कर रही, ये नहीं कर रही? इन्हीं वजह से वो बेचारा इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, 18 अमेंडमेंट के बाद विफाक का सूबों पर कंट्रोल अमलन खत्म हो गया है, और सूबाई असम्बली की मंजूरी और कैबिनेट की मंजूरी के बगैर, यानी सूबाई कैबिनेट की मंजूरी के बगैर बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो नहीं सकता। हाँ, टारगेटेड ऑपरेशन आप कर रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज कर सकती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा इलाका खाली करवा के वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर करके ऑपरेशन करना, ये सिर्फ सूबाई हुकूमत कर सकती है। और दूसरे नंबर पर आपने 190 मिलियन पाउंड केस का बताया, तो आप जरा ये भी बता देते हैं कि इमरान खान की जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, और मरकजी अपील के ऊपर उन्होंने समाअत मुकर्रर कर दी, और इंतहाई बदनीयती के साथ उन्होंने कहा कि आप इस पर दलाइल दें, क्योंकि नैब के कानून में तरमीम करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का राइट बजाय सुप्रीम कोर्ट को देने के उन्होंने आईनी अदालत को दे दिया है। आप जरा ये भी बता देते कि इमरान खान के मुकदमे को मैनेज करने के लिए पर्सन स्पेसिफिक ये अमेंडमेंट नैब के कानून में की गई है, और उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बजाय सजा मौतली की दरख्वास्त समाप्त के लिए मुकर्रर करने की, जो टोटल 15 मिनट की समाप्त है, उन्होंने मरकजी अपील को मुकर्रर कर दिया। जी
0: जी, बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट कॉल पे
6: जी सर, मैं
0: ऑन एयर बिल्कुल जवाब।
6: अच्छा शुक्र भाई, ये सवाल मेरा ये है कि आपने शायद वो खबर नहीं पढ़ी जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, जो जो हमारे रीजन, जो हमारा खत्ता है जिसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी आती हैं, उसमें सबसे ज्यादा गुर्बत जो है वो पाकिस्तान में बढ़ी है, 48% बताया जा रहा है कि रिपोर्ट लिख रही है। मैं अपने पेट से नहीं बोल रही, जो दो कॉलर आए हैं उनको जरा बता भी दीजिएगा। और सबसे ज्यादा गुर्बत पिछले दो साल में पंजाब के अंदर बढ़ी है, विच इज 40%। तो ये पंजाब की कौन सी तरक्की हो रही है जिसमें 11 अरब रुपए के जहाज के ऊपर जनाब वो अवार्ड लेने भी चली गई है, और वहां इससे पहले जब वो नैप में जाती थी तो वो कहती थी मैं वहां ना महरम होते मैं उनसे नहीं मिलूंगी, वहां जाके वो अरबियों से हाथ भी मिला रही है। तो ये बड़े खुले तजाद यहाँ पर हो रहे हैं, और ये क्या हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो लाइक, मैं तो कुछ बोला नहीं चाह रहा, वो इस मुल्क को ऐसी तबाह बर्बाद कर देंगे इन चोरों को मुसलत करके यहाँ पर। थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, और देखिए अभी हमारे कॉलर भी एतराज कर देंगे, उससे पहले मैं एतराज कर दूं कि आप इस खबर को बिल्कुल गलत बता रहे हैं, और आप बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नेगेटिव तबसरा कर रहे हैं। असल खबर यह है कि पूरी दुनिया में हम नंबर वन आए हैं, और हम फर्स्ट आए हैं, और फर्स्ट आने की एक्साइटमेंट इतनी है कि जो पंजाब की वजीर इत्तला अजमा बुखारी कहती सारी सारी रात नींद नहीं आती। और अभी पंजाब की सीएम मरियम नवाज साहिबा उमान जिस अवार्ड के लिए गई थी, पूरी दुनिया से कोई वहां पर सरकारी ऑफिशियल नहीं आया, यानी किसी भी सूबे का वजीर आला नहीं आया, ना मलाइशिया से, ना बरतानिया से, ना इंडोनेशिया से, ना अफ्रीका से। और पंजाब की सीएम मरियम नवाज स्पेशल जहाज लेकर, टोटल 2.5 घंटे की फ्लाइट है, वो 3 दिन पहले चली गई। और अजमा बुखारी कह रही है कि चूंकि हम फर्स्ट आए तो फर्स्ट आने की एक्साइटमेंट इतनी होती है कि मरियम बीबी अवार्ड लेने खुद गई है। तो अभी एक और शोबे में भी हम फर्स्ट आए ओनरशिप में, और वो शोभा ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान, इन तमाम रीजन में जितनी गुर्बत है उस टोटल गुर्बत का 48% सिर्फ पाकिस्तान में है, यानी पूरे रीजन की गुर्बत अपनी जगह और अकेले पाकिस्तान की गुर्बत अपनी जगह, और अकेले पाकिस्तान ने मिलकर के पूरे रीजन को गुर्बत के इंडिकेटर में काफी ऊपर पहुंचा दिया है। तो ये
0: आई थिंक लाइन आपकी डिस्कनेक्ट हो गई शकुल भाई, तो छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ये सिलसिला बातचीत का यूं ही चलता रहेगा। प्लीज

0: इमिग्रेशन।
1: जी हाँ, किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को चाहिए विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा या स्पाउस और पेरेंट्स को इमिग्रेशन दिलानी है तो राजीव रामपाल को मिले 7895 Tranmere Drive Unit 22 इन मिसिसागा एट डिक्सी एंड डेरी। कॉल 416-500-8036 दैट्स 416-500-8036
0: ब्लू ओशन इमिग्रेशन।
1: यदि आपको घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स तो एक ही नाम, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन, हमारी कम्युनिटी का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस एंड ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। एशियन कनेक्शंस रेडियो का रेफरेंस देने पर मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। फॉर फ्री कोट अभी कॉल करें 416-831-4790 दैट इज 416-831-4790 और विजिट कैलिफोर्निया ऑनिंग डॉट CA। जी और शकत भाई, लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी, बताएं सर क्या करना चाहते हैं आप।
2: जी बिल्कुल, अभी देखें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये एक पूरा रीजन है। इस पूरे रीजन में जितनी गुर्बत है उस गुर्बत का 48% पाकिस्तान में है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी दो रोज पहले आई है और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से जितनी गुर्बत पाकिस्तान में इतनी अफगानिस्तान में नहीं, इवन अफ्रीका में नहीं। अफ्रीका जहां पर कहत है, जहां पर भूख है, जहां पर खाना जंगी है, पाकिस्तान में गुर्बत और माशी अबतरी के हालात अफ्रीका से भी ज्यादा बदतरीन हो चुके हैं। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ने 2-2.5 साल पहले फरमाया था कि मसाइल तमाम हल हो गए हैं, अब आगे आसानी आसानी, अब यहाँ से हम टेक ऑफ की तरफ जाएंगे। टेक ऑफ तो हमने किया लेकिन किस डायरेक्शन में किया ये नहीं मालूम और कितनी बुलंदी तक पहुंच गए मेरा ख्याल है अभी तक ये भी नहीं मालूम। जी
1: जी और 61 ओके नेक्स्ट कॉल प्लीज। अनुर भाई हेलो, ये लाइन कट गई है। जी 6141 गो अहेड सर।
3: थैंक यू वेरी मच रणजीत शफकत भाई। देखें जो सूबाई गवर्नमेंट है वो सूबाई वसाइल को यूज कर रही है गलियों में ये डेमोस्ट्रेशन इकट्ठी करने पे और इन्हें पता नहीं आप काजू के हलवे तो मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन इसलिए लोग भी कम हो गए। और फेडरल गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए 2000 लोगों के लिए 2000 कंटेनर रख दिए और बकौल आपके और जितने भी अखराज हैं वो भी अपने मुल्क का सोर्स यूज हो रहा है। दोनों सोर्सेज गुर्बत को मिटाने के लिए यूज होने थे, इस वक्त जो किस काम के ऊपर हो रहे हैं वो इस्तेमाल, तो क्या ये जो CM की गवर्नमेंट है जो पहल कर रही है इस काम में, क्या ये हेल्प कर रही है उस गुर्बत को मिटाने में या उसे बढ़ा रही है? फिर जो बातें हम लोग कर रहे हैं क्या वो काबीना में नहीं की जा सकती थी, बजाय इसके कि काबीना में बैठे वो सड़कों पे दौड़ रहे हैं, इसकी बात इसकी जरा हमें बताइए। और दूसरे जो गवर्नमेंट ने कह दिया CM साहब को कि आप ऐलान करें कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं और हम जो भी हो सका करेंगे, ये बोलते तक नहीं है उसके खिलाफ, ये किस बात के इतने पाबंद है? बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया सर। ये आपने जितने भी बयान दिए सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वजीर अला KP सुहेल अफरीदी पिशावर से लक्की मरवत सरकारी विजिट पर आए थे और वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव का ये इस्तेहकाक है कि वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बात, लॉन्ग मार्च में किसी तरह के सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे, ना तो सूबे की सिक्योरिटी वहां पर इस्तेमाल हो रही है, ना वहां पर सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। अब जो उनका कंटेनर है, आप मुझे बताएं कि कंटेनर क्या वो सरकारी गाड़ी में इस्तेमाल होगा? और दूसरी बात, सरकारी वसाइल का ज़िया और मुल्की मईशत की बर्बादी तो वफाकी हुकूमत कर रही है। चले मैं आपको बता देता हूँ, 75,000 सिक्योरिटी एहलकार आज 4 हफ्ते हो गए हैं वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटक में और इस्लामाबाद में डिप्लॉय किए हुए हैं। उनका रोजाना का जो खाने पीने का खर्च है वो 6 करोड़ रुपये है और उसके साथ साथ 2,000 कंटेनर उन्होंने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ सड़कों पर और गलियों में लगाए। उन कंटेनर्स का अगर आप लगा लें तो 4-4.5 करोड़ रुपये रोजाना कंटेनर्स का किराया बनता है और बेचारे कंटेनर्स मालकान को मिलता भी नहीं है। ये 10 करोड़ रुपया रोजाना तो अब तक वफाकी हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर लगा रही है और एक माह का अगर आप खर्च निकाल लें तो ये अप्रॉक्स 300 करोड़ रुपये की रकम बन जाती है और अब तक 184 करोड़ रुपये वजारत दाखिला इशू भी कर चुकी है। और दूसरे नंबर पर मुजाकरात, मुज़ाकरात हमेशा हुकूमत पहल करती है क्योंकि हुकूमत के पास अख्तियारात होते हैं, हुकूमत के पास पावर्स होती हैं। अपोजिशन कभी भी मुज़ाकरात की पहल नहीं करती। अगर हुकूमत इस मसले को बातचीत से हल करना चाहती है तो पीटीआई का मुतालबा तो बड़ा सिंपल सा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करवा दें। हुकूमत क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन कर रही? आप इसका भी तो जवाब देना। ऐसे कौन से मुतालबात पीटीआई ने किए जो हुकूमत तस्लीम नहीं कर सकती? रही बात दहशतगर्दी के मामले पर, वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी ने बिल्कुल खुलकर अपना मौकफ रखा है और दहशतगर्दी की मजम्मत भी की है और दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी कुर्बानियां केपी पुलिस और केपी हुकूमत ने दी हैं वो लाजवाब हैं। जी
1: जी। और नेक्स्ट कॉल प्लीज। नेक्स्ट कॉल प्लीज, गो अहेड सर। जी
4: रणवीर भाई, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम शफकत भाई।
1: गुड मॉर्निंग सर जी।
2: वालेकुम अस्सलाम सर।
4: शफकत भाई, सारी बातों की एक बात, मैं सिर्फ दो पॉइंट रखूंगा। सारे मसाइल का हल है बातचीत, बातचीत, बातचीत। 71 में आपने बातचीत नहीं की मुजीब से, मैंने ढाका डूबते देखा। दूसरा पॉइंट है, इमरान को इनकी जरूरत नहीं है, कोई माने ना माने, इनको इमरान की जरूरत है। अभी जो ये कर रहे हैं ना पीटीआई वाले या इमरान वाले, ये 29 को जब शौकत खानम कराची का डबल साइज ऑफ लाहौर खोलेंगे ना सर, पूरी दुनिया बैठी होगी वहां पे। मतलब दे हैव टू थिंक, इनकी मजबूरी ये है कि इनको ऑर्डर मानना सिखाया जाता है, सोचना समझना एनालिसिस करना नहीं सिखाया जाता। ये है मेरा कहना। दूसरी बात ये भाई, क्यों मरियम नवाज के पीछे पड़े हो यार? वो बिचारी ने, हमें अल्लाह ने नसीब की है, अब नसीब की है तो जो नसीब है उसको भुगतना है, बदल नहीं सकता वो, दुआ की जा सकती है। वो जो कहीं किसी ने कहा है ना, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरबा उसका चेहरा एक तरफ। और फिर वो कहा है ना, किस शय पर वो उंगली रख दे उसका, उसको वो दिलवानी है। वो झाग लेके जाती, जाने तो यार आपका क्या जा रहा है। जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, उसकी खुशियां सबसे अव्वल सस्ता महंगा एक तरफ। लोगों को बात समझ में नहीं आती, तंकीद किए चले जाते हैं यार। सारी दुनिया जो भी बोले, सब कुछ शोर शराबा है, सबका कहना एक तरफ है, सबका कहना एक तरफ है, उसका कहना एक तरफ है, सही। और ये मेरे पूरे पाकिस्तानी पंजाबी भाइयों के लिए है, पूरे पाकिस्तानी पंजाबी भाइयों के लिए, दुनिया भर में और दुनिया से बाहर जो 3 फीट नीचे चले गए उनके लिए भी। उसने सारी दुनिया मांगी है, मैंने उसको मांगा है, उसके सपने एक तरफ है, मेरा सपना एक तरफ है। कदम बढ़ाओ मियां साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाई ये सपना था पूरा हो रहा है।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
4: वो अब कदम बढ़ा गए, कौम पीछे रह गई है
1: जी।
4: बाकी अल्लाह ही अल्लाह है। शफकत भाई आप रिपोर्टिंग करें, हम आपको सुनते रहेंगे, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वेलकम सलाम जी। जी शफकत,
2: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत आपने चार सुनाए, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हुसन हो तो नजाकत आ ही जाती है और नजाकत को सराहना भी चाहिए, लेकिन नजाकत अपनी हो और हुसन भी अपना होना चाहिए। यहाँ पर हुसन सर टेक्सटाइल के पैसे का है, प्लास्टिक सर्जरीज का है, और यहाँ पर उस हुसन को मेंटेन रखने के लिए आवाम की चमड़ी उधेड़ी जा रही है। और दूसरी बात आपने मुजाकरात की तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत मुजाकरात करने में किसी भी हद तक संजीदा है। और चार साल हो गए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, और 4.5 साल में कोई एक मसला ऐसा नहीं है जो उन्होंने बातचीत से और मुजाकरात से हल किया हो। 4.5 साल के बाद भी अगर आप धमकियां दे रहे हैं, आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पूरा शहर कला बंद होकर बैठ गए हैं कंटेनर्स लगाकर, तो आपको एक नजर अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि किस तरह की गवर्नेंस है और किस तरह की हम हुकूमत कर रहे हैं। इस तरह निजाम रियासत कभी भी नहीं चलता। इस तरह माशरे तबाह होते हैं, हुकूमतें तबाह होती हैं, मुमलिकतें बड़ी बड़ी तबाह होकर हजारों टन रेत के नीचे दब चुकी हैं। जी
1: जी। और सभी कॉलर्स का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया, और कल के प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सर। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू जी, वैसे लाइन अभी फ्लैश कर रही है, लेकिन चलो कल के प्रोग्राम में डिटेल में बातचीत करेंगे। और जी गृह जी, काफी मैसेज भी ने और काफी खबर रह गई आज
5: जी,
1: और
5: टाइम नटता ही जाता जी,
1: पता नहीं लगा माय गॉड कितना 11:48 हो गए, माय गुडनेस
5: हो गए। हां, और एनबी जी एक बार फिर याद कराने की, काफी लोग इधर कॉल कर रहे और काफी लोग सरप्राइजिंगली कह रहे कि उन्होंने बिल्कुल नहीं पता कि जी आरडीएसपी कितना कम कर दिया, कितने देर तो प्लान चलता, ये 90,000 की ग्रांट है, कोई हेरा फेरी बड़ा काम नहीं है, सीधी है,
1: और डिटेल्स दस दो की
5: है। हां, और इहदे च ना जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हैगियां, वैसे लंबी चौड़ी लिस्ट आ, लेकिन जो जनरल कई बार जो डायबेटिक होंगे लोग उन्होंने पता नहीं होंगे, टाइप 1 होना चाहिए वो क्वालीफाई कर सकते हैं, स्पाइनल कोड इंजरी बहुत लोगों को हैगी, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता वो भी क्वालीफाई कर सकते हैं, एडवांस किडनी फेलियर जिहदे च की डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होंगी आ, ये बहुत ज्यादा केसिज ने, अगर तुहानू जानने वाला कोई हैगा जिन्हों डायलिसिस ते आ उन्हों कहो कि मेरे नाल कॉल करे और उहदी भी मैं हेल्प कर सकते हैं, और देखण
1: तो
5: और
1: सुनन तो 90,000 डॉलर तक ग्रांट,
5: 90,000 दी ग्रांट 49 तो नीचे होना चाहिए, बस याद रखियो 49 तो एज नीचे होनी चाहिए ता ही तुसी इहदे लई अप्लाई कर सकते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये शब्द तो बहुत बड़े बड़े आ, लेकिन ऑटिज़म दा प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी आ सब नूं पता कि बच्चों नूं भी बहुत हैगी आ, बड़े भी हैगी आ, और डमेंशिया रणवीर जी अदकर मैमरी लॉस काफ़ी लोगों नूं हो जाता, वॉकिंग की प्रॉब्लम आ, फीडिंग अपने आप नूं करन दी प्रॉब्लम आ, ड्रैसिंग अपने आप नूं कपड़े पाउण दी प्रॉब्लम आ, ये सारिया लंबिया चौड़िया लिस्ट हैगी जिहदे लई तुसी क्वालीफाई कर सकते हो। सो मैनूं कॉल करो, पूरी दी पूरी लिस्ट तुहानूं भेज दित्ती जाऊगी, जिहड़ा फॉर्म हैगा गवर्नमेंट दा फ्री ऑफ कॉस्ट तुहानूं भेज दित्ता जाऊगा, उस तों बाद तुसी डॉक्टर को जाना, उहदे साइन करवाउणे, एंड दैन सी आर ए नूं भेज देना, एक बार अप्रूव हो गए तो 90,000 की अप टू 90,000 ग्रांट जी है वो तुहानूं मिल सकती है।
1: बिल्कुल जी, और वह काफ़ी लोगों ने इसके बारे में आइडिया है ही नहीं,
5: नहीं है जी, नहीं 70% लोगों को पता ही नहीं, कैनेडा से जो लोग इहदा फायदा लै सकते हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं पता है। सो इनफैक्ट मे वी इज़ नॉट फॉर यू, लेकिन आले दुआले तुहाडे कोई भी है, तुहाडे फ्रेंड सर्कल चा, तुहाडे रिश्तेदारी चा, जां तुसीं कम करदे आ उत्थे किसे नूं इदां दी कोई प्रॉब्लम आ तां उत्थे जरूर दसो, मेरा नंबर दे दो जां ऑनलाइन सर्च कर सकदे हो, और उहदे लई भी मैं तुहाडी सारी हैल्प करके गाइड कर सकदे आ
1: जी। बिल्कुल जी, नंबर अपना दे दे प्लीज,
5: 416-451-4001
1: और बाकी हमेशा ही कह रहे हैं कि अपना वोट का इस्तेमाल जोड़ा ये तुसी जरूर करना हर हाल के
5: जी। बिल्कुल, वोटा आ गई और नॉट टू फार, तैयारी कर लो, और एडवांस पोल खुले हुआ और लगता कि वो टाइम बिजी है किसी का, एडवांस जाके तुसी अपने आले दुआले कितने भी आ जे कार्ड आए हैं वो लिखा है सारा कुछ, वो पढ़ के तुसी चले जाओ, आईडी अपनी नाल ले जाओ, 5-7 मिनट का काम आ सारा, उत्थे कोई लाइन नहीं हैगी, और तुसी अपनी वोट पाओ तो फिर आराम ना देखो कि जेडे रिजल्ट आ निकलते हैं, ऊंट किधर नूं बैठता, किधर बैठता कि उधर बैठता।
1: बिल्कुल जी, बहुत जरूरी है, और नाल दे नाल असीं हर रोज़ असीं तुहानूं अपडेट देंदे रहांगे, कल भी कुछ कैंडीडेट्स नाल साडी मुलाकात तुहाडी करावांगे, और कोशिश करांगे कि मिसेस हगा मेयर दे कुछ कैंडीडेट स्टूडियो पहुंचन।
5: कल फ्राइडे है, कल बहुत बिजी दिन होना क्योंकि दो पैरेलल T20 गेम्स, उस तो बाद इलेक्शन दी भी T20 गेम आईयां, वो भी दो ही चल रही है, मिसेस हगा और टोरंटो दी, और उधर पाकिस्तान दी T20 गेम, इंडिया दी T20, सारा कुछ इकट्ठा कल नूं 10 तो लैके 12 बजे तक लगातार तुहानूं अपडेट्स देंदे रहांगे
1: जी। और प्रोग्राम तो बाद मेरा डायरेक्ट नंबर है 416-910-2000 416-910-2000 एक बड़ा प्यारा गीत जरूर सुना के जावांगे, और दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय राजधानी स्वीट्स, राजधानी स्वीट्स, और छोटी सी ब्रेक लेने से बाद एक गीत सुनाने, विल बी राइट बैक।
6: यदि आप होंडा की कोई भी न्यू और यूज्ड कार या वैन लेना चाहते हो तो एक बार बोल्टन होंडा पे जरूर जाओ, इनका दावा है कि यहाँ आपको बेस्ट डील्स के साथ साथ सर्विस भी बेस्ट मिलेगी। आपका क्रेडिट खराब है? डोंट वरी, फाइनेंसिंग ऑन द स्पॉट, सोचो मत, एड्रेस नोट करो, 65 बिल्सवर्थ रोड बोल्टन, यू कैन कॉल 9054570888, दैट्स 9054570888, और विजिट boltonhonda.ca।
7: Sue you. Are you in debt, personal or business? We can help. Business Solutions and Credit Counseling has helped thousands of clients like you for over a decade.
8: With proper help and counseling, you can become debt-free.
9: We can reduce your debt to the maximum and convert balance into easy monthly installments.
7: Nationwide, Toronto, Calgary, and Vancouver. Toll-free 1-866-790-8984. Business Solutions, helping you become debt-free.

करते हैं ट्रक वॉश करना, तेल बदलना और रिपेयर करना। इनके पास बहुत बड़ा यार्ड है जहाँ काफी कैमरास लगे हुए हैं ताकि आप ट्रक को वॉश और सर्विस के लिए ड्रॉप करके नेक्स्ट डे पिक कर सको। ट्रक वॉश विद ऑयल चेंज ओनली फॉर $45। फॉर बेटर डील्स एंड बेस्ट सर्विसेज एक बार जाओ ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, 71 स्टैफोर्ड ड्राइव, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-452-9955, दैट इज 905-452-9955।

0: 7 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट मैंगो लीव्स खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
2: जी और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और 11:55 11:55 और इसके साथ देर रणवीर चौहान को ज़्यादा तो जैसा कि फरमाइश थी आपकी जाने से पहले एक गीत मैं ज़रूर लगाया करूँगा एक पंजाबी का गीत जड़ा की तरसेम सादा म्यूज़िक है किद्दा गुजारी आई रात आज हम डेफिनेटली आपके लिए प्ले करेंगे और गीत अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर आप मैसेज करें कंपोजिशन कैसी लगी 416-910-2000 प्रॉब्लम के बाद मेरा नंबर है 416-910-2000।

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
1: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 एंड बाहर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम आज टेम्परेचर्स रहेंगे। सनसेट होगा 6:46 पर, 6:46 PM एंड इट्स गोइंग टू बी अ नाइस ब्यूटिफुल, a bit of cloudiness jo dekhne ko mil rahi hai, and a lot of sun and rain possible around 2 p.m. today. Chutput si barish. And tomorrow's temperatures 19 and 7, Saturday 18 and 13, and then Sunday ko barish ki sambhavna batai ja rahi hai, 17 maximum 13 minimum. So kuch isi tarah se rahega temperature aane wale dino ka, and slowly the temperatures will start dipping, no doubt about that. Bahar ka tapman jo hai 18 degrees hai Celsius right now. October 8th थर्सडे, एंड जब थर्सडे आता है, जिसको कई लोग मिनी फ्राइडे भी कहते हैं, एंड थोड़ी एक्साइटमेंट वैसे ही बढ़ जाती है, लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, सो पीपल आर एक्साइटेड टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली, थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड, उसके ऊपर से संडे से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो उसको लेकर बड़ा एक हर तरफ है एक, खासकर हिंदू कम्युनिटी में जहाँ पर हम बात करते हैं, नवरात्रि की अलग अलग जो है डांडिया फेस्टिवल्स हैपनिंग हियर एंड देयर, इवेंट्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस GTA, बियॉन्ड GTA। एंड स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 एंड 12:15 की अपनी हेडलाइंस बिल्कुल रेडी है। वैद्यरत्न PV राज जी हमारे साथ हेडलाइंस के बाद होंगे, उनसे बातचीत होगी, एंड साथ ही साथ आपको बता दें द सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय ब्रैम्पटन TV एंड अप्लायंसेज, जहां पर फेस्टिव सीजन वाली डील्स जो हैं सुल्तान जी ने जो कल शेयर की थी, वी विल शेयर दैट विद यू टुडे एज वेल, सो यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दैट। एंड मैं ऐसे करता हूँ, छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, और हाँ, कल रात को जो खबर मिली फ्रॉम बॉलीवुड, ऑब्वियसली वेरी हार्ट ब्रेकिंग, नाना पाटेकर एट द एज ऑफ 75 कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ, बहुत ही शॉकिंग खबर थी। पिछले कुछ सालों से नाना पाटेकर जो हैं महाराष्ट्र में पूना के पास उनका जो गांव है, वहाँ पर तकरीबन 27 एकड़ की ज़मीन है जिसके वो मालिक थे, एंड और उसका टेक केयर कर रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे, एक फाउंडेशन की स्थापना उन्होंने की थी, जिस फाउंडेशन में उन्होंने अपने जेब में से जो 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने बचाया था फॉर अ कार जो उन्होंने नहीं खरीदी, उन्होंने उन गरीब किसानों को 15,000 रुपये दान किए। फिर उसके बाद उस फाउंडेशन के ज़रिए तकरीबन 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया गया, जो कि कौन बनेगा करोड़पति वाले लास्ट ईयर वाले सेगमेंट में आकर अमिताभ बच्चन साहब को बताया था, जब अपनी फिल्म वनवास को प्रमोट करने आए थे। दैट्स प्रॉब्ली हिज लास्ट फिल्म, बट देर कुड बी सम अदर मोर फिल्म्स कमिंग नाउ आफ्टर हिज डेथ, जो उन्होंने कम्प्लीट की। इनफैक्ट हाउसफुल 5 में भी पिछले साल नज़र आए थे, एंड वॉट एन अमेजिंग एक्टर, वॉट एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। और ऐसे कुछ शख्सियतें होती हैं जो गुड बाय कह के निकल जाते हैं, एंड सालों तक हम उन्हें याद करते हैं फॉर द वर्क दैट दे डिड। आई स्टिल कैंट गेट ओवर, मैं कई बार अक्सर मेंशन रेडियो शो पे करता रहता हूँ, इरफान खान की मौत के बाद जो एक वैक्यूम छोड़े जाते हैं ऐसे बड़े लोग, आर्टिस्ट्स, एंड यू कैन नेवर हैव जगजीत सिंह। जब मुझे याद है जिस दिन जगजीत सिंह साहब का निधन हुआ था, इट्स द सेम फीलिंग। अमरीश पुरी, आई रिमेंबर, दीज आर द पीपल आई सॉर्ट ऑफ रिमेंबर, बट देन यस, व्हेन वी वर किड्स देयर वर मेनी मेनी मोर, मेनी अदर्स दैट लेफ्ट लेजेंड्स, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो भुलाए नहीं जाते, एंड ऋषि कपूर फॉर दैट मैटर। चलिए आज नाना पाटेकर साहब को याद करेंगे, उनके कुछ फिल्मी सफ़र को तय करेंगे, 2 बजे तक आपकी रिक्वेस्ट लेंगे, एंड एक बहुत ही खास मेहमान आगे चलकर हमारे साथ होंगी, एंड प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ द ट्रिलियम हेल्थ पार्टनर्स फाउंडेशन कैरोलाइन राइसबोरो। और क्यों वो हमारे साथ होने वाली हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक टू हर अबाउट, उसके बारे में बताएंगे, एंड आइडिया बिहाइंड बिल्ट फॉर अस, $1 बिलियन कैंपेन है to help Trillium Health Partners Foundation build Canada's largest hospital and Ontario's first hospital dedicated to women and children. So, isko lekar hum Caroline ke saath baatcheet karenge. I'll take a very short break. Samavara ki headlines lekar foran aate hain wapas.
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ. वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है. एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे. हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट. फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर. विजिट veinsautogroup.com.
2: 2026 ब्रैम्पटन म्युनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा. अगर आप वोट नहीं कर सकते ऑन वोटिंग डे तो आप वोट अर्ली भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग. एडवांस वोटिंग की तारीख होगी अक्टूबर 9th, 10th, 11th, 16th एंड 17th. वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम 12 नून टू 8 पीएम और वीकेंड्स पर 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक. यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैम्पटन. अपना वोटर नोटिस जरूर लाएं इफ यू रिसीव वन एंड आइडेंटिफिकेशन शोइंग योर नेम एंड एड्रेस टू वोट. अगर आपको वोटर नोटिस नहीं मिला, ब्रिंग योर आईडी विद यू टू वोट. And you can update or add your voter information in person. Voting locations ke liye, voter information ke liye, and a list of candidates ke liye, aaj hi visit kare brampton.ca/brampton votes.
3: Hi Anju, kaisi ho? How's your son doing?
4: Nisha, pooch mat. Sara din computer, TV, phone par laga rehta hai. Aankhein to kharab hongi hi. Homework ke time battery gul.
3: Main samajh gayi. Use chahiye prescription wale smart glasses from Clear Optical.
5: She's right. Chahe bacche ho ya bade, wear smart glasses every day. Ye prescription smart glasses aapke kharab hote vision ko stabilize kare bina kisi bhi stress and fatigue on your eyes. Visit 8005 Financial Drive, Brampton, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
6: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं. तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें. आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट. और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है. GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
7: काव्या होम्यो केयर. काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Rajdhani Sweets and Restaurant, McQueen Dental Care, Kavya Home Your Care, Clear Optical by Varun Kanda, and Win Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. Poland ke second school attack mein ek shakhs ki maut hui, do hue zakhmi. Do dinon mein ye dusra hadsa samne aaya. US man ne guilty plead kiya to buying plutonium from Russia, then selling it online to customers. Satya Nadella aur Elon Musk un top टेक सीईओज में से हैं जिन्हें यूएस साइंस मेडल मिलेंगे. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहिए बट हैज डाउट्स अबाउट विनिंग इट. ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर पावर को टेक ओवर कर लिया है, वॉर जल्द खत्म होगा और ऑयल प्राइसेस विल कम टम्बलिंग डाउन. रशिया ने अटैक्स को इंटेंसिफाई किया, 28 लोगों में मरने वालों में से कई बच्चे भी शामिल. कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा गहरा हुआ, सऊदी के अनुसार एयरपोर्ट्स पर हुए हूती अटैक्स में 3 लोग मारे गए. सीरिया के अनुसार सैबोटाज अटैक में देश की नॉर्थ ईस्ट पाइपलाइन बर्बाद हुई. अंडरकवर एफबीआई एम्प्लॉय ने टीनेजर को $600 में राइफल सेल की, फिर उसे हिरासत में लिया. ईरान के बॉम्ब न्यूक्लियर कंपाउंड में सैटेलाइट इमेजेस शो सम काइंड ऑफ एक्टिविटी. लोकल समाचारों में टोरंटो बॉर्न पोएट एंड एसेस्ट एन कार्सन ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता. वॉन के डेडली हिट एंड रन की नई डिटेल्स आई सामने. ब्रैम्पटन में हुए टो ट्रक इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में शख्स की मौत हुई एंड नॉर्थ यॉर्क में महिला ने सीनियर से हैंडबैग्स और पर्सेस चुराए. मार्कम शूटिंग में शख्स हुआ जख्मी, सस्पेक्ट लापता. एंड बैक स्ट्रीट बॉयज के टोरंटो रेजिडेंसी में 9 शोज होंगे. कलिजन ने ईस्ट बाउंड हाईवे 401 एक्सप्रेस लेन्स को बंद किया इन स्कारब्रो. भारतीय समाचारों में 42 फॉर्मर जजेस ने ओपन लेटर लिखा, वार्न अगेंस्ट वोट थेफ्ट एलिगेशंस. इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट की निंदा भी की. दिल्ली के सीमापुरी बिल्डिंग कलैप्स का डेथ काउंट अब 5 पर पहुंच चुका है, 8 लोग हुए जख्मी. बीआरएस ने तेलंगाना के एमएलए पर इल्जाम लगाया ऑफ इन अप्रोप्रिएटली टचिंग द गर्ल ऑन द बस. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड पुलिस चीफ के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया. और मथुरा स्कूल में वाटर टैंक में एंटर होने से 4 मारे गए. फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पायलट कैप्टन स्मिथ मचार की हेल्थ इज इंप्रूविंग. प्रियंका गांधी ने कहा, पुलिस पर्सनल ने मुझे प्रोटेस्ट के दौरान स्क्रैच किया. एंड गुजरात में डेंगू से असम पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल की हुई मौत. तमिलनाडु केरला में भारी बारिश का अलर्ट जारी. उत्तराखंड के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में भी अलर्ट जारी है. इंडिया अमंग टॉप 10 इमर्जिंग एआई रेडी मार्केट्स. टॉप पर है यूएस विच स्कोर्ड 100 ऑन द इंडेक्स. फ्रेश सेक्स असॉल्ट केस में सर्वाइवर की कंप्लेंट के बाद तमिलनाडु ग्रेनाइट बैरन वीरामणि को हिरासत में लिया गया. इंडिगो फ्लाइट टू लखनऊ हिट बाय लाइटनिंग एट 17,000 फीट. नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ. गाजियाबाद के हाई राइज एलिवेटर में ट्रैप्ड एक बुजुर्ग व्यक्ति को 1.5 घंटे बाद एलिवेटर से निकाला गया. एनसीआर रीजन में एलिवेटर सेफ्टी पर बहस शुरू हुई. और मेजर रिफॉर्म में जीएसटी काउंसिल ने टैक्स ऑफिसर्स के अरेस्ट पावर्स को स्क्रैप किया. रेज प्रोसिक्यूशन टू 5 crore रुपीज फ्रॉम 1 crore. पाकिस्तान की खबरों से, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से कहा इंडिया टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है थ्रू प्रॉक्सीज इन अफगानिस्तान. इंडिया इज बैकिंग मिलिटेंट ग्रुप्स इंक्लूडिंग टीटीपी एंड बीएलए. अक्टूबर 8 से 10 पाकिस्तान विजिट के दौरान वैटिकन इन्वाइट टू डिस्कस पीस एंड इंटरफेथ हार्मनी. आर्च बिशप गैलेगर दौरे के दौरान इशाक डार से भी करेंगे मुलाकात. रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर भी होगी दोनों में चर्चा. हाईजैक टैंकर के 3 और क्रू मेंबर्स पहुंचे कराची. एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने उन्हें एग्जामिन भी किया. एमटी ऑनर 25 सीज्ड बाय पायरेट्स ऑन अप्रैल 21st. आईएसपीआर डीजी का कहना है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स अब सऊदी पहुंच चुके हैं अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स. मक्का पैक्ट का निर्माण लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल टाइज पर हुआ है. पाकिस्तान तुर्की सऊदी शेयर अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नाउ. गवर्नमेंट ने फिर से पीटीआई के साथ टॉक्स की ऑफर रखी और कहा स्टेट को हॉस्टेज बनाकर आप अपनी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते. राणा सनाउल्लाह ने कहा कि निगोशिएशंस के जरिए हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को दूर कर सकते हैं. ख्वाजा आसिफ ने वार्न किया कि अगर पीटीआई ने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो इमरान खान के लिए रिलीफ की संभावना नहीं होगी. हमें आप फोर्स करके अपनी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते. और नॉर्थ वजीरिस्तान आईबीओ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 9 आतंकियों को मार गिराया. दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से पेसर भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया वापसी के बाद अब मोहम्मद शमी की वापसी पर भी हो रही है चर्चा। बिहार ने फर्स्ट टू रणजी ट्रॉफी मैचेस के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया में पेसर भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर कृष्णाचार्य श्रीकांत ने खुशी जताई। न्यूजीलैंड की कंडीशंस विल फेवर द पेसर, बोले श्रीकांत। और बॉम्ब थ्रेट ईमेल हिट्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम वाइल अंडर 19 इंडिया एंड अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया टीम्स वर प्रेजेंट। बॉलीवुड खबरों से, एक्टर नाना पाटेकर का कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ। ही वॉज 75। पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें याद किया और शोक जताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने काला हिरन अमित जानी केस में सलमान खान से रिप्लाई मांगा है। आईटी सर्चेज हुई एट रमायना प्रोड्यूसर्स मुंबई ऑफिसेज, शेयर्स फॉल 8%। कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा अनाउंस सेकेंड प्रेगनेंसी, बोले ब्लेस्ड वंस अगेन। करीना कपूर का मिस्ट्री हेलमेट पोस्ट डिकोडेड, शी हैज टीम्ड अप विद F1 चैंपियन लैंडो नॉरिस फॉर अ ग्लोबल कोलैबोरेशन। रणबीर कपूर बने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मंत्रा ग्रुप। करीना कपूर ने गूगल एंड्रॉयड से हाथ मिलाया फॉर अ ग्लोबल कोलैबोरेशन। नाना पटेकर डाइज ऑन तरंगा कोस्टा राजकुमार्स 100th बर्थ एनिवर्सरी। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताज़ा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल। वैद्यरत्ना पीवी राज जी हमारे साथ है। छोटा सा मैसेज, आते हैं बहुत ही जल्द वापस। सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्ना पीवी राज, ब्रैम्पटन एंड स्कार्बरो, 647-327-8111। जी हाँ दोस्तों, 647-327-8111। पीवी राज वैद्यरत्ना पीवी राज जी का नंबर है। ब्रैम्पटन स्कार्बरो दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं ऑल अक्रॉस जीटीए। वैद्य जी का स्वागत करते हैं और कुछ सवाल जो हैं, कई बार तो लिसनर्स से ही सवाल आ जाते हैं कि भाई किस तरह से ये चीज़ें होती हैं आयुर्वेदा को जो नहीं समझते, जिन्हें पता है उन्हें तो जानकारी है। वैद्य जी वेलकम करते हैं आपका। हमारे लिसनर्स को थोड़ा अपने बारे में ज़रूर बताएं, आयुर्वेदा में हेल्थ को लेकर कैसे गाइडेंस आप देते हैं, हमारे लिसनर्स को क्या मार्गदर्शन देंगे आप प्लीज़।
1: ये दुनिया में असली धन अच्छा स्वस्थ है। मैं साजा केरला आयुर्वेदिक से वैद्य रत्नम पीवी राज हूँ। पहले हमारा सारे लिजनर्स के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हमेशा हमारा पेशेंट्स का तबीयत अच्छा रहने के लिए कुछ ना कुछ सलाह देते रहता हूँ हमेशा। हेल्थ इज वेल्थ। पुराना टाइम पे भी सभी लोग बोलता है आयुर्वेदा लंबी आयु का वरदान है। ये आयुर्वेदा हमारा जीवन में रहेगा तो हमारा सारी शरीर अच्छा हो जाता है। और आयुर्वेदिक का कमाल क्या है, कोई भी बीमारी को जड़ से निकाल देता है और लोगों का शरीर में इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। उसका कारण से आगे फ्यूचर में भी कोई भी बीमारी शरीर को तकलीफ ना कर सकते, क्योंकि शरीर में उतना इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। दिस इज पावर ऑफ आयुर्वेद। हम सुबह से रात तक क्या क्या खाता है वो सब कुछ नेक्स्ट डे मॉर्निंग को पेट से जरूर निकाल जाना है। ऐसा रहेगा तो पेट भी शुद्ध होता है, बॉडी भी शुद्ध होता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता है। हमारा तबीयत अच्छा रहेगा तो हमारा माइंड भी अच्छा रहता है। हम फैमिली के साथ टाइम भी आराम से स्पेंड कर सकते, बिजनेस आराम से कर सकते, जॉब भी आराम से कर सकते। इसीलिए पहले तबीयत अच्छा रहना है। पैसे, बंगला, गाड़ी, वो सब कुछ बाद में, वो सब कुछ आता ही जाता है, लेकिन तबीयत इम्पॉर्टेंट है। तबीयत एक बार जाएगा तो पूरा फैमिली लाइफ पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इसीलिए तबीयत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। हम इधर GTA में ब्रैम्पटन एंड स्कार्बरो दोनों लोकेशन में रहता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 647-327-8111। इट्स 647-327-8111। थैंक यू
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं नंबर एक बार फिर से दे दूं, वैद्य रत्ना पीवी राज जी, जो कि ब्रैम्पटन स्कारब्रो दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं ऑल अक्रॉस जीटीए बियॉन्ड जीटीए, 6473278111। दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है वैद्य जी से, ये भी पूछते हैं वैद्य जी, मौसम बदल रहा है और ऐसे में एस्मा के पेशेंट्स की परेशानी बहुत हो जाती है, उन्हें मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप गाइड करें, उन्हें गाइडेंस ज़रूर दीजिए कि भाई ऐसे मौसम, बदलते मौसम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
1: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी, आस्थमा, आस्थमा नवे डेज बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम वीक इम्यूनिटी के कारण से भी होता है, वेदर का कारण से भी होता है, जेनेटिकली पेरेंट्स से बच्चों को भी होता है। तो इसका कारण से लोगों को खांसी आ जाता है, कुछ लोगों को सर्दी पकड़ता है, कुछ लोगों को नॉक ब्लॉक हो जाता है, कुछ लोगों को चेस्ट में हेवी फीलिंग होता है, रात को सोने में आवाज़ आता है, वीजिंग आता है, रात को नींद भी बराबर नहीं मिलता है और आंख भी लाल लाल हो जाता है, आंखों में एलर्जी पकड़ता है, इचीनेस हो जाता है, चिक चिक भी आता है, स्नीजिंग बोलता है ना, स्नीजिंग भी आता है। इसका कारण से लोगों को बॉडी भी वीकनेस हो जाता है, कितना खाना खाएगा तो भी बॉडी को बराबर सूट नहीं होता है, थोड़ी देर चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए हमारा केरला में बहुत अच्छा जड़ी बूटियों है, वो दवाई खाने के बाद लोगों को ये प्रॉब्लम जड़ से निकल जाता है। हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, वीकनेस के लिए, और कुछ कपल्स को शादी होता है बहुत साल को पहले लेकिन बच्चा नहीं मिलता है, तो उसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो लोगों का शरीर में, उसके लिए भी बहुत अच्छा दवाई है। और जॉइंट पेन के लिए, बैक पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए, लिवर इश्यूज़ होता है ना, फैटी लिवर, उसके लिए, बाल हेयर का प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, डायबिटीज़ के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए, माइग्रेन के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा दवाई मिल जाता है
0: जी। एंड वैद्य रत्ना पीवी राज जी से बात कर रहे हैं दोस्तों, और अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो याद रखें सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां पर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा किया जाता है, नब्ज देकर, एंड क्लाइंट्स को इलाज से बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है, एस्मा हो, एलर्जीज हो, स्किन प्रॉब्लम्स हो, कमर घुटनों का दर्द हो, आर्थराइटिस है प्रॉब्लम, ग्रैस प्रॉब्लम, अल्सर्स, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोराइसिस, और सारी बीमारियों से का जड़ से इलाज किया जाता है। पीवी राज जी का नंबर प्लीज नोट कर लीजिए, 6473278111, 6473278111। एंड बहुत बहुत शुक्रिया है वैद्य जी का। कुछ कॉलर्स को लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आज हम द ग्रेट नाना पाटेकर साहब के फिल्मी सफर को भी थोड़ा सा यहाँ पे तय करेंगे। पहले कॉलर को ले लेते हैं, आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड।
2: हाँ जी, पहले तो नाना पाटेकर का जो देहांत हुआ है
0: जी,
2: गुड आर्टिस्ट और बड़े देश से उठ के अच्छे मूवियों में आए वो।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
2: और लोगों को काफी,
0: आपने नाना पाटेकर की फिल्में देखी हैं?
2: बिल्कुल देखी है, क्यों नहीं देखी।
0: अच्छा, कौन सी फेवरेट रही है आपकी?
2: वो जितनी भी उसकी फिल्में थी मैं देखता ही था
0: जी जी।
2: अभी मुझे, मैं देखता हूँ फिल्में लेकिन बस वो उस हद तक ही देखता हूँ जितनी देखनी है, कोई बहुत ज्यादा उसको सवार नहीं कर देता।
0: अच्छा, इमरान हाशमी की फिल्में नहीं देखते आप?
2: इमरान हाशमी की भी देखता हूँ।
0: अच्छा, देख लेते हैं आवारापन टाइप की फिल्में।
2: आवारापन अब वहाँ के इंडिया में वो आवारापन चलता है सब, ठीक है, देखे।
0: अच्छा अच्छा,
2: अब आप जैसी उम्र में भी लोग आवारापन देख रहे हैं तो मैं क्या बोलूं उसको?
0: नहीं, मैंने नहीं देखी है, मैं तो वैसे आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको इमरान हाशमी पसंद है इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। तो अच्छा, नाना पाटेकर की देखिए एक बड़ी खासियत थी कि जो महान कलाकार या महान एक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो एक बुरी फिल्म में भी उनकी एक्टिंग पर कभी उंगली नहीं उठाई जाती। सो नाना पाटेकर ऑलवेज एक्सेल्ड इन एवरीथिंग दैट ही डिड।
2: हाँ नहीं, वो ही वाज ए गुड आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट वही होता है जो जो रोल हो ना, है ना
0: जी,
2: जो रोल हो उसमें वो बिल्कुल अपने आप को उससे मिला ले और लगे कि ये, वो तो पता ही होता है मूवी है लेकिन जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना, ठीक है ना। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन ठीक है, वो नाम से, बाप के नाम से कोई चांस मिल गया आगे निकल आए, लेकिन आर्टिस्ट वही होता है। और
0: आपने कभी एक्टिंग करने का नहीं सोचा
2: क्या?
0: आपने एक्टिंग करने का नहीं सोचा कभी?
2: हाँ मेरे घर में मिसिस मेरी कहती है आप बहुत अच्छे एक्टर हो।
0: हाँ नहीं वो तो हमारे लिसनर्स कईयों को लगता है कि आपके अंदर वो एक्टिंग की प्रतिभा है, आप कर सकते हो एक्टिंग।
2: नहीं बात ये है, देखिए आर्टिस्ट जो है ना,
0: हाँ
2: वैसे अभी मैं और बात करने लगा हूँ, जैसे मैं क्रिकेट के खिलाफ हूँ, आर्टिस्ट है ठीक है, उसके रिस्पेक्ट करे, उसको प्यार करे, लेकिन उसके फैन बन जाए, उसके आगे पीछे घूमे, जाओ जा रहा है उसके पीछे पीछे भागे
0: जी,
2: ये ना करे, क्योंकि ये अभी नोबेल प्राइज हुआ है
0: जी जी,
2: आप बताए ना इंडिया से कितने लोगों ने नोबेल प्राइज लिया है, और टोटल देखे इंडिया पाकिस्तान इनमें से कितने नोबेल प्राइज है। वजह ये है कि हमारे यहाँ जो हीरो है ना वो ये फिल्मों वाले हैं।
0: अच्छा अच्छा,
2: हमारे यहाँ ये नोबेल प्राइज लेने वाले हीरो नहीं, जिस आदमी ने इलेक्ट्रिसिटी ऐजाद की या जो भी मेडिसिन ऐजाद की वो हमारे नजदीक हीरो नहीं होता, तो बेचारा एक कोई साइंसदान कहीं बैठा हुआ कुछ कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ आर्टिस्ट से जो वहाँ वो आके मूवी में आके इश्क लड़ाए, लड़ाई करे, एक ठोसा मारे, 20 आदमी इधर गिर जाए, जैसे अमिताभ बच्चन का था या धर्मेंद्र का था, या हमारे पाकिस्तान में सुल्तान भाई एक होता था, एक गंडा सा उसके पास होता था, वो पूरे गांव को आगे लगाया होता था उसी। तो ये हमारे जो स्टैंड,
0: मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इंडिया में से 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए मिला था, सीवी रमन साहब को फिजिक्स के लिए 1930 में मिला था, मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, अमर्त्य सेन को 98 में मिला, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला, हरगोबिंद खुराना को 68 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए 83 में मिला, वेंकटरमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में 2009 में मिला, अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक साइंसेज में 2019 में मिला। सो ऐसी बात नहीं है, इंडिया से या पाकिस्तान से भी काफी लोग जीते हैं।
2: सर एक दिन रुक, एक मिनट रुक जाए
0: जी,
2: देखे पॉपुलेशन देखे इन दोनों 1.6 बिलियन लोग हैं।
0: ठीक है, चलिए ये मुद्दे को किसी और दिन हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा कहीं और चले जाएगा। एंड आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आपकी अपनी एक इनसाइट्स होती हैं ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगले कॉलर को लेते हैं, आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड।
3: जी
0: फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास जी, आप सुनाएं, लिसनर्स कॉल करते हैं, मिजाज तो अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं।
3: नहीं, बहुत अच्छा, असल में जो ये साहब हमारे विचार देते हैं ना, इनका मुझे बड़ा अच्छा लगता है,
0: जबरदस्त है, मतलब
3: एक चीज इनके अंदर ये है कि माइंड नहीं करते और दूसरे के खुल के बात कर रहे होते हैं जो कुछ भी इनके दिल में होती है।
0: या बॉम्बे की भाषा में, बॉम्बे की भाषा में ऐसे शख्स को बिंदास कहते हैं, बिल्कुल बिंदास बंदा।
3: अच्छा, तो ये इनके बातों में बहुत सारी बातें इनकी ऐसी होती जिनसे मैं भी इंस्पायर होता हूँ कि यार ये बात जो बंदा करता है ना, ये बड़ी अच्छी बात, जैसे कि अभी आपने कहा ना कि रोल आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वाकई वो ये भी उसी सांचे में ढल जाते हैं, बिल्कुल एकदम
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: उस किरदार में
0: टैलेंटेड, टैलेंटेड
3: एक आवाम की एक अंदर की जो जज्बात होते हैं ना, ये निकाल के बाहर रख रहे होते हैं हमारे सामने,
0: 100%
3: लोग ऐसे ऐसे महसूस कर रहे होते हैं लोग,
0: बिल्कुल।
3: तो बहरहाल खैर ये तो बड़ी अच्छी बात है, और नाना पाटेकर तो अपने किरदार में मुझे तो बहुत ही अच्छा वो फनकार लगा, और मैंने फिल्में देखी जिसे इनको फिल्मों का नाम याद नहीं है ना, ऐसे मुझे भी याद नहीं, लेकिन जो उसका एक स्टाइल होता था ना, ऐसे कर करके जो स्टाइल में उसका जो इमोशन थे और जो उसके एक्शन थे ना उनके
0: जी,
3: तो बड़े जबरदस्त उसके, मतलब
0: मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं आपको बताऊं, एक फिल्म थी 1996 में संजय लीला भंसाली की एक फिल्म आई थी जिसमें सलमान खान और मनीषा कोयराला थे, लेकिन एक्चुअली अगर मैं कहूं तो मुख्य किरदार में नाना पाटेकर और सीमा बिस्वास थे, एंड उस फिल्म का नाम था खामोशी द म्यूजिकल। बिलीव मी, अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी, मुझे लगता है कि नाना पाटेकर के करियर की वो प्रोबेबली द बेस्ट फिल्म कहलाई जा सकती है,
3: खामोशी
0: द म्यूजिकल। एंड उसमें मतलब जो एक कैरेक्टर्स प्ले किए सीमा बिस्वास और नाना पाटेकर ने, इट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, और हर एक्टर उस लेवल पर एक्ट ही नहीं कर सकता नाना पाटेकर जो करते थे। सो ग्रेट ग्रेट पर्सन एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट एक्टर एज वेल।
3: ये कोई वो तो नहीं थे जिसमें ये बुजुर्ग बने थे, कोई मतलब बड़े बने थे उसमें, ऐसे तो नहीं था कुछ ये?
0: इसमें ये मनीषा कोराला के फादर होते हैं और हैंडीकैप या मेंटली तो नहीं कहूंगा, फिजिकली जो एक सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, एंड उनकी कहानी थी और उनकी वाइफ भी वैसा ही कैरेक्टर दिखाया है, और किस तरह से वो अपनी जिंदगी जीते हैं और किस तरह से वो अपनी बेटी जो सिंगर बनना चाहती है मनीषा कोराला उसकी नजर से दुनिया को देखते हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर. मैं कुछ और कॉलर्स को क्विकली यहाँ पे लेना चाहूंगा. आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
4: जी सनी जी, कैसे हो?
0: फर्स्ट क्लास, प्लीज गो अहेड सर.
4: या वो खामोशी जबरदस्त मूवी थी, वो ब्लॉकबस्टर मूवी थी.
0: यस,
4: उसमें जो नाना पाटेकर ने जो अपना जो एक्शन उसने जो किया था जो जबरदस्त, या वो ऐसी मूवी बाद में वो नहीं बना सका जो वो मूवी उसने बनाई थी.
0: सही बात, बिल्कुल सही.
4: जो उसने जो किया, अपना रोल किया था ना,
0: बिल्कुल.
4: और अच्छा, वो इज अ सैल्यूट गाय. वो कभी वो ना पॉलिटिक्स में गया कि ना कभी किसी के बारे में उसने बुरा बोला.
0: बट ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज on politics, on secularism, on a lot of variety of topics. Unke views bade strong the, jo ki achhi baat thi.
4: Bolta raha hai, lekin kisi ke bare mein, like nahi Muslim ke, nahi aur koi religion ke bare mein, uski kharab baatein nahi thi.
0: Bilkul, bilkul.
4: Aur jo bhai sahab ne, aapne jo pehla caller tha na, everyday aate hai, right?
0: Ji, ji, ji.
4: Ya, mujhe bhi maza aata hai uski baatein sunne ka, right? Bahut achhi baatein bolte hai aur sahi baatein bolte hai. लेकिन यही रेडियो पे रात को उसको बिचारे को बोलने नहीं देते, बिचारे को वो सही बात करते तो उसकी बात को काट डालते, राइट?
0: या देखिए, मैं तो मुझे कई लोगों ने कहा है हमारे फर्स्ट कॉलर के बारे में कि भैया
4: पाकिस्तान इंडिया, ये पाकिस्तान इंडिया नहीं है, लोगों को बोलना बोलने देना चाहिए, राइट?
0: बिल्कुल.
4: उसको बिचारे को या तो उसकी फोन कट कर देते है, या उसको सुनते नहीं है, या उसके साथ बहस करते है, राइट? Yeah, this guy doing very good job. बहुत अच्छी बात करते हैं वो.
0: Thank you जी, thank you.
4: Okay जी, okay,
0: thank you brother. देखिए, मैं always ये कहता हूँ, मैं आपके विचारों से सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ. आप मेरे विचारों से कई बार सहमत होते हैं और कई बार ऐसा होता है आप असहमत होते हैं. बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दूं जस्ट बिकॉज आप मेरे विचारों से सहमत नहीं होते और वाइस वर्सा. सो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, ये आपका प्लेटफॉर्म है. आपको पूरी आजादी है कि भाई आप आके इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर अपने विचार रखें. और हमारे लिसनर पहले वाले जो हैं, कई बार हमारे कुछ पुराने और लिसनर्स ने मुझे कहा कि भाई उन्हें आप ऑन एयर ना आने दें. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव कि भाई हर एक की एक अपनी सोच है, और अग्री करना डिसअग्री करना ये तो भाई हमारे अपने ऊपर है. आखिरी कॉलर को लेते फिर अगला गीत जो है नाना पाटेकर की फिल्म वेलकम से उन्हें याद करते हैं, आनंद राज, आनंद शंकर महादेवन की आवाज में. एंड आखिरी कॉलर यहाँ पे, आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
5: जी सनी जी, बात करूं मैं?
0: जी प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड.
5: अच्छा सनी जी, ये जो कॉलर जिनके बारे में आज जो दो तीन आपके कॉलर ने कहा, आप यकीन करें मुझे पता नहीं, बड़ी हैरानी होती है आप सब पे, आप भी शामिल हैं उसमें और रात वाले भी, इनकी बात को मजाक में क्यों ले जाते हैं? इतना सिंसियर, इतना नाइस ये अपना तजिया देते हैं, लेकिन सब लोग इनसे क्यों मजाक, या तो लाइन काट देंगे या इनको डांट देंगे, ये क्या वजह है?
0: नहीं, मैंने देखिए, मेरा उनसे थोड़ा बहुत मजाक जरूर चलता है, लेकिन मैंने उनकी कभी लाइन आज तक नहीं काटी. मैंने
5: नहीं, लाइन आपने नहीं काटी, मैं जो बात कर रहा हूँ आप शायद सुने, दोबारा कहता हूँ.
0: हाँ,
5: आप इंक्लूडिंग आप भी और दूसरे, ये इतने सही तजिया देते हैं पाकिस्तान इंडिया का. देखें बेसिकली सनी जी, देखा जाए तो हम लोग सब, बेसिकली अगर देखा जाए हम लोग सब इंडियन है, ठीक है ना,
0: हम सब एक है.
5: हम लोग इंडिया से हम लोग पाकिस्तान में आ गए थे, हम लोग एक अलग एक तरह के, ठीक है ना, लेकिन बेसिकली हमारे जो फोर फादर सब तो इंडियन ही है ना, बेसिकली चाहे हमारा धर्म कोई भी हो, हम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कुछ भी हो, ठीक है ना. लेकिन पता नहीं क्या बात है, इनको रात के प्रोग्रामों में जो आते हैं वो इनको इतना डिसग्रेस करते हैं, इनको इतनी, आप यकीन करें, इतनी शर्मिंदगी होती है. मुझे नहीं पता ये कौन सा आप हैं, मुझे ना इनका नंबर पता है, लेकिन मैं इनको सुनता हूँ, इतना सही तजिया देते हैं, या आप भी जो सवाल करते हैं या शाम वाले भी, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मैं समझता हूँ इनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए.
0: जी नहीं, आई अग्री विद यू. और फिर मैं वही चीज को रिपीट करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने शायद कुछ कहा हो मेरे पिछले 19 साल के इस छोटे से मीडिया करियर में, टीवी रेडियो में, और कई चीजों पर आप असहमत हुए हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुनना बंद कर दिया, या उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहा कि भाई ये तो इस मीडिया पर्सन या जर्नलिस्ट को पता ही नहीं है क्या बोल रहा है. आई थिंक इट्स it's where we disagree, but we still respect and love each other.
5: हाँ, मैं आपको बताऊँ, आज मैंने first time call की है, आपका program मैं बहुत ज़माने से सुनता हूँ, जब से आता है, और सारे program सुनता हूँ, और really respect, क्योंकि आप लोग information देते हैं धर्म की ना, यहाँ की, back home की सारी, तो मुझे तो यही, मैं समझता हूँ सबको यही चीज़ चाहिए होती है, आपस में मतलब इतना होना नहीं चाहिए, बारा रहनी हो, मैं भी शायद मेरा perception different हो, लेकिन I do respect all of your callers.
0: Really. Thank you. No, thank you, brother. I respect you,
5: you
0: as well.
5: You too, Sunny ji. You too.
0: Thank you. Thank you, brother. Love you. Bahut bahut shukriya. And aapko bhi hum bahut respect karte hain. Aapko jo callers call karte hain, main to haath jod kar always naman karta hun, thank you karta hun, pranam karta hun ki bhai aapki wajah se hum yahan pe aate hain. Nahi to apni to haisiyat hai nahi itni. Anyways, let's remember Nana Patekar sahab. What a great actor. What a great person. Enjoy. Aate hain wapas.

0: हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे।
1: बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। द ग्रेट नाना पाटेकर साहब। रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं। राज जी से बातचीत करते हैं और उसके बाद हमारे साथ बहुत ही एक खास मेहमान होंगी, कैरोलाइन राइजबोरो, जो कि प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ ट्रिलियम हेल्थ पार्टनर्स फाउंडेशन है। व्हाई शी इज गोइंग टू बी विद अस वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले द मोस्ट नॉलेजेबल रियल्टर दैट आई नो इन टाउन, राज जोशी। राज जी, स्वागत है आपका।
2: सर जी नमस्कार, सत श्री अकाल, और आपको और प्यारे लिस्टनर्स को वेरी गुड आफ्टरनून
1: जी। आपको भी
2: सर जी, ब्रैम्पटन के लिए एक स्पेशल न्यूज है, $109,000 इन सेविंग्स ऑन मूव इन रेडी टाउन होम बंगलोज, स्टार्टिंग है मिड 600 से, और ये कम्युनिटी जो है ये पड़ती है हाईवे 410 और सैंडलवुड के इंटरसेक्शन पर। ये मूव इन रेडी होम्स हैं जिसमें बहुत सारी कम्युनिटी टेस्टिमोनियल्स तो अवेलेबल ही हैं, लेकिन एक कन्वीनियंट जीटीए लोकेशन के साथ प्राइवेट गेटेड कम्युनिटी है विद 24/7 स्टाफिंग, क्लब्स, एक्टिविटीज, इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट, गोल्फ, टेनिस, पिकल बॉल, स्विमिंग, फिटनेस एंड मोर, और सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस फ्री लिविंग इंक्लूडिंग लॉन केयर एंड स्नो रिमूवल। The right move at the right time, act now. अगर आप डाउन साइज करना चाह रहे हैं और आप घर के आस पास ऑल अराउंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लॉन मोइंग, स्नो रिमूवल वगैरह, उससे छुटकारा चाहते हैं, तो ये एक जबरदस्त न्यू वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। हमें कॉन्टेक्ट कर लें, डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगेन स्टार्टिंग प्राइजेस हैं मिड 600 से, HST रिबेट इंक्लूडेड है इसमें
1: जी।
2: कॉन्टैक्ट कर लें जल्द से जल्द, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा लास्ट नहीं करती। साथ ही साथ बता दूं, अगर कोई भाई बहन इंटरेस्टेड हो तो न्यू रिलीज है और न्यू अपॉर्चुनिटी है बायर्स के लिए, जिसमें प्री होल्ड टाउन होम्स नाउ सेलिंग फ्रॉम द लो 600, न्यू इंसेंटिव में $10,000 फ्री अपग्रेड, 5-piece appliance package, free walkout basement, और जिसकी value about $20,000 है, and much much more, एक special package for South Asian Unlimited Radio listeners, location है Highway 401 और Altoma Road, just south of Highway 407
1: जी।
2: बहुत ही जबरदस्त ये 2-story के towns हैं जिसमें 2-car parking इंक्लूडेड, लो 600 से, बहुत जबरदस्त इंसेंटिव्स है इसमें। हमें कॉन्टैक्ट कर लें जल्द से जल्द एंड वी विल शेयर ऑल डिटेल्स विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून।
1: थैंक यू राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 6478661086 राज जी का नंबर है, 6478661086। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: थैंक यू सर।
1: एंड छोले भटूरे .ca 4 लोकेशन से सर्व करते हैं, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन वॉन, 1 इन मिसागा, 5वीं लोकेशन ओपनिंग वेरी सून, टेक आउट डाइन इन ऑप्शन अवेलेबल एट ऑल लोकेशंस। शॉर्ट ब्रेक, आई विल बी बैक।
3: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन जीटीए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहड़ा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288 8557 Anaj Mart.
3: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत से परिवारों को साइड इनकम प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, श्योरिटी विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मिनिमम $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। फ्री सेमिनार्स अटेंड करें हर सैटरडे आफ्टरनून। मेक श्योर प्लीज मेक योर अपॉइंटमेंट, वॉक इन ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है सेमिनार, एंड कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040।
4: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, trusted care, consistent service or complete automotive support from first drive to lifetime care. Vane's Auto Group is always there.
5: Vane's Auto Group, Vane's Auto Group, Canada.
4: Visit vanesautogroup.com.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है बिल्कुल अनलिमिटेड ऑन CMR 101.3 FM। और जैसे मैंने मेंशन किया था, वी हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट जो हमें ज्वाइन कर रही हैं, और ये एक $1 billion का कैंपेन है टू हेल्प ट्रिलियन हेल्थ पार्टनर्स फाउंडेशन बिल्ड कैनेडाज लार्जेस्ट हॉस्पिटल एंड ओंटारियोज फर्स्ट हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। और कैंपेन जो है इंक्लूड करता है लिमिटेड एडिशन क्लोथिंग लाइन डिजाइन बाय 5 लोकल आर्टिस्ट्स, और इसके अलावा जो है एम्बेसडर्स इंक्लूड मिस सागा जोन सुपर फैन नैब भाटिया साहब एंड बियांका एंड्रूस्को, जो कि हम जानते हैं कौन है, शी इज ऑल्सो फ्रॉम मिस सागा। एंड इसी वजह से हमारे साथ कैंपेन को लीड कर रही हैं फाउंडेशन प्रेजिडेंट एंड CEO कैरोलाइन राइसबोरो, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कैरोलाइन, वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
6: Thank you so much for having me.
3: Thank you so much for taking the time out. And we would like to get your message across to all the listeners of South Asian Unlimited Radio. I'm going to say, for more information, friends, trilliumgiving.ca par jaakar aap jankari le sakte hain. Caroline, tell us about the Built For Us campaign and Trillium Health Partners Foundation's $1 billion fundraising goal.
6: Yes, so as you mentioned, we are looking to raise $1 billion.

0: encourage everyone to step up, show your generosity. The hospital and Trillium Health Partners is there for you when you need it most. We need your help now. Please step up, donate, go to trilliumgiving.ca and help ensure that we have world-class healthcare close to home.
1: Right. And right after this segment, I am going to try to connect Caroline with TVI and Tamil CMR FM so that the Tamil community also can contribute in this entire project and make it successful. Final message, anything you want to say other than trilliumgiving.ca is where for more information people should log on to?
0: Yes, you can make a donation as small or as large as it's feasible for you. Nothing is too small. And we just want to say thank you so much for everyone who's already stepped up. And let's get to $1 billion.
1: Absolutely. Best wishes, Caroline. We'll talk to you very soon.
0: Thank you very much.
1: Thank you very much. And $1 billion ka campaign hai, dosto, to help Trillium Health Partners Foundation build Canada's largest hospital, Ontario ka pehla hospital dedicated to women and children. Iska aap hissa ban sakte hain. Thodi si aapki contribution jo hai, thoda thoda karke hum $1 billion tak campaign ko bhi pura kar denge. Trilliumgiving.ca. Trilliumgiving.ca. South Asian Unlimited Radio aur CMR 101.3 FM ki koshish hoti hai ki इस तरह के सोशल जो चीज़ें हैं, जो ओवरऑल कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें हैं, उन्हें हम आप तक पहुंचाएं. एंड इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही मैं इसमें कोई फ़ायदा देखता हूं कभी भी. एंड आई रिमेंबर बैक इन द डेज जब रॉजर्स टीवी पर मैं होता था, तो वहां पर जो हमारा शो था साउथ एशियन फोकस, उस पर भी हमारा फोकस यही होता था कि किस तरह से हम कम्युनिटी को इस तरह के प्रोजेक्ट्स, फाउंडेशंस, संस्थाओं के साथ जोड़े एंड वी ऑल ग्रो टुगेदर. We'll take a very short break. नाना पाटेकर साहब की जो song request उनके फिल्मों से आ रही है, वो एक एक करके 2 बजे तक हम play करते रहेंगे आपके लिए. ना पाने की खुशी है कुछ, ना खोने का ही कुछ गम है. ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है. ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है. अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में. मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है. मगर पूरी से कुछ कम है.
2: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल. मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है. सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक, बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं. लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है. आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है. बदलाव के लिए आगे आइए. वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10. ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल.
3: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcbc.info और 384 Finley Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info.
4: 2026 ब्रैम्पटन म्यूनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा. अगर आप वोट नहीं कर सकते ऑन वोटिंग डे, तो आप वोट अर्ली भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग. एडवांस वोटिंग की तारीख होगी अक्टूबर 9th, 10th, 11th, 16th एंड 17th. वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम 12 नून टू 8 PM और वीकेंड्स पर 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक. यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैम्पटन. अपना वोटर नोटिस जरूर लाएं इफ यू रिसीव वन एंड आइडेंटिफिकेशन शोइंग योर नेम एंड एड्रेस टू वोट. अगर आपको वोटर नोटिस नहीं मिला, ब्रिंग योर आईडी विद यू टू वोट. And you can update or add your voter information in person. Voting locations ke liye, voter information ke liye, and a list of candidates ke liye, aaj hi visit karein brampton.ca/bramptonvotes.
5: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है?
3: क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. रिमेंबर, यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट.
4: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
3: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: पट चल हट बाजू हट नट खट हट जा मैंने देखा जब तेरी नजरों के तू।
1: नाना पाटेकर साहब को याद कर रहे हैं, कल रात देहांत हुआ, उनका निधन हुआ एट 75 कार्डियक अरेस्ट, और बड़े दुख की बात है। और ये गीत है उन्हीं की आवाज़ में, एक्चुअली गीत है विनोद राठौड़ और उनकी आवाज़ में है, फ्रॉम द मूवी क्रांतिवीर, एंड इट्स ब्रॉट यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन जॉर्जटाउन, दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, ज़बरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, इन GTA बियॉन्ड GTA। एंड गुरविंदर बामरा जी ऑल स्टेट इंश्योरेंस के लिए काम करती हैं, ऑटो और होम इंश्योरेंस में स्पेशलाइज करती हैं, और अगर ऑटो इंश्योरेंस में अगर मगर वाली बात ही नहीं, आपको बेस्ट रेट्स चाहिए और चाहिए ही चाहिए, तो एक बार इस नंबर पे गुरविंदर जी से संपर्क कर लीजिए, फ्री कोट मिल जाएगा 10 मिनट में, 6473033207। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग फ्री सेमिनार होता है हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30, आप प्लीज अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिए, प्लीज डोंट वॉक इन। नंबर है 9052061008। और ये मैसेज विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग की तरफ से, मोहम्मद साहब का मैसेज, ध्यान से सुनिए।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। और याद रखें दोस्तों, द फ्री सेमिनार आपके लिए स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया है संडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30। आपने कॉल करके अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लेनी है। प्लीज डोंट वॉक इन। 9052061008, इस सेगमेंट को ध्यान से सुने। बाकी मोहम्मद साहब बताएंगे कि विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। मोहम्मद साहब आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच सनी जी, हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून जी। जी सनी जी, पिछले 18 साल से एक ही काम है हमारा कि अपनी कम्युनिटी को लिफ्ट अप करें एक ऐसे स्किल के लिए, कि एक ऐसे स्किल की तरफ जो इस वक्त दुनिया में मोस्ट अफेक्टिव, फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू मेक मनी थ्रू इंटरनेट है। देखें, हर बंदा चाहता है कि वो इजी वे से पैसा कमाए, हर बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ चेंज हो। देखें, अब दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, हर चीज अब ऑनलाइन हो रही है। अब जितने भी दुनिया के आप डिपार्टमेंट्स उठा लें तो हर जगह पे AI काम कर रहे हैं। आप जरा ये सोचिए और समझें कि अगर आप सख्त तरीके से, हार्ड वे से पैसा नहीं कमा सकते तो स्मार्ट वे सीखे ना जी, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए जिसमें आपको कल की फिक्र ना हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि अपने टैलेंट को अपनी कमाई के लिए यूज करें और जो आपका टैलेंट है उसकी वर्थ का आपको आउटकम मिलना चाहिए, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। और हर बंदा चाहता है कि बहुत कम वक्त में उसको ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। देखिए, हम लोगों ने ना एज अ कम्युनिटी बल्कि ये सीखा हुआ है कि जो तीन चीजें हैं ना, वो हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। और वो आज सब एग्री करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन कहाँ के क्या है कि जहां पे लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो उसमें से निकलना नहीं चाहते, एंड दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफ। और 80% लोग, याद रखिएगा, लिटरली वो रीजन ढूंढते हैं कि अपनी लाइफ ना चेंज करें। हम इवन के वहां पे चेंज सर्टन हो, इवन वो पॉजिटिव हो और उनके लिए बेनिफिशियल भी हो ना, तो सनी जी वो चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसमें बड़े खुश होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: सेकेंड जो सबसे बड़ा उनका दुश्मन है वो है लर्न हेल्पलेसनेस, जो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग चेंज नहीं करना चाहते इसलिए कि हमने सीखा है कि हम कर ही नहीं सकते। ये इतनी बड़ी साइकोलॉजी है सनी जी कि ये लोगों को बहुत कम को समझ आती है। और लास्ट आता है कि जो लास्ट रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आती है कि हम हमेशा एक रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे पास ये रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा तो नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। देखें, एक हर दुनिया में जो काम है ना वो हार्ड वे से आता है और अपने फेलियर से बंदा सीखता है। और यहाँ पे जो लोगों को, जो मोस्टली लोगों को चीज स्टॉप करती है ना, वो है व्हाट आई वांट, व्हाट दे वांट। और याद रखिएगा, जिंदगी में देयर इज नो सच थिंग इज व्हाट आई वांट, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू आर। देखें, आपने अपनी वर्थ का लेना है। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो ना तो आपको फैक्ट्री वर्कर जैसा ही मिलेगा। आप वहां से निकलोगे, ऊपर जाओगे, सुपरवाइजर करते करते आप ऊपर जाते हो, आप जो हो उसका मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आके एक दफा हमारा सेमिनार अटेंड कर लें और आप बिलीव करें, आप सोचेंगे कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं ना, तो बड़ी दफा कहते हैं जी हमने बहुत जी सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, लेकिन हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही। प्रॉब्लम बड़ा सोचने की नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर एक्शन नहीं लेते।
1: Exactly.
2: और सेकंड चीज क्या है कि सब लोग सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, उसी पे खुश हो जाते हैं। आज हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि घर पे बैठ के आप दुनिया, बल्कि घर आपका दुनिया में कहीं पे हो, आपको किसी का वो यानी डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने कंप्यूटर के सामने 90 मिनट बैठना है एंड यू आर मेकिंग 1.5 आवर जो पैसा बना रहे हो, जो लोग वीक्स में बल्कि महीने में बनाते हैं। देखें, स्विमिंग सीखना चाहते हैं ना, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जब तक आप पानी में नहीं उतरते ना, उस वक्त आप नहीं सीख सकते। तो आए आके हमारा सेमिनार अटेंड करें, माइंड ब्लोइंग। अभी लास्ट हमारा प्रेजेंटेशन हुई, अब लोग बायर बैठे हुए, यानी हमारा पूरा हॉल फुल था, वो बायर बैठे हुए, और जब फिनिश हुआ तो कहते हैं यार हमने अपनी जिंदगी कितने साल वेस्ट कर दिए। तो अभी मैं सबसे कहूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कॉल करके अभी अपनी सीट बुक कर लें। यू विल गेट कि आपने जिंदगी में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हमारा फोन नंबर है 905-206-1008, 905-206-1008, या आप जाए winlifetime.com पे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
1: एक्सलेंट दोस्तों, मोहम्मद साहब ने बड़े ब्रीफ तरीके से समझाया है व्हाट एंड हाउ, बाकी पहला कदम आपने उठाना है। और ये इन इस जिस अनसर्टेन टाइम से हम गुजर रहे हैं, देर इज ऑलवेज वो एक ही बात होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो हम आमदनी को, इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानने का आपको मौका मिलेगा। फ्री सेमिनार आपके लिए डिजाइन किया गया है, हर एक के लिए, हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30। प्लीज प्लीज कॉल एंड रिजर्व योर सीट, टेक योर फ्रेंड्स अलोंग, टेक योर स्पाउस अलोंग, और जितने आपके क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पर मोहम्मद साहब और उनकी टीम। 905-206-1008, 905-206-1008। मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया,
2: अप्रिशिएट,
1: थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 905-206-1008। 2026 ब्रैम्पटन म्युनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा। अगर आप वोट नहीं कर सकते ऑन वोटिंग डे, तो आप वोट अर्ली भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग। एडवांस वोटिंग की तारीख होगी अक्टूबर 9th, 10th, 11th, 16th and 17th। वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम 12 noon to 8 PM और वीकेंड्स पर 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैम्पटन। अपना वोटर नोटिस जरूर लाएं इफ यू रिसीव and identification showing your name and address to vote. Agar aapko voter notice nahi mila, bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. Voting locations ke liye, voter information ke liye and a list of candidates ke liye, aaj hi visit kare brampton.ca/brampton votes. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, इट्स सनी बट कुछ थोड़ा बहुत क्लाउडी भी है, एंड कुछ इसी तरह से आज वेदर रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर्स इन द इवनिंग, लेट इन द इवनिंग एट नाइट आर अबाउट 7 degrees, मेनली सनी बट विंडी विद गस्ट्स ऑफ अप टू 50 km/h, चांस ऑफ पॉप अप शावर्स लेटर दिस आफ्टरनून, ऐसा वेदर है। And Biscuit, the bunny stolen from the Markham Fair on Saturday, has been safely returned to his family. And Thornhill mein ek shakhs injured hua in shooting at Commercial Plaza near Young Street and Baythorn Drive. And bahut jald hum Home Life Signature Realty ki Sukhi ji se bhi baatcheet karenge. Brampton TV and Appliances Sultan ji aage chalkar hamare saath honge. Aapko amazing deals dilwate hain is festive season ki, kyunki Sunday se Navratri shuru ho rahi hai, Monday ko Thanksgiving long weekend hai, to isme TV appliance laundry ki best deals aapko mil jaye, to ye to zaruri baat hai, milni bhi chahiye. Anarkali disco chali, याद कर रहे हैं हम अपने नाना पाटेकर साहब को ममता शर्मा सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। वेलकम वॉज द फिल्म, इन्जॉय द सॉन्ग, जितनी आपकी रिक्वेस्ट आ रही हैं नाना पाटेकर साहब को लेकर, वो 2 बजे तक हम प्ले करते रहेंगे।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अभी 10 लई परोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नू अपना कीमती वोट पाओ
4: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दे लई जनता दा साथ देन के उनाच अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना लोकल डेवलपमेंट नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी फुल पुलिस स्टेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है
3: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026 एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत
5: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਟਗੇਜ ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ
6: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ
5: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
6: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ
5: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ
6: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ
5: 647-739-8710 License number M200-34504
7: Hi, I'm Realtor Sikhi. Jay Tusi Kar Bechan, Jakridan Bare Soch Rayo, Ta Ekvar Menu Phone Zrur Karo. Meto Hanu Professional Advice Deke, Tuhada Kar List Karangi, Surf $1,000 Vich. Jiha, Bilkul Teek Sunya, only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
8: वेलकम बैक फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी से सुखी कौर जी हमारे साथ हैं 6474087066 सुखी जी का नंबर है 647-408-7066 सुखी जी से क्विकली अपडेट लेते हैं रियल एस्टेट की एज वेल एज सुखी जी की जो अमेजिंग लिस्टिंग्स हैं वो आप तक जरूर पहुंचाते हैं और ये मैं जरूर बता दूं कि सुखी जी के पास इंटायर टीम है अगर आप सुखी जी को अपना रियल्टर चुन लेते हैं तो याद रखिए मॉर्गेज से लेकर इंस्पेक्शन अप्रेजल और लॉयर सारे का सारा काम जो है सुखी जी के ऑफिस की तरफ से होगा सो यू डोंट हैव टू रियली वरी सुखी जी स्वागत है आपका
9: थैंक यू सो मच सनी जी सबसे पहले तो आपको एंड सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी थर्सडे फ्राइडे जूनियर जी
8: जी आपको भी प्लीज गो अहेड
9: जी सनी जी बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो कुछ लिस्टिंग शेयर करती हूँ ब्रैम्पटन में आप घर लेना चाहते हैं डिटैच घर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है चाहे आप फर्स्ट टाइम बायर हैं चाहे आप वैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इसकी आपको बेसमेंट फिनिश्ड मिलेगी दो बेडरूम की फिनिश्ड बेसमेंट है चार बेडरूम का ये डिटैच घर है डबल कार गैराज है टोटल आपको छह गाड़ियों की पार्किंग मिल जाएगी अगेन अगर तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अराउंड टोटल आपको 5,000 से 5,500 का रेंट मिल जाएगा जिस जैसे कि आप मैंने कहा कि आपकी मॉर्गेज विल बी टेकन केयर ऑफ रेंट के पैसे से आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा इफ एनीथिंग इल बी कैश पॉजिटिव फ्लो होगा आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं 647-408-7066 इज द नंबर 647-408-7066 एंड एज ऑलवेज बता दूं आपको मॉर्गेज के लिए हेल्प चाहिए अगर आपको ये नहीं पता कि आप इस प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सकते हैं नहीं मंथली पेमेंट कितनी होगी आप क्वालिफाई करते हैं नहीं हमारे पास पूरी की पूरी टीम है जो कि आपको पहले से प्री क्वालिफाई करेंगे फिर घर दिखाने जाएंगे फिर उसके बाद ही डिपॉजिट डालेंगे ताकि एंड में आपको किसी भी चीज की चिंता ना हो
8: जी
9: अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के नजदीक हो दिस इज स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट मेरे पास बहुत ही अच्छा टाउन हाउस अवेलेबल है जो कि वारलू की यूनिवर्सिटी के नजदीक है आपको इन 500 की रेंज में ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी तीन बेडरूम का ये टाउन हाउस है
10: चाहे तो आप किसी फैमिली जिनके पास बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनको रेंट करना चाहते हैं, या आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को रेंट करना चाहते हैं, इट डजंट मैटर, यू विल हैव 100% कैश पॉजिटिव. पॉजिटिव फ्लो चाहिए आपको मॉर्गेज पे करने के बाद अपनी पॉकेट में पैसे चाहिए तो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर यू. डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. कॉल मी राइट नाउ एट 647-408-7066.
8: बिल्कुल दोस्तों, कोई भी रियल एस्टेट रिलेटेड जब आपके दिमाग में कोई प्रॉपर्टी आती है या जो प्रॉपर्टी शेयर की हैं सुखी जी ने, या आप बायर हैं या सेलर हैं, डजेंट मैटर, सुखी जी से संपर्क करिए. सुखी जी का इतना लंबा एक्सपीरियंस है, अमेजिंग इनके पास लिस्टिंग्स होती हैं, और चाहे वो GTA में हो या फिर GTA से दूर हो, और साथ ही साथ आपके मॉर्गेज का प्री अप्रूवल सारा काम जो है करवा के देती हैं सुखी जी. 647-408-7066 सुखी जी का डायरेक्ट नंबर है. सुखी जी बहुत बहुत शुक्रिया.
10: ओके थैंक यू जी, हैव अ वंडरफुल वीकेंड.
8: यू टू. थैंक यू. 647-408-7066 सुखी जी का नंबर है जिस पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं. गुरविंदर बामरा ऑल स्टेट इंश्योरेंस के लिए काम करती हैं, एंड ऑटो होम इंश्योरेंस. ऑब्वियसली ऑटो में तो ऑलवेज यही होता है कि हर साल ऑटो इंश्योरेंस ऊपर चले जाती है. एक बार 10-15 मिनट आपके लगेंगे, इस नंबर पे गुरविंदर जी से संपर्क करें. शी विल गिव यू अ फ्री कोट एंड यू विल सेव मनी. दो गाड़ियां हैं, घर है, तो और भी ज्यादा पैसे की बचत है. तकरीबन $2,100-2,200 की सालाना बचत आप कर सकते हैं. 647-303-3207 647-303-3207 गुरविंदर बामरा. शॉर्ट ब्रेक, और एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है वो भी हम प्ले करेंगे. एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन से पॉल साइगल.
11: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से.
12: अच्छी याद है, याद है. अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से.
11: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो.
13: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुल्चे, पाव भाजी, अमृतसरी कुल्चे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे. choleBhature.ca. कॉल 9054582448.
14: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
15: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है. ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं. घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान. फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com. प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन.
16: क्रेडिट कार्ड, GST या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस GTA. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca.
17: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं. तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें. आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है. GTA's बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
18: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह. हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है. मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ. एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें. ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन
19: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
5: सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्ना पीवी राज, Brampton and Scarborough, 647-327-8111, 647-327-8111।
6: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
7: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288857 अनाज मार्ट।
5: सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्ना पीवी राज, Brampton and Scarborough, 647-327-8111, 647-327-8111।
8: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, और पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैम्पटन, 905-450-2828। टीवी, अप्लायंस, लॉन्ड्री के सुल्तान हमारे साथ है। सुल्तान जी, सुल्तानिक डील्स लेकर पहुंच चुके हैं। देर ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM to 7 PM। फेस्टिव सीजन है भाई, फेस्टिव सीजन में बेस्ट डील्स आप तक पहुंचाना मेरा काम है। सो सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर रुख करेंगे और फेस्टिव सीजन की अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग साल की डील्स आप तक पहुंचाते हैं। सुल्तान जी, स्वागत है आपका।
9: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
8: सुल्तान जी, सबसे पहले फेस्टिव सीजन के मद्देनजर और उसका फायदा लेते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स का भी फायदा हो जाए, टीवी सेक्शन में मोस्ट अमेजिंग डील्स प्लीज बताएं।
9: मोस्ट अमेजिंग डील सनी भाई, हमारे पास इस वक्त 55 इंच गूगल फीचर्स के साथ 2025-2026 का लेटेस्ट मॉडल है, और क्रोमकास्ट बिल्ट इन है 55 इंच, ओनली 399 में
8: जी,
9: सिर्फ 399 का 55 इंच टीवी मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से। 65 इंच की अगर बात करें तो 499 में 65 इंच गूगल फीचर्स के साथ क्रोमकास्ट बिल्ट इन लेटेस्ट मॉडल है स्मार्ट टीवी, जो कि आपको 499 में 65 इंच मिलेगा। जहाँ ये अमेजिंग डील्स अवेलेबल हैं जी, वहाँ ये भी बता दूं कि बिग स्क्रीन टीवीज में हमारे पास जो सोनी ने लेटेस्ट लॉन्च किया है, सोनी का ब्रेविया मॉडल है ये, और 100 इंच है ये, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग प्राइस के साथ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस अपने कस्टमर को 2999 में 100 इंच सोनी गूगल फीचर्स के साथ 120 हर्ट्ज विद गेमिंग मोड, क्योंकि सोनी प्लेस्टेशन 5 बनाया है उन्होंने जो प्रो, अब उसके साथ रेजोल्यूशन इसकी मैच की गई है, बेस्ट डील है, बिगेस्ट स्क्रीन है, 100 इंच सोनी ब्रेविया 3 आपको मिलेगा ओनली 2999 का, $4500 इसकी प्राइस है, $1500 आप ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे सेव करेंगे। इसके साथ साथ 85 इंच सोनी ब्रेविया मॉडल लेना चाहें तो हमारे पास 85 इंच सोनी ब्रेविया मॉडल 1599 में है, लेकिन साथ के साथ सैमसंग ने जो लॉन्च किया है 85 इंच मिनी एलईडी के साथ, तो मिनी एलईडी 2026 का लेटेस्ट मॉडल सैमसंग का सिर्फ 1199 में 85 इंच मिलेगा, वेरी स्पेशल प्राइस है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, इंसेंटिव वॉक इन कस्टमर को मिल रहे हैं, पेमेंट 6 महीने में करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, इवन यहां तक के 75 इंच 799 में सैमसंग मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। तो 32 इंच से लेके 100 इंच तक एनी साइज ऑफ टीवी आपको चाहिए, सोनी या सैमसंग, गारंटेड आप 600 से $800 तक की सेविंग कर सकते हैं। पहुंचना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है, BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट है जी, 905-450-2828 हमारा नंबर है, 905-450-2828 जी,
8: 905-450-2828। 200 फेस्टिव सीजन की डील टीवी सेक्शन में तो मैंने आप तक पहुंचा दी, अब जो दो नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस है अप्लायंस लॉन्ड्री, देखते हैं कि जब भी सुल्तान जी आते हैं ऑलवेज प्रॉमिस करते हैं और डिलीवर भी करते हैं द बेस्ट डील्स। सुल्तान जी, अप्लायंस लॉन्ड्री में फेस्टिव सीजन की क्या जबरदस्त डील्स चल रही हैं?
9: सनी भाई, जैसे मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में आजकल बता रहा हूं कि 30% प्राइस इंक्रीज हुई है, क्योंकि 25% टैरिफ लगा है जी स्टेनलेस स्टील अप्लायंस स्टील पे और होम अप्लायंसेस पे, 5% का उन्होंने फ्रेट इंक्रीज हुआ है, तो 30% का डिफरेंस इस वक्त एज ऑफ टुडे अगर कोई कस्टमर बाय करते हैं तो उन्हें मिलता है, लेकिन ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस स्टिल सेविंग करवा रहा है जी अपने कस्टमर की। फॉर एग्जांपल फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर है जो कि स्टीम फीचर के साथ है, वॉशर भी स्टीम ड्रायर भी स्टीम है, प्लैटिनम सीरीज प्लैटिनम कलर में आपको ये मिलेगा, अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी का वॉशर एंड ड्रायर, $2000 वाला, टैरिफ लगी प्राइस इसकी $2600 है, लेकिन 1799 में हमारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, फ्री डिलीवर होगा और 1799 भी 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर है जो कि $2200 वाला, सिर्फ 1499 में लेके $700 स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर पे सेव किए जा सकते हैं। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर है $1700 वाला, 1099 का पेयर लेके $600 टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव किए जा सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी होगी और 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रिज स्टोव डिशवॉशर बंडल पैकेज लेते हैं, $5000 वाला 2999 में मिलेगा, जबकि इसकी भी टैरिफ लगी प्राइस जो है 3899 है। अगर आप बिल्ट इन किचन लेते हैं, बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वाल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवॉशर और बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन 40% डिस्काउंट पे $12000 वाला सिर्फ $6900 में मिलेगा, 40% ह्यूज डिस्काउंट है बिल्ट इन किचन में जो कि आपको ऑफर किया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, और सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक 7 डेज अ वीक हमारा स्टोर खुलता है जी, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है, BramptonAppliances.com, सिंगल सिंगल पीस पे भी आप $600-800 सेव करेंगे। 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है फुल साइज का, बॉटम फ्रीजर डबल डोर ऑन टॉप $2200 वाला $1499 में है, $700 आप सेव करेंगे। टॉल टब की डिशवाशर है स्टेनलेस स्टील की $900 वाली $499 में लेके $400 सेव करेंगे। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर है जी जो $1000 वाली सिर्फ $599 में लेके $400 आप सेव करेंगे। विजिट करें सेलेक्ट करें, फ्री होम डिलीवरी होगी, 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828 905-450-2828 हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को, ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको बिग स्क्रीन टीवीज पे या फिर लॉन्ड्री सेक्शन में वॉशर एंड ड्रायर, या अगर आप किचन अप्लायंसेस में फ्रिज स्टोव डिशवाशर देख रहे हैं तो 905-450-2828 905-450-2828
8: जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
9: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
8: जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828। और दोस्तों अगला गीत जो है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, खामोशी फिल्म का गीत है, फिल्म आया ऑन मनीषा कोरेला, और इस फिल्म में सीमा बिस्वास और नाना पटेकर भी बहुत अमेजिंग रोल्स में आए थे नजर। हमारे लिसनर की रिक्वेस्ट है, वील प्ले दैट, ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस एज वेल एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन से पॉल सैगल, जो कि आप एक स्पेशल मैसेज दे रहे हैं, फेस्टिवल स्पेशल पैकेज फॉर साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो लिसनर्स, अपने घर बिजनेस को प्रोटेक्ट करें, गेट फ्री स्मार्ट सिक्योरिटी पैकेज जिसकी कीमत है $2300 इन इक्विपमेंट्स, स्पेशल प्रमोशन है, कोई एक्टिवेशन कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं है, $100 का प्लान अब आपको $60 में मिलेगा, एंड आर्म डिसआर्म आप अपने सेलफोन के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से सकते हैं, गेट 4 color view cameras फ्री ऑल्सो, गेट फर्स्ट 3 months फ्री, इंश्योरेंस डिस्काउंट सर्टिफिकेट, कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ऑल्सो ऑफरिंग कलर व्यू कैमरा पैकेजेस जिनकी जो स्टार्ट होते हैं $700 से, एंड हाई स्पीड इंटरनेट VOIP lines by सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सोल्यूशन सर्विंग द कम्युनिटीज इन GTA since 2009 with over 20,000 satisfied customers, विजिट paulsecurity.com या 416-940-0624-416-940-0624. Enjoy the beautiful song, also brought to you by Gurvinder Bamra. Best auto insurance, home insurance rates ke liye aaj hi call karein and start saving money. Free quote ke liye Gurvinder Bamra, auto and home insurance, 647-303-3207, 647-303-3207.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कर्ना, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन। एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days अ वीक, 905-457-3232। फॉर नेम ब्रांड सनग्लासेस, ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर्स सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, फॉर रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज दैट दे हैव इन द रेंज ऑफ 700,000 and 800,000 इन ब्रैम्पटन, इन GTA, सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, 647-887-2707 या 416-627-4737। एंड द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जो कि 30+ लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
1: सिटी हॉल विच ब्रेड ब्रेडफर्ड ने तुहाडा टीटीसी किराया वधाया अते वार वार सर्विस विच कटौती कीती। उदों भी जदों उन्होंने कहा सी कि वो अजिहा नहीं करनगे, वो अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उसे तरह जिवें उन्होंने सस्ते करा, किराया कंट्रोल, पुलिसिंग अते बाइक लेना दे मामले विच कीता। ब्रेडफर्ड कहंदे कुछ होर हन अते करदे कुछ होर, क्योंकि चोणा जित्तण लई वो कुछ भी कह सकते हन। वो इदां दे ही हन कि तुसी सचमुच उन्हां ते भरोसा कर सकदे हो। अपने घर दे किराए लई, अपने टीटीसी किराए लई, अपनी सुरक्षा लई 26 अक्टूबर नूं फैसला तुहाडा है। Authorized by the Olivia Chow campaign.
0: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779।
2: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 647-866-1086, 647-866-1086, राज जोशी, नाम ही काफी।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go

0: जोशी।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
2: जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

मुस्कुराइए दिल से, छूनिए साथ साथ, गुनगुनाइए जरा प्यार से, डालिए हाथों में हाथ, बस वॉल्यूम बढ़ाइए और लवी डवी अंदाज में हमसे जुड़ जाइए। हर मूड का म्यूजिक, नए पुराने सुरीले गाने, लवी डवी फिल्मी बातें, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के अफसाने, रेडियो टोरंटो कनाडा आरटीसी, हर दिल की धड़कन, हमारी आपकी बातों का रंग, ये है आपका अपना शो आमिर और शिवानी की आवाजों के संग। आमिर और शिवानी की आवाजों के संग।

मंडे से फ्राइडे दोपहर 2 से 3 बजे तक। तो माहौल बनाइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और लवी डवी हो जाइए। RTC रेडियो टोरंटो कनाडा 416-303-3639।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूं शिवानी आपके साथ, और मेरे साथ हैं आमिर। खूबसूरत सी इस दोपहर में आप सारे वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल लिसनर्स का स्वागत है। गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s एंड ट्रेंडिंग मेलोडीज के साथ रहेगा ये सफर आज भी आपके और हमारे साथ साथ। 416-303-3639, 416-303-3639।
1: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा, हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा सलाम अलैकुम, स्वीकार कीजिए मेरी मोहब्बत भरी नमस्कार, और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के ब्रैम्पटन स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मकदम है। Ladies and gentlemen, guys and dolls, this is Lovey Dovey Show. And together, we'll kiss the airwaves of Toronto this fine afternoon.

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आमिर कहते हैं कि बहुत एक प्यारा सा थॉट है, और आप इसमें कुछ जरूर ऐड कीजिए। ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, जिसको हम ग्रैटिट्यूड जिसको हम कहते हैं ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स एवरीथिंग वी अचीव इन लाइफ, वी गेट इन लाइफ, तोहफे में मिले, विरासत में मिले, या फिर हमें
1: मुफ्त में मिले
0: मुफ्त में मिले, दुश्मनों से भी मिले क्योंकि कुछ भी मिलेगा तो हमें या तो हमारी जीत होगी या हमारी हार होगी, या हमें हमें कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा,
1: तजुर्बा मिलेगा, लोगों की
0: वो
1: पहचान मिलेगी।
0: पहचान मिलेगी, है ना। तो मिलेगा ही हमें ना, हम एक बेनिफिशरी ही होंगे इन एवरी सेंस, राइट। तो कहते हैं कि व्हेन यू एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड, जिसको हम शायद हिंदी में शुक्राना, उर्दू में
1: शुक्राना, तशक्कुर,
0: वही चीज है ना, शुक्राना और
1: तशक्कुर भी कहते हैं ग्रेटिट्यूड को, यानी
0: तशक्कुर।
1: शुक्र अदा करना। जी
0: हमने कोशिश की है कि हम एक एवरीडे एक नया वर्ड सीखेंगे, उर्दू का
1: बिल्कुल,
0: और हिंदी का। आमिर ने एक उर्दू का सिखाया, थोड़ी देर के बाद मैं एक हिंदी का बोलूंगी
1: कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीख जाऊं, क्योंकि मैं एक नालायक स्टूडेंट
0: वेन यू एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड एंड मेक इट योर डिफॉल्ट सेटिंग, द
1: हूं।
0: रेस्ट ऑफ योर लाइफ फिट्स टुगेदर परफेक्टली,
1: अरे वाह।
0: है ना। इट कैन ट्रांसफॉर्म कॉमन डेज इंटू रिमार्केबल टाइम्स एंड चेंज ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज इंटू ब्लेसिंग्स।
1: वाह।
0: और एक फुलनेस ऑफ लाइफ अनलॉक करता है ग्रैटिट्यूड, जो प्रॉब्लम्स है उसको गिफ्ट्स में, फेलियर को सक्सेस में, मिस्टेक्स को इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में तब्दील करता है। जिंदगी में एक जिंदगी में एटीट्यूड, जो ग्रैटिट्यूड है उसको एटीट्यूड बना के जी जी
1: वाह
0: जीने की
1: वाह।
0: कोशिश कीजिए, फर्क आपको डेफिनेटली पता
1: यानी आप
0: चलेगा।
1: चाहती हैं कि शुक्र अदा करना आपका तर्ज जिंदगी बन जाए,
0: बिल्कुल
1: यानी लाइफ स्टाइल बन जाए।
0: बिल्कुल
1: आप सिर्फ इस बात पर शुक्र अदा ना करें कि आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, अगर ऊपर वाले की तरफ से कोई आजमाइश भी आई तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, या तब भी शुक्र कीजिए, तशक्कुर कीजिए, ग्रेटिट्यूड से काम लीजिए। अब
0: बहुत सही
1: इसकी मिसाल क्या है,
0: जी।
1: कोई आपका महबूब हो जिससे आप बे इंतहा मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, अगर उसकी तरफ से आपको कोई दुख मिले तो क्या आप शिकायत करेंगे?
0: बिल्कुल नहीं
1: बिल्कुल नहीं करेंगे।
0: नहीं
1: तो अगर वाकई आप ऊपर वाले से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत करने वाले की दी हुई आजमाइश पर भी शुक्र करना
0: बहुत
1: बनता
0: बहुत बड़ी बात बोली आप आमिर आपने, कहते ना हम आराम से जज कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि जब हमारे अपनी की कोई बात आए तो उसके लिए हमारे रूल्स का नियम अलग है,
1: है।
0: और ऊपर वाले को भी हम नहीं बख्शते जब हम शिकायत करने पे आ जाएं।
1: आपने मुझे लफ्ज सिखाया है नियम।
0: नियम
1: नियम का मतलब कायदा, कानून, रूल, उसूल, कानून, इज दैट
0: उसको
1: राइट?
0: नियम, हाँ जी
1: हाँ जी, चलिए
0: नियम
1: करीब करीब पहुंच गया मैं
0: जी और बड़े नियम से हम एक हस्ती को अपने शो पर लेते हैं,
1: हाँ
0: विवेक गुप्ता जी को।
1: अरे वाह।
0: जब थर्सडे आता है तो हमें लगता है कि हमारी जो फैमिली है वो हमारे पास आ गई, हमारे लव्ड वंस हमारे साथ रहने लग गए, क्योंकि ये सारी चीजें वो पॉसिबल करके देते हैं। अपने खुद भी वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं, प्रोफेशनल हैं, और उनकी जो इंजीनियरिंग टीम है वो
1: जी
0: बिल्कुल डे नाइट काम करती है इस डायरेक्शन में कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको जो भी कॉल करता है उसके सारी प्रॉब्लम्स जो है, घर की, लीगल बेसमेंट की, और कोई प्रॉब्लम है, कोई एडिशनल कुछ चीज़ें घर में बनवाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उस लिहाज से, और कुल मिलाकर आपको पूरी की पूरी लॉफुली कि कैसे आप सुकून के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं मज़े
1: जी
0: मज़े में। विवेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
2: हाँ, गुड आफ्टरनून शिवानी जी, गुड आफ्टरनून आमिर जी, एंड
1: थैंक यू वेरी
2: नमस्कार,
1: मच।
2: सत श्री अकाल, आदाब टू ऑल 101.3 लिसनर्स।
0: थैंक यू सो मच विवेक जी। और आमिर ने एक वर्ड सीखा नियम, है ना। आपको खुशी हुई इस बात पे? कुछ आप कहना चाहेंगे चार लफ्ज?
2: जी हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने आज कही है। हम लोग कनाडा में हैं और कनाडा एक ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जो रेगुलेशंस के ऊपर बहुत ध्यान रखती है, और आज इसी रेगुलेशंस और लॉज की वजह से ये कंट्री इतना सुंदर और बेहतरीन और सेफ
0: जी
2: आज के हालात में भी बना हुआ है।
0: जी
2: तो आई रियली लाइक यू दैट यू आर रियली एजुकेटिंग योर लिसनर्स फॉर फॉलोइंग द रेगुलेशंस, हेल्पिंग देम फाइंडिंग आउट हाउ टू फॉलो द रेगुलेशंस। ये बहुत ही अच्छी बात आप कर रहे हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस इंफॉर्मेशन।
0: इट्स अ प्लेजर विवेक जी, बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहती है कि जब आप जैसे गेस्ट हमारे शो में आते हैं, मेहमान हमारे शो में आते हैं, क्योंकि आपका जो टॉपिक है ना, आपका जो जो
1: जी
0: बिजनेस है वो ऐसा है कि हर कोई इंसान किसी ना किसी फॉर्म, शेप एंड फॉर्म में इससे जुड़ा ही हुआ है।
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: सही,
0: आप उस दिन आमिर डिस्कस करते कि घर में अगर लीकेज हो जाए, पानी भर जाए बेसमेंट में, बैठे बिठाए प्रॉब्लम आ जाए, तो एक दूसरे से पूछने से अच्छा है कि मेरे घर में हुआ था तो मैंने ऐसा कर दिया, उससे बात खराब हो सकती है। एक प्रोफेशनल को कॉल कर लीजिए, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। यही चीज होती है कि हमें कुछ चीजें पता होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम उसमें केयरलेसनेस कर जाते हैं, स्पेशली घर जैसी चीज में जिसमें
1: जी
0: हम और हमारे अपने रहते हैं।
1: ठीक है।
0: तो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम मल्टी यूनिट कन्वर्जन की बात करें, और इसके साथ आप ये भी जोड़ना चाहें कि एक्सपेंशन की भी बात करें, तो कैसे आप हमारे लिस्टर्स की मदद करते हैं?
2: जी हाँ, जरूर, मैं आपके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सभी लिसनर्स को देना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है, जैसे घर में आपके लीकेज हो जाता है या फायर हो जाती है या स्मोक हैजर्ड हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो फायर डिपार्टमेंट और बिल्डिंग कोड उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ के रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है जो फायर के लिए और वाटर लीक्स के लिए हैं। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहे, घबराए नहीं, आप हमें कॉल करें, ये बिल्कुल फ्री कॉल है और हम आपको उसमें गाइड करेंगे कि आप कैसे उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही कम टाइम में आप उसको कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी सेफ्टी और हेल्थ के लिए आप कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, इट इज फुल्ली फ्री।
1: सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं विवेक जी के, यहां ब्रैम्पटन में भी देखने को मिला और मिसिसागा और इसके अलावा भी बहुत से इलाकों में, के लापरवाही, बेपरवाही, केयरलेसनेस की वजह से घरों को आग लग जाती है और एक नहीं पांच पांच छह छह घर उसकी जद में आ जाते हैं, हलाकतें भी हो जाती हैं, लोग जख्मी भी हो जाते हैं, ठीक से इवैक्यूएशन नहीं हो पाती। जिम्मेदार कौन है, वजह क्या रहती है और कैसे आप इसका हल देखते हैं?
2: जी हाँ, देखिए, जो ओनर होता है वो जिम्मेदार होता है, जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है वो जिम्मेदार होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ओनर की एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि जब वो प्रॉपर्टी एक ओन करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को समझें। हम लोग जिन मुल्कों से आए हैं वहाँ पे लकड़ी के घर नहीं बनते, यहाँ पे सारे घर लकड़ी के बनते हैं और उनकी फायर रेटिंग बहुत कम होती है और उनमें स्मोक हैजर्ड बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से कभी भी कोई एक छोटा सा हादसा होता है तो खामाखा बहुत सारे उसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को भी नुकसान हो जाता है और एक नुकसान इस कदर हो जाता है कि आदमी अपनी लाइफ में शायद उस नुकसान को कभी पूरा भर नहीं पाता। तो ये बहुत जरूरी है कि आप यहाँ के रेगुलेशंस को और बिल्डिंग कोड को समझें। अगर आप एक प्रॉपर्टी ओनर हैं तो आप इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें।
1: अगली बात मैं ये जानना चाहता हूं, कुछ लोग करना चाहते हैं लीगलाइज अपनी बेसमेंट्स को, लेकिन माली तौर पर जरा थोड़े इनस्टेबल या गैर मुस्तहकम होते हैं, उन्हें कुछ अरेंजमेंट्स की जरूरत होती है, तो कोई आप अरेंजमेंट करा देते हैं सेपरेट यूनिट बनवाने के लिए या बेसमेंट लीगलाइज कराने के लिए?
2: जी हाँ, ऑफकोर्स, हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो आपको फाइनेंसिस में हेल्प करती हैं और बहुत सारी जगह पे तो मिनिस्ट्री भी हेल्प करती है। अभी यहाँ पे हमारे जीटीए एरिया में हाउसिंग क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें हमने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे मिनिस्ट्री को और सिटीज को सबमिट करके बताया है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग हाई राइज बिल्डिंग्स, व्हाई डोंट यू सपोर्ट होम ओनर्स टू मेक लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट्स, इट कैन एक्चुअली रिजॉल्व द करंट हाउसिंग क्राइसिस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के कंपैरेटिवली ट्रैफिक की समस्या भी नहीं होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनने से होती हैं वो भी नहीं होंगी। कमिंग बैक टू द लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट, इट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ मेकिंग एन इनकम एंड हेल्पिंग द होल सिटी इन रिजॉल्विंग ए हाउसिंग क्राइसिस। अभी हमारे पास इमिग्रेशन की कुछ कमी चल रही है इस साल, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पे कनेडियन गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और बहुत सारे इमिग्रेंट्स फिर से यहाँ आने वाले हैं। तो
1: आने वाले, सही कह रहे
2: हैं। पहले ही होम ओनर तैयार हो जाए और अपने बेसमेंट्स को लीगल तौर पे एक बेसमेंट अपार्टमेंट, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट में उसको कन्वर्ट कर लें, ताकि जो है वो अब उनको टीनेंस भी आराम से मिलेगा और एक अच्छी इनकम उनको मिलेगी और उनके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी और फाइनेंस तीनों में फायदा होगा।
1: बिल्कुल सही। मैं अपने सुनने वालों से कहना चाहता हूं, अगर आप कोई बेसमेंट लीगलाइज कराना चाहते हैं, आपको सेपरेट यूनिट बनवाना है, मैं जाती तौर पर ऐसी बहुत सी फैमिलीज को जानता हूं जिन्होंने सेपरेट यूनिट बनवाया और वो मोर्टगेज का एक रुपया भी अपनी जेब से नहीं दे रहे। इधर सेपरेट यूनिट से किराया आता है, उधर बेसमेंट से किराया आता है, दोनों इकट्ठा करते हैं, मोर्टगेज पे करते हैं, जिंदगी सुकून में आ गई है उनकी। आप भी विवेक जी से बात कीजिए और सेपरेट यूनिट लगवा लीजिए, बेसमेंट लीगलाइज करवा लीजिए, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और जिंदगी को आसान करने के लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी कर देंगे, और उसके लिए मैं आपको इनका नंबर देता हूं, ये नंबर मिलाना है 647-973-1733। नंबर दोबारा बता रहा हूं आपको, 647-973-1733। 647-973-1733। ये हैं विवेक जी, जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपके टाइम के लिए। थैंक यू।
0: थैंक यू विवेक जी।
2: थैंक यू
0: जी। तो अगला गाना जो है बहुत प्यारा सा, बहुत रोमांटिक सा,
1: मेरे नाम
0: ये
1: आई नाम भी तो करना होता है ना, गाना ऐसे ही मतलब गाना चला दिया आपने तो वो बुझाया ही हो गया एक तरह से, तो किसी के नाम ही कर दें। ये तो ऐसे ही है कि आपने कहीं पैसा खर्च किया और ऐसे ही खर्च कर दिया बगैर किसी मकसद के, तो इसीलिए मुझे लगता है गाना किसी नहीं, आप मेरे नाम नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, किसी के नाम तो ये होना चाहिए।
0: तो चलिए चलो एक गाना बजाते हैं, किसी के नाम करते हैं
1: किसी नामालूम के नाम करते हैं।
0: अब इसमें जिक्र किसका हो कि उसमें बात किसकी हो। चलो ये गाना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। जिंदगी में यहाँ पे ना कनाडा में बहार बनके तो टिम हॉर्टन्स की कॉफी आई है। कॉफी के बारे में कहा जाता है और ये अच्छी चीज है, हालांकि मैं चाय ज्यादा पीती हूँ, आप भी शायद कॉफी के निस्बत चाय ज्यादा पीती
1: हूँ। मैं सिर्फ चाय पिलाता हूँ, पीता नहीं।
0: अच्छा पीते नहीं, अच्छा ठीक है, मैं दोनों करती हूँ।
1: अच्छा तो पिलाती भी पीती भी।
0: हाँ बता आपका वाला
1: भी, ये अच्छा है, बैलेंस है काम।
0: हाँ तो आपका जॉब भी मैंने ले लिया।
1: मेरी पतीली चाय की हमेशा चूल्हे पे ही रहती
0: है।
1: हाँ मतलब जो भी आना चाहे, चाय पीना चाहे, एवरीबडी वेलकम,
0: ओपन हाउस,
1: पूरी दुनिया में जो आना चाहे पिए और जितनी चाय चाहे पिए।
0: अच्छा तो इसमें सबसे ऊपर मेरा नाम लिख लीजिए, अब तक लिखा क्यों नहीं, हैरान हूँ मैं इस बात को लेकर। दरिया भी परेशान है और चाय की पतीली भी हैरान।
1: सुबह के 11 कप तो पी चुकी है।
0: तो कॉफी, अब यहाँ पे कॉफी लवर्स के लिए और
1: अच्छा
0: वो अमेजिंग है ये न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज है हेल्थ के हवाले से भी। जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसमें बहुत फायदा देती है कॉफी।
1: अच्छा।
0: जो कॉफी पीने वाले हैं दे हैव अ 60% लोअर रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। और ये इसका जो सोर्स है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो जनरल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में ये दर्ज किया गया है।
1: अरे वाह वाह वाह।
0: और डायबिटीज में भी मदद करती है। ईच एडिशनल कप ऑफ कॉफी कंज्यूम्ड इन अ डे मे कॉन्फर अ 7% रिडक्शन इन डायबिटीज रिस्क।
1: इसका तर्जुमा भी कर सकता कोई मेरे जैसा भी बंदा बीच में बैठा होता है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता जो, तो वो क्या करेगा, वो अंग्रेजी नहीं समझ सकता। मैं तो ये देखें, मैंने जब 5वीं जमात में पढ़ता था तो मेरी जान जाती थी अंग्रेजी से, तो यहाँ इस मुल्क में आ गया हूँ बुढ़ापे में और यहाँ अंग्रेजी सुननी पड़ती है, अंग्रेजी में थोड़ी बहुत जो टूटी फूटी अंग्रेजी है उसमें बात भी करनी पड़ती है, मैं क्या करूँ
0: जी। इस स्टेशन पे हम एक शो लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी जिसमें
1: अच्छा
0: आप जैसे स्टूडेंट्स जिनका
1: मतलब IQ लो है कहते हैं कोई बात नहीं
0: तो दो पॉइंट और बचे मैं बता दूं।
1: हाँ जी जरूर
0: जी। अल्जाइमर्स में भी कॉफी बहुत मदद करती है।
1: अच्छा।
0: 3 कप ऑफ कॉफी अगर आप पीते हैं
1: अच्छा।
0: पूरे 24 घंटे में तो डिले होता है डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजीज बाय 2 to 4 years।
1: तो ये अल्जाइमर क्या होता है?
0: अल्जाइमर डिमेंशिया।
1: अच्छा।
0: इसको ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसका अनफॉर्चुनेटली अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं
1: अरे,
0: है
1: अरे, अरे, अरे, अरे।
0: और ये डिटेरियोरेट होनी ही होनी है, लेकिन इसको बस अभी हम डिले कर सकते हैं।
1: डिमेंशिया क्या होता है?
0: डिमेंशिया ये होता है कि इंसान भूल जाता है,
1: हाँ भूलने की बीमारी कहे,
0: भूलने की
1: इसे
0: बीमारी।
1: उर्दू में कहते हैं नसियान,
0: अच्छा,
1: नसियान
0: नसियान,
1: भूल
0: उसमें
1: जाता।
0: इंसान अपनी फैमिली मेंबर्स को भी भूलने लगता है
1: अच्छा
0: और धीरे धीरे अपने बारे में, एज रिलेटेड होती है। और अक्सर सुनने में आया है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, कि जो लोग बहुत बिजी रहते हैं अपनी जिंदगी में, या जितने भी आप देखिए,
1: हाँ
0: एक आध हम मेरे ख्याल से एक US प्रेसिडेंट भी थे,
1: हाँ
0: रोनल्ड रीगन, इफ आई
1: जी
0: एम
1: जी
0: नॉट
1: जी जी
0: रॉन्ग,
1: जी
0: उनको भी ये बीमारी
1: आप
0: थी।
1: कौन है, आपका नाम क्या है?
0: हाँ वो ही ना। वो कौन थे जो 5वीं जमात में इंग्लिश में कमजोर थे और अब इतने अच्छे हो गए हैं
1: ठीक नहीं हो सके।
0: ना। और कॉफी डिप्रेशन में भी मदद करती है, 20% लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन होता है। लेकिन इन सब के साथ एक हिदायत भी आती है कि कोशिश कीजिए कि आप ब्लैक कॉफी पिए, ये नहीं कि बहुत सारे ट्रिपल ट्रिपल मिल्क डाल के आप
1: वाह
0: उसमें
1: वो नहीं,
0: ट्रिपल
1: अच्छा
0: ट्रिपल
1: अच्छा
0: शुगर डाल के पी
1: मिल्की
0: रहे
1: मिल्की
0: हैं
1: कॉफी नहीं
0: कि हमें
1: पीनी।
0: अल्जाइमर ही नहीं होगा
1: अच्छा
0: साहब,
1: अच्छा
0: ऐसा
1: अच्छा
0: नहीं
1: अच्छा
0: है। तो स्वीटनर्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल क्रीमर्स होते हैं, वो मेन कल्प्रिट होते हैं,
1: अच्छा
0: जो कॉफी की गुड पॉइंट्स को बैड पॉइंट्स में तब्दील करते हैं। मॉडरेट कंजम्पशन रखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स का जो है उसको बूस्ट करती है। सिनेमन हो सके तो कॉफी में डालिए,
1: अच्छा अच्छा
0: इस कॉफी को थोड़ा सा इस अंदाज से पीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसके फायदे मिल सके। अगला
1: वेरी
0: गाना
1: नाइस।
0: आपके लिए, 416-303-3639।
1: ये गाना कॉफी के नाम।

0: Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
1: रेडियो टोरंटो कनाडा वक्त हो चला है इस वक्त 2:26 और आमिर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं. और डॉक्टर कुलदीप इज देयर विद अस.
2: जी, डॉक्टर कुलदीप से बात करेंगे. और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट टाइम इनके क्लिनिक में गया तो कम से कम कुछ 6-7 लोग बैठे थे, इंतजार कर रहे थे. मुझे हैरत हुई ये बात देख के, ये मामला देख के, कि दे वर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली कम्युनिटी के लोग नहीं, बल्कि एक बड़ी तादाद में यूरोपियन लोग भी इनके पास आते हैं. दे बिलीव इन दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. होम्योपैथी, एज डॉक्टर कुलदीप सेज, वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ डूइंग द ट्रीटमेंट. इंडिया से, यहां कनाडा से सर्टिफाइड है. ऊपर वाले ने इनके हाथ में बड़ी शिफा दे रखी है. आपकी नब्ज देखेंगे, आपका पल्स देखेंगे और आपको बता देंगे कि बीमारी की नौइयत क्या हो सकती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलनेस. आजकल जो बीमारियां, परेशानी, लो और हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या लाइफस्टाइल चेंजेस है, सब पे मशवरा देते हैं. वन एंड ओनली कुलदीप जी, वेलकम करते हैं आपको.
3: हाँ जी, अमीर जी, आपको, सारे लिसनर को नमस्कार, आदाब एंड गुड आफ्टरनून.
2: थैंक यू वेरी मच. मुझे ये बताइएगा कुलदीप जी, आज किस मुद्दे पर, किस मामले पर, किस बात पर बयान हमें देने वाले हैं?
3: आज ये है अमीर जी, देखिए कई बार ना हमको बड़ा अफसोस होता है, खाली आज स्किन के बारे में हम बताएंगे आपको. और छोटी छोटी बीमारी लेके लोग परेशान रहते हैं. तो अभी एक हम केस को बताते हैं आपको. हमारे पास अभी पिछले वीक एक लड़की जो है वहाँ से बैरी से आई, ठीक है जी. वो मेरे पाकिस्तान पहले गए जो है, उनके उसके ओवरी में शिष्ट था, उसको निकलवाया, लेकिन तब भी प्रॉब्लम बहुत बिग प्रॉब्लम थी. वो हमारे पास आए तो उसके पेन हो रहा था यहाँ पर, तो हमने जो है, तो हमको तो पेन हो रहा था. मैंने उसको जो, मैंने कहा देखो अभी हम दवाई देते हैं, 5 मिनट बाद बात करते हैं. तो उसके पेन काफ़ी था, तो हमने जब उसके 5 मिनट बाद पूछा जो कहती पेन, कहती मैंने कहा कैसा है, कहती ठीक है, ठीक है. तो ये होम्योपैथी दवाई का ये कमाल है, ठीक है. लोग सालों साल परेशान रहते हैं, कोई भी इशू है, हम जो बार बार यही कहते हैं, देखिए पूरी जिंदगी यही काम करते हो गए, कोई भी हमारे पास देखिए मशवरा आप ले आके, कोई हम लोग चार्ज नहीं करते, जानकारी लें उसके कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन जब ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके बाद चार्ज होता है. लेकिन जी, कोई भी आपको पेट का इशू है, पाइल्स है, थायराइड है, एलर्जी है, पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, तो स्लीप एपनिया है, बच्चों का ऑटिज्म है, ऑटिज्म के पूरी दुनिया से बच्चे हमारे पास हैं, ऑटोमोडीज है, आंख नाक किनार कान की बीमारी है. देखिए अमित जी, ऐसा है कि हमने जो है आज से जैसे मतलब की 79 में जो है होम्योपैथी डिग्री की है. और जो है पढ़ाई जो हम लोग की पढ़ाई होती है इक्वल टू फैमिली डॉक्टर होती है, ठीक है जी. जो सब्जेक्ट वो लोग पढ़ते हैं वही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है. जो थोड़े सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट होते हैं. तो जो भी लिसन सुन रहा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर बीमारी का हल है. कोई जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे तो जल्दी ठीक होंगे, जो देर करेंगे तो देर साल भी लग सकते हैं, ठीक है. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट करें, हर बीमारी का हल है. आज थोड़ा एक्नी के बारे में बताते हैं, एक्जिमा के बारे में बताते हैं. एक्नी जो हम अफसोस होता है, अफसोस ये होता है बच्चियां जो है आप जाते हैं दाने उनके मुंह पे निकले रहते हैं, उसको हम लोग एक्नी कहते हैं, पिंपल्स भी कहते हैं, दाग पड़ जाते हैं बच्चियों के जो है. तो किसी को भी ये प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ बहुत फास्ट हम लोग की दवाई है, सालों साल परेशान, मोस्टली 15 डेज में हम रिजल्ट शो करते हैं, 15 डेज, ठीक है. एक्नी जो है तो ये कई तरह का होता है, सिस्टिक एक्नी है आपका जो है, कई तरह का जो है. आप यदि हो सकता है कोई आप कॉस्मेटिक यूज करते हैं उसकी वजह से होता है, कई बार हार्मोन की डिसबैलेंस की वजह से होता है, कई कारण होते हैं, लेकिन ठीक हो जाता है. एक्जिमा है, एक्जिमा लोग मतलब 20-30 साल पुराने पेशेंट हमारे पास आते हैं. एक्जिमा ये इसको डर्मेटाइटिस भी हम लोग कहते हैं, ठीक है. डर्म मीन स्किन, आइटिस मीन इंफ्लामेशन. तो इसका जो है एलर्जी की स्ट्रेस की वजह से होता है, कभी इन्वायरमेंट की वजह से होता है, कई बार आपके जीन्स की प्रॉब्लम उसकी वजह से है, सराइसिस से बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, कई बार आपको वायरल की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन उसकी वजह से हो जाता है। तो ये बीमारियाँ और विटिग्लो फुलवेरी जिसको लिकोडर्मा भी कहते हैं हम लोग, तो ये बीमारियाँ हाइव्स हो गया, कोल्ड सोर हो गया, ल्यूपस वार्ट्स, एलोपेशिया रेट का हेयर फॉल, एलोपेशिया रेट का ये भी स्किन की बीमारी है, ठीक है, उसके बाल लोगों के काटते हैं, तो हम कोई भी स्किन की इशू है 647-818-0055-647-818-0055 पर कभी कॉल करके आ सकते हैं। हमारी क्लिनिक 20 मैरिटाइम टू रेवर वार्ड यूनिट नंबर 2 होम डिपो वाला प्रागा ब्रैम्पटन 647-818-0055-647-818-0055 पर कभी भी कॉल करके आ सकते हैं। यदि आपने बेनिफिट है अपने बेनिफिट भी चेक करें, बेनिफिट भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू,
2: बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। कुलदीप जी को फोन करना है, नंबर यही मिलाना है, किसी भी तरह का हेल्थ के हवाले से मसला हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, अजियत हो, तो नंबर यही है 647-818-0055, नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको 647-818-0055। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, थैंक यू,
3: थैंक यू।
4: कुछ नगमे वक्त की गर्द में कभी नहीं खोते, कुछ नगमे कभी पुराने नहीं होते,
5: सिनेमा के सुनहरे दौर का ये है सुनहरा तराना, ये है लवी डवी सा गोल्डन गाना।
1: गोल्डन गाने की तरफ आपको लिए चलते हैं, हिंदी सिनेमा का गोल्डन दौर 50s का दौर कहलाया जाता है। 1956 की फिल्म द ग्रेट शोमैन, राज कपूर और नरगिस
2: जी,
1: ये दोनों एक ऐसा पेयर था जो पायनियर है रोमांस में, एक अच्छी अदाकारी में, एक अच्छी परफॉर्मेंस में, एक डिग्निटी और ग्रेस के साथ कैसे पुल करते हैं आप किसी भी फिल्म को और उसे कितने आगे तक लेके जाते हैं, ये इस जोड़े ने सिखाया। और 1956 ये जो मूवी थी चोरी चोरी, ये आखिरी फिल्म थी राज कपूर और नरगिस की
2: जी।
1: उसके बाद उन्होंने शादी कर ली सुनील दत्त साहब के साथ
2: जी,
1: और फिल्मों को अलविदा कह दिया। चोरी चोरी मूवी 1956 की थी और एक रोमांटिक कॉमेडी थी और इसमें राज कपूर नरगिस थे लीड रोल में और साथी कलाकारों में थे जॉनी वॉकर, प्राण और बहुत सारे और एक्टर्स। और 1934 की अमेरिकन मूवी इट हैपेंड वन नाइट इसका एडेप्टेशन था। और जैसे मैंने जिक्र किया, इट वाज द लास्ट फिल्म ऑफ नरगिस एंड राज कपूर टुगेदर एज लीड, विद नरगिस डूइंग वन स्मॉल परफॉर्मेंस इन द राज कपूर की अगली फिल्म जो 1956 में ही आई थी जागते रहो, उसमें उनका बस एक सीन था, उसके बाद वो फिल्मों में नजर नहीं आई।
2: अच्छा।
1: पंछी बनूं उड़ के चलूं मस्त पवन में, अच्छा। आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
2: मैंने सुना आपने मना किया था उनको फिल्मों में मजीद काम करने से।
1: जी हम, मैंने कहा था कि अब हो गया
2: बस काफी, मैंने देख लिया आपकी आखिरी फिल्म

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: घर लेना हो या करना हो रीफाइनेंस, अब मॉर्गेज की टेंशन को बोलो गुड बाय इन एडवांस। पहला मॉर्गेज हो या सेकंड मॉर्गेज का काम, सुखी कौर के साथ मिलेगा आसान समाधान। सेम डे क्लोजिंग हो या लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, हर मॉर्गेज सॉल्यूशन के लिए बस एक कॉल कीजिए। 5% हो, 10% हो या 15% डाउन पेमेंट, सही गाइडेंस के साथ आसान बने अरेंजमेंट। तो फिक्र कैसी, क्यों होना परेशान, बस सुखी को कीजिए कॉल। सुखी हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल। बिल्कुल सही सुना आपने, सुखी कौर। कॉल 647-408-7066। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल 647-408-7066।
5: और साहब, अगर आपको मोर्गेज करानी है, रीफाइनेंस कराना है, इक्विटी निकलवानी है, आप परेशान है, कश्मकश में, समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत सा रिस्क भी आपको लगता है इन्वॉल्व है, आजकल कैश फ्लो का बड़ा फुकदान है, लोगों के पास हाथ में पैसा नहीं है, रीफाइनेंस एक ऑप्शन हो सकता है, इक्विटी निकल सकती है, कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो सकता है, आप जिस घर में रहते हैं हो सकता है उसमें पैसा मौजूद हो, लेकिन आपको इल्म नहीं, पता नहीं, अंदाजा नहीं कि वाकई है या नहीं है, इसका हल मौजूद है। ऑन टॉप ऑफ दैट खरीदने का टाइम है, बाइंग मार्केट है, और बाइंग मार्केट में सस्ता घर खरीदने के लिए आपको एक ऐसा तजुर्बाकार मोर्गेज ब्रोकर चाहिए जो एक जर्रा बराबर भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई ग्लिच या कोई हिच ना आने दे, बल्कि आपका मोर्गेज का मामला अपने हाथ में ले और स्मूथ बना दे। आपकी राहत, आपका सुकून, आपका इत्मीनान और आपकी तसल्ली एक ही हाथ में, और नाम है इनका सुखी कौर। वेलकम करते हैं आपको।
6: क्या बात है सुखी जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप?
7: थैंक यू सो मच, आई एम वेरी गुड, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे हो। सबसे पहले तो आपको एंड हमारे सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी फ्राइडे जूनियर।
6: क्या बात है, वेरी हैप्पी फ्राइडे जूनियर, और आमिर और मेरी तरफ से भी आप को वेरी गुड आफ्टरनून। और सुखी जी, जैसे अभी आमिर ने बताया कि कोई भी तरीके की मॉर्गेज है या फिर रीफाइनेंस कराना है, देखिए क्या होता है, डेट बहुत बढ़ जाता है क्रेडिट कार्ड का, तो देखिए कितना ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आप हेल्प करती हैं जिससे कि एक घर के लिए, जो मतलब एक घर चलाने के लिए, ऐसा ना हो कि हम डेट के सहारे ही चले जा रहे हैं, पे ही करते जा रहे हैं, उसमें भी आप मदद करती हैं। यहाँ से शुरू ये करती हैं कि जो किसी के पास अगर डाउन पेमेंट वो नहीं है जो कि जितना आजकल सुनने में आता है, थोड़ा सा कम है लेकिन घर लेना चाहते हैं, लाइक 5% है, 10% है, खींचतान के उसको 15 भी कर लेंगे वो, तो क्या कुछ इंजाम हो सकता है सुखी जी आपके थ्रू?
7: ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच आमिर जी, यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, आपने मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है।
6: वैसे आमिर ना छोड़ते हैं नहीं, पता है आपको ये, इसलिए मैंने कहा कि जरा आप सुखी जी का पूरा कवर ही कर लीजिए।
5: आपका बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है हमें सुखी जी, जो लोग आपसे सर्विसेज लेते हैं वो हमें फीडबैक देते हैं, एंड वी आर वेरी डिलाइटेड टू शेयर दिस न्यूज विद आवर ऑडियंस that Suki has got 100% positive feedback. Keep up the good work.
7: Thank you so much. Thank you. Okay, let's come back to जो शिवानी जी ने question पूछा है कि अगर हमारे पास sometimes लोग सोच लेते हैं कि हमें 10-15 or 20% के less than that हम घर नहीं खरीद सकते, that is wrong. अगर आपके पास as low as 5% की down payment भी है तो हम आपको घर लेकर दे सकते हैं, आपकी मॉर्गेज करवा सकते हैं। स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो यू डोंट नीड टू जंप टू हाई कि यू नो व्हाट, मुझे डिटैच घर चाहिए, 5 बेडरूम का चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मैं ऑलवेज कहती हूँ कि लेट्स स्टार्ट स्मॉल। इस वेट में हम समटाइम्स बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो बड़ा घर ही लेना है, तो कई बार क्या होता है आप गुड अपॉर्चुनिटीज लूज कर लेते हैं। अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी दैट्स मान लीजिए 5-6 लाख की भी है, आपके पास एज लो एज 25,000 to 30,000 $25,000 to $30,000 सेव्ड अप है, तो गिव मी अ कॉल, आई विल मेक श्योर कि आपको आपकी जरूरत के हिसाब से आई कैन हेल्प यू इवन गेटिंग अ प्रॉपर्टी। हमारे पास पूरी टीम है जो कि आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसा घर कहाँ पर आपके लिए सूटेबल रहेगा, एंड उसी हिसाब से आपको मॉर्गेज करवा कर दी जाएगी। एंड आपको
6: क्या बात
7: पहले ही बता दिया जाएगा अगर काम हो जाएगा नहीं होगा, अगर आपके पास यू नो व्हाट इज योर डेट रेशियो, आपको बैंक अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है. अपनी खुद की सिचुएशन जानने के लिए प्लीज गिव मी अ कॉल एट 647-408-7066. एंड एक बात क्लियर कर दूं, मैंने ये
6: जी.
7: सिर्फ इसलिए कहा फर्स्ट टाइम बायर के लिए ताकि आपने अगर अपनी लाइफ स्टार्ट करनी हो, पर इवन इफ यू आर नॉट फर्स्ट टाइम बायर आई कैन स्टिल हेल्प यू गेटिंग मॉर्गेज डन लेस देन 20%. दिस इज जस्ट सम पीपल आर कंफ्यूज कि हमें 20% डाउन पेमेंट चाहिए ही होगी अगर हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं. दैट इज नॉट ट्रू. इवन अगर आपके पास 10% की डाउन पेमेंट है एंड आप अपना दूसरा घर लेना चाहते हैं, आई कैन हेल्प यू गेटिंग अ प्रॉपर्टी. बाकी बात रही कि हम समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं कि वी डोंट नो इफ वी क्वालिफाई घर लेने के लिए, हमें हमारी इनकम के लिए ज्यादा यू आर नॉट 100% श्योर इफ इफ दैट्स इनफ फॉर योर परचेज. आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, आपको उसके लिए कंफ्यूजन है. वी हैव सोल्यूशन टू एवरीथिंग. चाहे आपका क्रेडिट स्कोर कम है, आई कैन हेल्प यू गेटिंग दैट इन अ बेटर सिचुएशन. आपने करना क्या है, विदाउट एनी डिलेज पिक अप योर फोन, गिव मी अ कॉल एट 647-408-7066, 647-408-7066. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आप बात कर रहे थे कि आजकल यू नो सो मेनी पीपल रिसेंटली लॉस्ट जॉब्स, हमारे पास कैश फ्लो नहीं है. तो अगर यू ओन अ प्रॉपर्टी, आई नॉर्मली से रिन्यूअल इज द बेस्ट टाइम. अगर आपने घर में से पैसे निकलवाने हैं, रिन्यूअल इज द बेस्ट टाइम. बट इफ नॉट, आप रिन्यूअल आपकी मान लीजिए 2-3 साल में है, आपने अभी 2 years ago ली है, बट यू आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम विद मनी, आपको पैसे चाहिए, तो वी कैन ऑलवेज डू रीफाइनेंस. आई कैन रीफाइनेंस योर प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज देयर इज गुड इक्विटी इन देयर. I can get you. मान लीजिए आपका घर आज की डेट में मिलियन का वर्थ कर रहा है, आपके पास 5 लाख की जो मॉर्गेज है, I can get you एक्स्ट्रा 300, $3 लाख एक्स्ट्रा, अप टू 3 लाख लेकर दे सकते हैं. तो अगेन एवरीबडी सिचुएशन इज डिफरेंट. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज वट वी कैन बी डन. आप अपनी सिचुएशन जानने के लिए अपनी सारी डिटेल्स मेरे साथ शेयर करें. आप मुझे ऑफिस में आकर मिलना चाहते हैं, कम सी मी इन माय ऑफिस. हम बैठ कर बात करते हैं, बात करने पर ही सोल्यूशन निकलता है. इफ यू कीप ऑन थिंकिंग नथिंग, यू वुडन्ट गेट एनीवेयर. 647-408-7066. चाहे आप मेरे साथ फोन पर बात करना चाहते हैं या ऑफिस में आकर मिलना चाहते हैं, देयर इज नो कंसल्टेशन फी. एटलीस्ट यू वुड नो कि आपके पास ऑप्शंस क्या है.
6: जी 647-408-7066 is the number to call. 647-408-7066.
5: इसी नंबर पर कॉल कीजिए. मोर्टगेज के हवाले से सलाह मशवरा बात, कहते हैं मशवरा दीवार से भी कर लेना चाहिए, और अगर आपको कोई एक्सपर्ट मिले सुखी जी जैसा, फिर तो मशवरा बनता ही है. बात कीजिए, बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी. 647-408-7066. थैंक यू सुखी.
6: थैंक यू सुखी जी.
7: थैंक यू जी. हैव अ अमेजिंग वीकेंड हैड.
6: यू टू. बाय बाय. और बाय बाय. और आमिर, अगला गाना जो है ना बड़ा जबरदस्त है. हल्कर जवानी हीरोइन मूवी का गाना है. मधुर भंडारकर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमेशा ऐसे टॉपिक पर मूवी बनाते हैं जो कंट्रोवर्सियल तो ज़रूर होती है, लेकिन वो हार्ड रियलिटी बयां करती है. चाहे वो किसी फिल्म इंडस्ट्री की हो, चाहे वो Page 3 वाली जिंदगी की हो. उन्होंने ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं. ट्रैफिक सिग्नल बनाई है जिसमें ट्रैफिक पर जो लोग होते हैं जो मनी के लिए, बच्चे जो छोटे छोटे से हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, कितने पेन से उनको गुजरना पड़ता है. ये हार्ड रियलिटी है, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट. वो उस पर मूवी बनाते हैं. Page 3 उन्होंने बनाई थी. ऐसी उन्होंने हीरोइन मूवी बनाई थी जिसमें पहले ऐश्वर्या राय को उन्होंने लिया, लेकिन उनका उस टाइम शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर डॉटर, इसीलिए वो मूवी से बाहर हो गई, उन्होंने मूवी नहीं की. तो करीना कपूर को लिया गया इस मूवी के लिए. और ये जो मूवी थी हीरोइन, इसमें करीना कपूर ने करीब 130 डिफरेंट ड्रेसेस पहनी थी, और वो ड्रेसेस थी बाय टॉप फैशन डिजाइनर ऑल ओवर द वर्ल्ड.
5: यस आई नो दिस वेरी वेल.
0: because the dresses were sponsored by Radio Toronto Canada. Yeah.
6: It has been reported that Kareena's wardrobe for the film was one of the most expensive out of the all Bollywood movies ever created.
0: Yes, right. So, Kareena Kapoor, one of the all-time favorite heroines. And 90s में तो उन्होंने एक धाग भी टाई थी अपनी बड़ी कमाल की, तो आज भी लोग उनको याद करते हैं.
6: जी, वो करिश्मा कपूर.
0: बस पता नहीं क्यों 90s की हीरोइंस अक्सर मुझे याद, मैं मिक्सअप कर देता हूँ ये जो इधर इधर उधर भागती दौड़ती हीरोइंस हैं उनको 90s की प्रॉपर हीरोइंस के साथ.
6: एक हीरोइन हफ्ता भर पहले आई तो उन्होंने कहा आप 90s की बात ही अलग है, वो फेंट होते होते बच गई. उनकी मम्मी 90s की थी.

0: Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
1: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से इलाज किया जाता है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो, 6473278111, 6473278111।
2: क्या आप ओंटारियो में अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह से कानूनी और बेफिकर होके? विवेक गुप्ता, जो 2012 से अपनी इंजीनियरिंग टीम के साथ लीगल बेसमेंट, मल्टी यूनिट कन्वर्जन, कमर्शियल परमिट और बिल्डिंग अप्रूवल के काम में लोगों की मदद कर रहे हैं। होम एक्सटेंशन जैसे पूल, डेक या गराज बनवाना हो या कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन और परमिट के लिए अभी कीजिए बात। विवेक गुप्ता हर पल आपके साथ। कॉल 6479731733। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल 6479731733।
3: और साहब बात करें आजकल के हालात की, तो एवरी सिंगल सेंट काउंट्स, एवरी सिंगल पेनी काउंट्स। आजकल जो हालात हैं, एक बंदा तीन तीन चार चार जॉब्स कर रहा है, मेहनत मजदूरियां कर रहा है, जिस्म को थका रहा है, फिर भी पैसा नहीं बन रहा, काम नहीं हो रहा। तो आपको बता दें, एक तरीका है, घर में ही बैठेंगे आप, कहीं नहीं जाने की जरूरत। आप के पास एक लैपटॉप है, आप यूरोप में है, आप एशिया में है, आप नॉर्थ अमेरिका में, आप कहीं भी हैं, यू विल बी इन अ पोजीशन टू जस्ट क्लिक द बटन एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। यस, इट इज पॉसिबल, यू हेड इट राइट। ये कैसे मुमकिन होगा? आपको सिर्फ ढाई तीन हफ्ते की एक छोटी सी ट्रेनिंग करनी है, काम हो जाएगा। साथ निभा रहे जेम्स लूक जी, वेलकम करते हैं सर आपको।
4: जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
3: आपने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल
4: दुरुस्त है। ये काम में ऑलमोस्ट 18 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए।
3: वाओ वाओ।
4: सो
3: कितने लोगों को ट्रेन कर दिया होगा और क्या सब लोग पैसे बना रहे हैं?
4: 100-200 लोगों को ट्रेन कर दिया अभी तक मैंने, अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग, और लोग अपने अपने टाइम में पैसे बनाते हैं। कोई उसमें वक्त की पाबंदी नहीं है, कोई उसमें जगह की पाबंदी नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप पैसे बना सकते हैं।
3: दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल या आईटी वगैरह का आना जरूरी है, या मेरे जैसा बिल्कुल पैदल आदमी जो आईटी नहीं जानता ज्यादा, वो भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, जान सकता है?
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा आसान सा कोर्स है, और ये कोर्स करने के लिए आपको मुझे फोन करना होगा ताकि मैं आपको इसकी तफसील बता सकूं। ये एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है, जैसे ज्यादातर लोगों ने सुना है फॉरेक्स का, ये फॉरेक्स की आप कह लीजिए कि सिस्टर प्रोग्राम है। और ये फॉरेक्स, ये इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, और ये बहुत ही यूजफुल कोर्स है, क्योंकि आप कहाँ एक दो घंटे में आप कहाँ $200, $300, $500 US बना सकते हैं। इसमें आपकी पॉसिबिलिटी है, और स्काई इज द लिमिट। एक्चुअली मैं लोगों को घबराना नहीं चाहता, लेकिन ये इसमें लोग इससे भी ज्यादा पैसे बना रहे हैं।
3: नंबर दे रहे हैं जेम्स लूक जी का, ये नंबर मिला है अभी के अभी, बात करें जेम्स लूक से। बहुत कमाल के, बहुत काम के आदमी हैं, आपको काम आ जाएगा, हुनर आ जाएगा, स्किल आ जाएगा, सारी जिंदगी के लिए काफी होगा, पैसे बनाते रहेंगे आप। 416-454-2581। जेम्स जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अपने टाइम के हिसाब से लोग काम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, या कोई सर्टन टाइमिंग्स होते हैं पैसा बनाने के काम सीखने के बाद?
4: नहीं, कोई टाइमिंग्स नहीं है। आप 24

0: हाँ, ये जरूर है कि आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: घर
1: सही।
0: बैठे तो आप कुछ नहीं करें तो पैसे तो बनेंगे। सो
1: बिल्कुल ठीक।
0: इसलिए आपको आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। और आपको देखें, एक बंदा था, वो ड्राइव कर रहा था, और ड्राइव कर रहा था तो खुदा से दुआ कर रहा था कि मैं मुझे तूने क्या नाम है मेरी लॉटरी निकाल दे।
1: जी
0: सो खुदा ने उससे पूछा, उसने कहा कि तुमने टिकट खरीदी है? तो उसने कहा टिकट तो मैंने नहीं खरीदी। तो उसने कहा फिर क्या, कह लॉटरी कैसे निकलेगी? तो इसलिए आपको टिकट खरीदनी होगी, आपको स्टेप ऑफ यू नो स्टेप ऑफ फेथ,
1: जी
0: लीप ऑफ
1: बिल्कुल
0: फेथ
1: सही।
0: लेना पड़ेगा अगर
1: हाँ
0: आप कुछ बनाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: और
1: और जेम्स लूक जी को आपने फोन करना है, क्लासेस बस शुरू होने वाली हैं, बस नाम लीजिए जेम्स लूक का तो समझ लीजिए पैसा बनना शुरू हो गया। ये इतने अहम आदमी हैं, हजारों लोगों तक इनकी रसाई है और सैकड़ों लोग इनसे ट्रेन हो चुके हैं। यहां नंबर है 416-454-2581, 416-454-2581। बहुत शुक्रिया जिम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
0: थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।
2: और इसी के साथ आमिर अपने लिस्टर से अब आज्ञा लेते हैं, इजाजत
1: आज्ञा
2: लेते हैं,
1: आज्ञा,
2: आज्ञा,
1: आई लव
2: और
1: इट।
2: कल होती है मुलाकात 416-303-3639। बहुत खूबसूरत गाने के साथ छोड़े जाते हैं आपको।
1: इस पैगाम के साथ कि अपना ध्यान रखिए, जहां भी हैं कोशिश कीजिए गिरते हुओं को थाम लीजिए, यही जिंदगी का पहला रूल, कायदा, कानून और नियम हो तो जिंदगी बेहतरीन और खूबसूरत हो जाती है। अपना ध्यान रखिए। एंड हे यू, आई लव यू।

0: accuracy of information presented on this show.
1: Your attention please. Shawn Express, Masti Ki Rail Gaadi, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
2: सुनाने आई सुबह हम मनाने आई चटपटे गॉसिप के साथ मस्ती लुटाने आई आई शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी आई शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी
3: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी
4: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स ताज़ा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ड्राइव टाइम शो विद शालिनी
3: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया
5: आदाब सत श्री अकाल दोस्तों मैं हूँ शालिनी और आप लोगों का वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर एफएम 101.3 और आज है दोस्तों थर्सडे का दिन बस वीकेंड के बहुत करीब आ चुके हैं और इस खूबसूरत सी महफिल में मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करती हूँ. कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती लेकिन उसे खूबसूरती से जीने का अंदाज हम जरूर चुन सकते हैं. नजरिया बदला तो नज़ारे बदल गए. नजरिया बदला तो नज़ारे बदल गए. मुस्कुरा कर देखा तो दिन के रंग बदल गए. खुशियों की तलाश में कहाँ कहाँ जाते रहे लेकिन दिल से जीना सीखा तो रास्ते सवर गए. और दोस्तों आपके रास्तों को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मस्ती की रेलगाड़ी एक बार फिर से तैयार है ऑन सीएमआर एफएम 101.3. आप लोगों का मैं शालिनी करती हूँ फिर से स्वागत. सबसे पहले रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ.
3: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया.
5: ओलिविया चाओ ने आज 8 अक्टूबर को घोषणा की है कि दोबारा चुनाव जीतने पर वो 10,000 एक्स्ट्रा रेंटल होम्स बनाने की योजना को आगे बढ़ाएंगी. इनमें कम से कम 20% घर अफोर्डेबल होंगे. टोरंटो में म्यूनिसिपल इलेक्शन अक्टूबर 26 को होने वाला है. ब्रैम्पटन में कल एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई. ये घटना क्वीन स्ट्रीट और ऑक्शन लेन के पास शाम लगभग 4:15 पर हुई है. पुलिस के मुताबिक हादसे में एक टो ट्रक शामिल था. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है. अक्टूबर 6 को जारी सितंबर के आंकड़ों के मुताबिक जीटीए में होम सेल्स पिछले साल के मुकाबले 9% गिर गई हैं. न्यू लिस्टिंग्स में 14.4% की गिरावट दर्ज की गई. इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण बायर्स फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं. इस वीकेंड अक्टूबर 10 और 11 को टीटीसी लाइन 2 पर किपलिंग से जेन स्टेशन के बीच सबवे सर्विस बंद रहेगी. मेंटेनेंस वर्क के दौरान शटल बसेस चलेंगी. रेगुलर सर्विस मंडे अक्टूबर 12 को सुबह 6 बजे शुरू होने की उम्मीद है. मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर में कल 9 अक्टूबर से कनाडा दिवाली फेस्टिवल शुरू हो रहा है और इसके साथ साथ एक हेल्थ अपडेट. टोरंटो पब्लिक हेल्थ ने अक्टूबर 5 को बढ़ते एमपॉक्स केसेस को लेकर एडवाइजरी जारी की है और अक्टूबर 6 तक सितंबर से कुल 15 केसेस कंफर्म हुए हैं. हेल्थ ऑफिशियल्स एलिजिबल रेसिडेंट से वैक्सीनेशन पूरी करवाने की अपील कर रहे हैं. आम जनता के लिए रिस्क फिलहाल लो बताया गया है. और एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक आज सुबह 11 बजे के फोरकास्ट के अनुसार टोरंटो में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा. 40% जो है बरसात की संभावना है. 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं भी चल सकती हैं. आज की खबरों में इतना ही. जुड़े रहिएगा 4 बजे तक सीएमआर एफएम 101.3 पर. गुड आफ्टरनून.
3: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन सीएमआर 101.3 एफएम पर आ चुकी है. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: दोस्तों, जिंदगी में जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन जब हम फाइनेंशियल अपनी हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हार हमसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, क्योंकि हमारे खर्चे नहीं रुकते, हमारी जिंदगी नहीं रुकती। कई नेसेसिटीज होती हैं जिंदगी की। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अगर आपके पास रेगुलरली एक सेट अमाउंट आ रहा है, तो आप उसमें ही अपनी जिंदगी अच्छी चला सकते हैं, और वो सेट अमाउंट बहुत बड़ा भी हो सकता है। और बड़े बड़े सपने देखना हम सभी को हक है, और वो सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं विन लाइफ टाइम पिछले 18 ईयर्स से। जॉइनिंग अस नाउ इज रेनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी। राफी जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
2: जी थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स जी।
3: व्हाट अ फील्ड।
1: थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे राफी जी। तो विन लाइफ टाइम के हवाले से हमारे लिसनर्स को थोड़ी उम्मीद दें, थोड़ा विश्वास दिलाएं कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। हाउ कैन विन लाइफ टाइम हेल्प अस हैव अ ग्रेट लाइफ।
2: जी एब्सोल्युटली। देखें, आप कुछ भी पैसा कमाने के लिए कोई सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होता है। आप एजुकेशन जा करते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कैरियर पिक करते हैं। दैट्स वन राउट जिंदगी में, वो भी एक अच्छा एक सिस्टम है। उसके बाद कुछ लोग प्रोफेशनल कैरियर में चले जाते हैं, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर। कुछ लोग कनाडा में जरा लेट आते हैं एंटर, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी री एजुकेशन की कम होती है। तो ऐसे लोग कोई जो अभी कोई स्ट्रगलिंग फेज में है, नए इमिग्रेंट्स हैं, सिंगल मदर्स हैं, वो अभी अपने आप को रीट्रेन नहीं कर सकते, तो ये आपकी लोएस्ट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है लाइफ में कि आप डे ट्रेडिंग की दुनिया में आए। आपने रेस्टोरेंट भी खोलना हो, यहाँ आपको बताइए रेंट और लेबर से हजारों लाखों डॉलर लग जाता है। कोई भी बिजनेस करना, उबर भी चलानी है तो एक अच्छी गाड़ी चाहिए। हर बिजनेस की कॉस्ट होती है। डेफिनेटली 2023 के बाद ट्रेडिंग इस तरह चेंज हो गई है कि अब आपने अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने। आप आए, सॉफ्टवेयर सीखें, एक दो मंथ में सीख के, किसी और का कैपिटल है तो आपको लॉस का भी रिस्क नहीं है।
1: ऑसम। अच्छा, एक मैसेज आया राफी जी, और वो पूछते हैं कि आजकल AI और बड़ी सारी ट्रेडिंग एप्स चल रही हैं, उनका भी जमाना हो गया है। विदाउट नोइंग एनीथिंग लोग AI पर भरोसा करके पैसे लगा रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या जो टेक्नोलॉजी है उसने डे ट्रेडिंग को बिगिनर्स के लिए आसान बनाया है कि एक तरफ रिस्क बढ़ा दिया है?
2: बिल्कुल आसान बना दिया। हम खुद टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जिस वक्त उबर आया था तो बहुत सारे मुखालिफ थे कि जी टैक्सी का बिजनेस डाउन हो जाएगा। ईमेल आया तो लेटर गया, गाड़ी आई तो हॉर्सेस गए। अगर हम AI को इग्नोर करते रहे तो इट्स ओके, वो पैराडाइम शिफ्ट इतना बड़ा है कि वेदर यू लाइक इट और नॉट इसने टेक ओवर कर लेना। इसलिए विन लाइफ टाइम एक स्टेप अहेड है। AI को हमने पूरी तरह इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने सिस्टम में। अब वो आपको एज एन असिस्टेंट हेल्प करता है ऑल द डिसीजन मेकिंग के लिए।
1: वेरी नाइस। तो राफी जी, अगर हमारे लिसनर्स इस काम को करना चाहें, रिस्क फ्री ये जो काम है, बिना अपने पैसे लगाए इन्वेस्टमेंट किए वो ये काम करना चाहें, तो क्या रहेगा तरीका, कितना वक्त देना है, कब से स्टार्ट करना होगा?
2: सबसे पहले तो ये सारी जानकारी के लिए आपको सेमिनार में आना है। एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, दोनों ऑफिसेज में सेमिनार होता है। आप आए, सुने, हमारे 4 different types ऑफ प्रेजेंटर्स होते हैं। आप आए, किसी को भी सुने, उसके बाद डिसीजन मेक करें, ताकि आपके अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है। 5 मिनट के रेडियो इंटरव्यू में तो नहीं हो सकते, पर वी कैन डेफिनेटली मेक दैट
1: ओके, वंडरफुल। तो वेल दोस्तों, विजिट कीजिएगा winlifetime.com, और ये अच्छी सी अपॉर्चुनिटी 10 नंबर के फासलों पर है। सैटरडे को बिल्कुल फ्री सेमिनार होने जा रहा है इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा। 9052061008 9052061008। राफी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, फिर आपसे जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू, टेक केयर,
1: नमस्कार।
4: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.
5: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स, रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ। और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स। 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600।
3: Jay.

0: स्वाग से करेंगे सबका स्वागत। और आप लोगों का स्वागत तो स्वैग के साथ हो चुका है दोस्तों, और अब हम स्वागत करने जाते हैं स्वैग के साथ अपने अगले मेहमान का। जब भी थर्सडे फ्राइडे आता है ना, तो बस खुशी होती है कि अब मिड्डा फर्नीचर गैलरी की सैर करते हैं। द एडवांटेज तो बहुत सारी हैं, उसमें एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप ना पूरा GTA घूम लेते हैं, क्योंकि पांचों लोकेशन से आपको सर्व करते हैं यूनिफॉर्मिटी के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे अपने पवन मिड्डा जी। पवन जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: वेरी गुड आफ्टरनून जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिड्डा फर्नीचर बिल्कुल आपकी दुआओं से, आपके प्यार सहयोग से, क्योंकि आपकी दुआएं भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, और ये वैल्यूएबल बिजनेस का जो आप सहयोग करते हैं तभी ये लोकेशन चल पाती है। और थैंक्स गिविंग वीकेंड आने वाला है, तो मिड्डा फर्नीचर ऑलवेज कुछ ना कुछ करता है। हमने भी आपके लिए डिस्काउंट तो देती है, लेकिन इकोनॉमी थोड़ा स्लो है, उसके लिए आपका एक और हेल्प करने की, हमारी तरफ से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बड़े स्टोर तो मैंने सुना है, जो मैं बड़े बड़े कारपोरेट स्टोर हैं, आपको 36 इक्वल पेमेंट देते हैं, क्योंकि बैंक बहुत काट के पैसे देता है। लेकिन जो साउथ एशियन हमारी कम्युनिटी के स्टोर थे, मैं माफी मांगते हुए बोल रहा हूँ किसी के, हम चाहे मैं अपनी था, हम 12 मंथ्स की आपको फाइनेंसिंग करते थे, लंबी फाइनेंसिंग नहीं करते थे। लेकिन मिड्डा फर्नीचर आपको पता है कि हर वक्त एक कदम आगे रहता है, तो आज हमने आपके लिए बंडल भी बना दिया है कि आपसे जैसे शगुन के $111 पर मंथ, और आपके घर में हाइड्रोलिक वाला बेडरूम सेट, बेड ड्रेसर, मिरर, और मैं कीमत भी बता रहा हूँ, साथ में कीमत भी बता रहा हूँ कि अगर बंडल लेंगे तो ये $111 $1299 का वो बेड हमने थैंक्स गिविंग के फ्लायर पे लगाया हुआ है।
0: अरे वाह।
1: $999 का कैनेडियन मेड सोफा, क्योंकि गिमिक्स हो गई ना, फिर तो मैं कुछ भी पकड़ा दूंगा आपको, कोई मैं मॉडल भी बोल रहा हूँ, हमारी पिक्चर दिखा के दो मॉडल आपको बेड के दिखाएंगे, दो सोफा लव सीट के दिखाएंगे, $999 के कैनेडियन मेड, हम कभी कभी साल में वो ऐड भी करते हैं कॉस्ट पे लगाए हुए, $999 का आपको बेडरूम सेट देंगे। आप टोटल जोड़ती रहे, जो मैट्रेस है हार्ड वाली मैट्रेस 10 साल की गारंटी वाली $399 की वो देंगे, $899 की मार्बल टेबल, आपको टेबल 6 चेयरें देंगे, कॉफी टेबल देंगे $199 वाली, कॉम्प्लीमेंट रेट फ्री देंगे, ये टोटल 36 से ज्यादा हो गया होगा। और जो कहते हैं ना ये, और आपको $111 पर मंथ, कोई ब्याज नहीं देना, कोई हिडन चार्जेस नहीं देनी, कुछ नहीं देना, फ्लेक्सी फाइनेंसिंग का कार्ड आपके पास होगा तो ठीक है। हाँ, ये एक प्यार की फ्लेक्सी की कंडीशन है, अप्रूव उनसे होना चाहिए। बहुत सारे बहन भाइयों के पास हमारी कम्युनिटी में फ्लेक्सी के कार्ड हैं, आप गोल्ड ज्वेलरी बहुत कुछ उससे लेते हैं, तो वही कार्ड यूज, एग्जिस्टिंग कार्ड आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे स्टोर पे आएंगे तो आपको नया बना के दे दिया जाएगा, ऑन अप्रूवल ये है, तो 36 मंथ की। इसके अलावा कोई और फर्नीचर, ये तो मैंने आपको बंडल दे दिया, अगर आपके सारे घर का फर्नीचर आपके घर में पहुंच गया, कोई भी और फर्नीचर जो 3600 से ओवर है उसको भी आप $100 पर मंथ काउंट कर लें, चाहे वो 36 का है तो 100 हो गया, 4800 है तो, और मतलब जो कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर पे आती है। तो फर्स्ट टाइम मिड्डा फर्नीचर, ये प्यार की कंडीशन यही है कि वो 3600 अबव अमाउंट होना चाहिए, तब जाके वो आपको 36 मंथ है, अदरवाइज हमारे पास स्टिल वो 12 मंथ वाले, 18 मंथ वाले, 24 मंथ वाले प्लान है, वो तो हमारे पास है ही, हम देते ही हैं। और हमारी जो प्राइस है वो हम दावा नहीं करते, प्रूफ के साथ दावा करते हैं कि बाजार से, किसी भी कंपटीशन स्टोर से, किसी भी कंपिटेटिव मार्केट से 10-30% कम है। और माफी मांगते हुए हमारा कोई मोटिव नहीं है कि किसी के साथ हमारा कंपटीशन हो रहा है, आपकी दुआओं से हमें डिस्काउंट बल्क मिल रहा है, क्योंकि जब मैं भी अकेला स्टोर था तो नहीं मिलता था, तो ये डिस्काउंट किसकी वजह से, आपकी वजह से मिल रहा, तभी आपको वापस लौटाते हैं, और मार्केट में भी पता है। और डिजाइनर फर्नीचर जो हमने ऐड करा है आपके लिए, वो तो आपको जो कल मैं ChatGPT से डिजाइनर स्टूडियो के मैंने कुछ ऐसे पूछे और हमने वहां पे विजिट करके पूछा तो लगा कि 50% हम सस्ते हैं, 50%,
0: अरे वाह, वाह,
1: 50%, मतलब एक बहुत बड़ा मॉल है अपना हाईवे के ऊपर, उसके पास आसपास स्टोर है, 8-10 हजार के सोफा लिखा हुआ, और हमारा सिमिलर सोफा, मतलब हमारा सोफा वो 2000 का, मतलब आपको वो वाव वाला चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ, उनकी लाइटें, उनका उनका जो प्रेजेंटेशन है, यस वो देखने वाला है, उसमें अभी हम पीछे हैं, उसमें अभी हम पीछे हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन तो प्राउड टू बी देसी एशियन वाली है, हमने थोड़ा प्रेजेंट स्टूडियो नहीं बनाया हुआ, बेसिकली हमारा स्टोर है, अभी हम कोशिश करेंगे कि थोड़े आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ एक सेगमेंट हमारे स्टोर में भी वैसा ही आपको दिखा पाए, पर आपको वही कंपेयर बता रहे हैं आपको मैंने, देखो इशारा भी कहा कि कहां से आपने कंपेयर करना है और कहां से कितना सस्ता लेना है, तो एक बार आए तो सही, अजमाएं तो सही, अपना बनाए तो सही, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी।
0: थैंक यू सो मच पवन जी, बहुत जल्दी आपसे फिर जुड़ते हैं कुछ और डील्स के साथ और कुछ नए आइडियाज के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।
1: थैंक यू जी।
0: जी 416-901-2810 या बिड्डा फर्नीचर .com है वेबसाइट जो आपको विजिट करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, वापस चलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
2: हेलो
3: सर, आपका क्रिस्टल क्लियर वॉइस बहुत अच्छा लगता है, ना क्लियर कट और क्रिस्टल क्लियर वॉइस।
2: मैं सुखिया बोल रही हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप तो यहाँ पे ये पुराने गाने जो लगाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वेदर मैं जरूर सुनती हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और इसमें काफी सारी बहुत अच्छी बातें हैं। जब मैं जॉब से आती हूँ तो मैंने लगाया होता है, मैं सुनती रहती हूँ सारी बातें। आप सब लॉयर्स को बुलाते हैं और कोई आप अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं।
4: Your quote of the day and promotions that you advertise on the thing, and it's nicely done.
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
6: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
5: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
7: क्या आप अपनी लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं? तो एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के जरिए पाइए अपने जीवन और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की गाइडेंस। चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन अवेलेबल है। कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ पंडित रामकृष्ण आपकी सिचुएशन को समझकर सही गाइडेंस और सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं। अपनी पर्सनल पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस के लिए आज ही कॉल करें पंडित रामकृष्ण 437-882-0639। That's 437-882-0639। घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स?
8: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
7: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
8: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
7: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
9: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
10: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Hashtag Holmes and Rahul Kashyap आपके लिए लेकर आए हैं Brampton and Caledon border पर at Mayfield and Gore, freehold towns from mid 700s, semis from mid 800s and detached homes from mid 900s. Master plan community of 2500 homes with cricket pitch, tennis, basketball and pickleball courts, dog park and kids splash pads as neighborhood amenities. Only 10% deposit over 365 days and closing later 2027 to early 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844. 647-993-4844.
3: पुराना गाना बनाए दीवाना. शोर एक्सप्रेस पर खोले यादों का पिटारा.
4: दोस्तों, यादों का पिटारा खोलने चाहते हैं और आपको 1950s के दौर में लिए चलते हैं. और आप लोगों की ह्यूज ह्यूज फरमाइश पर एक बहुत प्यारा सा गाना है. फिल्म का नाम है अनारी और एक बहुत प्यारा सा गाना है. तो कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ है किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आना. और राज कपूर साहब की फिल्मों में जिंदगी का यही जो फलसफा है ना, बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया था. कहते हैं दोस्तों, किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाइए, किसी की मुश्किल में आसान बन जाइए. जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं, कभी कभी किसी की खुशी की पहचान बन जाइए. किसी की मुस्कराहटों पे हो निसार, आपकी नजर मस्ती की रेलगाड़ी पर.
5: I am basically an ordinary man. I am nothing too big or great. Just simple man. I don't claim I have any academic qualifications, except that I have been quite aware of what is around me, and hence got to know a little bit of human philosophy and human kindness and compassion. And that is probably what has given birth to the clown in me. And that clown, even at the cost of my tears, tries to make somebody happy.

0: जी दोस्तों, किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आना आसान नहीं है, लेकिन किसी के चेहरे पर दुख लेकर आना ना बहुत आसान है। इसीलिए जल्दबाजी में कभी कभी हम ऐसे काम कर जाते हैं कि किसी ना किसी की जिंदगी में हम दुख का कारण बन जाते हैं। कोशिश करें दोस्तों कि किसी के दुख का कारण कभी ना बने, सबकी खुशी का कारण बने। और अगर खुशी नहीं दे सकते आप तो दुख बिल्कुल भी ना दीजिए, कुछ भी ना दे वो भी बेटर है। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वहां पर दुख नहीं, वहां पर बहुत खुशियां मिलती है, क्योंकि जब हेल्थ का रिवॉर्ड मिलता है ना, एक अच्छी हेल्थ का, तो बस फिर खुशियां अपने आप आ जाती हैं। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो हेल्थ भी ऐसी कि जो जड़ से पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी खुशी भरी जिंदगी? तो हमारे साथ एक मैजिकल नाम जुड़ने जा रहा है, मिरेकल गुरु जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरु जी के नाम से पॉपुलर हैं, और जो आपको बताएंगे कि कैसे जड़ से आपकी बीमारियों का इलाज हो सकता है। गुरु जी नमस्कार एंड वेलकम टू द शो।
1: नमस्ते नमस्ते बहन जी, आप सही किया है। हमको शरीर में क्या होता है, हेल्थ इज वेरी वेरी वेल,
0: राइट।
1: हेल्थ अच्छा हो तो सारा जिंदगी अच्छा होता है,
0: सही बात।
1: इसके एक एक बात है, आरोग्य में महाभाग्य। हेल्थ अच्छा हो तो महाभाग्य, इतना पैसा हो तो भी शरीर में बीमार हो तो भी फायदा नहीं है। वैसा वैसा हमारा ऋषि मुनि लोग वैसा बताता है। मैं वैसा नव जनरेशन से वैद्य है। ये वैद्य कैसा है बहन जी, आपको मालूम है हमारा 60-70 ईयर के पहले इंडिया में डॉक्टर बहुत कम था, MBBS डॉक्टर लोग बहुत कम था
0: जी।
1: तब लोगों को बीमार हुए तो जाता है वैद्य के पास, हकीम को पास जाता है। हकीम को पास जाते हुए हकीम लोग नाड़ी परिशोधन करता है, पल्स देखता है, नबस देखी, नबस में क्या बीमार है बता करता है।
0: ओके।
1: बता करके उसको जड़ी बूटिया से दवा देता है, उससे ये रोग दूर हो जाता है।
0: अच्छा,
1: वही मेरा फैमिली है, मैं भी वैसा नौ जनरेशन से कर रहा है इंडिया में।
0: क्या बात है, क्या बात है गुरु जी।
1: यस, वैसा वैसा हर्बल्स अभी आजकल हमारा वो पहले किधर भी जड़ी बूटियां मिलता है, अभी नहीं मिलता है
0: जी। जी,
1: मैं इसके लिए हिमालय जाता है, केरला जाता है,
0: अच्छा
1: कुल्लू मनाली जाता है, वैसा वैसा रेर रेर पर्वतों को ऊपर मेरा टीम के साथ जाके उधर से जड़ी बूटियां लेकर आके उसके मिलाकर दवा दे बनाता है इंडिया में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
1: दवा से सारा बीमार विदाउट साइड इफेक्ट ठीक होता है।
0: ओके।
1: उसमें एक सीजनली, अभी सीजनली भी प्रॉब्लम होता है, एलर्जी होता है। आजकल मौसम 0 से 17-18 तक होता है, कम हो जाता है, ऊपर जाता है, इसलिए सर्दी आता है और कोल्ड आ जाता है, थ्रोट इचिंग खांसी आता है। और ये क्या होता है बहन जी, जॉइंट में दर्द हो जाता है, आर्थराइटिस बन जाता है।
0: सही बात।
1: बॉडी में वाटर ज्यादा हो जाता है, पानी बढ़ जाता है, इसलिए जॉइंट में दुख आता है, आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस एंड एस्ट्रो आर्थराइटिस हो जाता है इसके लिए, एंड नर्व सिस्टम तो विकसित इसके लिए। और हमारा लेडीज भाई बहन जी को लिए क्या होता है, भाई बहन को लिए क्या होता है, हार्मोनल इनबैलेंस होता है
0: जी जी जी।
1: ये हार्मोनल इनबैलेंस के लिए क्या होता है, PCOD हो जाता है, इरेगुलर पीरियड हो जाता है, इसलिए ओबेसिटी बन जाता है
0: जी जी।
1: ओबेसिटी के लिए मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है। और लिवर में इश्यू होता है, फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है। शुगर के लिए बहुत अच्छा इलाज है, शुगर के लिए, स्किन के लिए ज्यादा होता है। और देखो बहन जी, शुगर हमारा शरीर में आए तो वो स्लो पॉइजन है हमारा शरीर के लिए
0: जी।
1: एक बार शुगर अटैक हुए तो ये कम नहीं हो जाता है, पीछे नहीं जाता है, हमारा पैंक्रियास बर्बाद, वो डैमेज होता है
0: जी।
1: वो लोगों को यूरिन बार बार जाना पड़ता है, यूरिन में यूरिन नहीं रुकता है, और यूरिन रात को नींद खुल जाता है, इसलिए बॉडी वीकनेस होता है, प्रोस्टेट भी बन जाता है वैसा वैसा वही तो।
0: जी
1: वैसा लोगों को मैं बहुत लोगों को दे दिया था, प्रोस्टेट भी ठीक हो गया, और नॉर्मली भी प्रोस्टेट नहीं तो भी नॉर्मल लोगों को भी यूरिन नहीं रुकता है वैसा ज्यादा, उसको लिए भी कर दिया। ये जेंट्स को होता है, लेडीज को भी होता है।
0: ओके जी,
1: ये पता नहीं पड़ता है, ये शुगर से एंड एज से वैसा होता है, उसके लिए मैं किया था, बहुत लोगों को कर दिया था। शुगर भी बहुत लोगों को कंट्रोल में आ गया, इंग्लिश दवा सारा छोड़कर, हमारा में इंजेक्शन छोड़कर, हमारा हेरबल से वो कंट्रोल में भी आ गया। एक दो लोग नहीं है, बहुत लोगों को वैसा किया, वैसा मैं कर रहा है ऊपर वाला के आशीर्वाद से। ऑल रिलीजन आ रहा है मेरा पास ज्यादा, हमारा सोच सुन के हमारा मुसलमान भाई लोग बहुत लोग आ रहा है, वो भी ठीक हो रहा है, बहुत लोग आ रहा है बहन जी।
0: क्या बात है गुरु जी, एंड आई एम श्योर कि आपकी दवाइयों से बहुत बहुत बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, और ये उनके कमेंट्स, उनके फीडबैक बताते हैं। तो दोस्तों, अगला नंबर आपका है, टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ, और ब्रैम्पटन और स्कारब्रो दो लोकेशन से सर्व करते हैं आयुर्वेदा एंड हर्ब्स। गुरु जी नंबर नोट कर लें, 4374383 9943743833399। और गुरु जी से बात करें और अपनी हेल्थ आज और अभी से ठीक करनी शुरू कर दें।
1: थैंक
0: यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट जी। और वेल दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का फिर से वेलकम है ऑन CMRFM 101.3। यहाँ पर बता दें, देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स हमारे पास आ चुकी हैं। अगर आप दुनिया भर में कहीं भी जाना चाहते हैं, देओल ट्रैवल में जरूर बात करें। एक स्पेशल फेयर लगा है बिजनेस क्लास का, अगले साल फरवरी से मार्च तक का, टोरंटो से दिल्ली $4,560 में दो बैग्स के साथ। फिर दिल्ली से टोरंटो नवंबर दिसंबर में $780 में वन वे, दिल्ली से टोरंटो नवंबर दिसंबर से जनवरी फरवरी तक $1,450। दो लोकेशन है, इटोपिको एंड ब्रैम्पटन, 9055885100 एंड 9055884200, 5885100 एंड 5884200। मस्ती की रेलगाड़ी पर एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, वापस लौटते हैं तुरंत अगले सेगमेंट के साथ, स्टे ट्यून्ड।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
3: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
5: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: क्या आप अपनी लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं? तो एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के जरिए पाइए अपने जीवन और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की गाइडेंस। चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन अवेलेबल है। कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ पंडित रामकृष्ण आपकी सिचुएशन को समझकर सही गाइडेंस और सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं। अपनी पर्सनल पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस के लिए आज ही कॉल करें पंडित रामकृष्ण 4378820639। That's 4378820639।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
1: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर कैनेडा वाइड। घर हो या बिजनेस, अगर आपको चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, तो आज ही कांटेक्ट करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। टॉप क्वालिटी मटेरियल, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइंस और कंपेटिटिव प्राइसिंग। चाहे बनवाना हो सनरूम या कस्टम कैनोपी, हर सॉल्यूशन मिलता है प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ। अपनी आउटडोर स्पेस को बनाइए और ज्यादा फंक्शनल एंड ब्यूटिफुल। कॉल करें 416-831-4790, 416-831-4790, और विजिट 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन। कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, स्टाइल भी, प्रोटेक्शन भी।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का फिर से शालिनी स्वागत करती है। और अब अगली आवाज हमारे साथ जुड़ने जा रही है, बहुत ही वाइब्रेंट आवाज है, और जो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो आपकी जरूरत के हिसाब से उन्हें जो भी है ट्वीक किया जाता है और आप तक पहुंचाए जाते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। और कई इन्वेस्टमेंट सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे, ये शायद पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाते हैं जब हैशटैग होम्स की टीम जाती है सबसे पहले और आपको देती है एब्सोल्यूट फर्स्ट एक्सेस, चाहे कोई भी जगह हो। सबसे पहले नंबर नोट करें 6479934844। हमारे साथ जुड़ेगी अगली आवाज राहुल कश्यप जी की, जो है ब्रोकर ऑफ रेकर्ड हैशटैग होम्स के साथ। राहुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
4: जी शाह जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स।
3: थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और कल जो आपने हमारे लिसनर्स को ब्रीफिंग करी थी अबाउट द लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स, तो बड़ा मजा आया सुनकर कि कितने अच्छे अच्छे एक्साइटिंग एरियाज में आ रहे हैं। कल आपने बात की थी ब्रैम्पटन की, बोल्टन की, कैलेडन की, लेकिन यहाँ पर ही सीमित नहीं रह जाता क्योंकि आपका दायरा बहुत बड़ा है, तो आज आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
4: जी बिल्कुल, विल गो विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो हमने कल बात करी थी, जिनकी पहली चीज जो कॉर्नरस्टोन इन ब्रैम्पटन, यू नो वी गॉट अ रिड्यूस्ड प्राइसिंग देयर। फ्री होल टाउन होम्स हैं ये, 3 bedroom, 2.5 वॉशरूम एंड स्टार्टिंग विद 4-car पार्किंग, बिकॉज डबल कार गैराज है और डबल कार पार्किंग है ड्राइवे के ऊपर। एंड दीज वर स्टार्टिंग एट द लॉन्च डे 649,000। Now, oh, wow. We have a $20,000 discount, which last weekend gave us, but we have got extension on it. So we're still working with that offer that we can get that house $629,000 because we're getting the additional $20,000 off the launch price itself. And that's amazing because एक चीज है, ब्रैम्पटन मिसिसागा रोड, मेफील्ड और सैंडलवुड पार्कवे के बीच में ये जो पूरा नेबरहुड है, वहां पे आपकी कॉस्को भी है, यू हैव अ फुल प्लाजा इन देयर, प्लस 413 की जो हाईवे की एक्सटेंशन वहां पे आएगी, और साथ ही साथ माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन का एक्सेस जस्ट मिनट्स अवे फ्रॉम देयर, प्लस यू हैव एक्सेस टू द हाईवे। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू पुट एवरीथिंग टुगेदर, इट जस्ट चेक्स ऑफ द लिस्ट। Starting price, $629,990. If you look at the price, that is cheaper than the resale market right now, especially for a 4-car parking home. और हमें पता है ब्रैम्पटन में ये इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज यू नो यूजुअली यू गेट वन कार गैराज एंड वन कार ऑन द ड्राइववे स्पेशली फॉर अ टाउनहाउस एंड कई बार लोगों के पास दो नहीं तीन गाड़ियां भी होती हैं तो तीसरी गाड़ी कहां लगाएंगे लाइक इफ यू पुट इट ऑन द स्ट्रीट यू नो आफ्टर 14 डेज there's going to be a ticket on it. So, yeah. And the city of Brampton is known, you know, we have bylaw That's officers right. going to go by, start ticketing everybody. So, we know there's a problem there. But now, the solution is, if you are getting a home where it allows you four-car parking, it checks off that list for you, right? So, that is the good, good part about it. Plus, first-time home buyer, clearly, you bought a cheap opportunity here because it's only 10% down. And what we do, you have to pay 10% of the price in 1 year. So, it allows you... time to, you know, collect your down payment and then make that payment over to the builder.
3: Yeah.
4: Your closing has project key, that's not until first quarter or going into the second quarter of 2028. So it's not like you have to buy it, so 3 months or 4 months after you have possession. Or you have to be ready by 2027. No, it still gives you more time. You have until, you know, Q1 of 2028 at least to get yourself ready to get the mortgage and everything set up for yourself. Now, other things, yeah. Shani ji, jo humne kal bhi baat kari thi, agar hum resale ki baat karein, to resale market is down by 9% year over year if you compare September 2026 versus September 2025. Uska reason yahi hai ki market mein jo abhi ghar aaye hue hain, unki pricing kai pre-construction gharon se zyada hai. So that's why a lot of buyers are preferring to go into pre-construction side of things. और बिकॉज वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं उसका फायदा एक ही है कि आपको 13% का जो HST का रिबेट मिल रहा है दैट इज हेल्पिंग यू ब्रिंग योर प्राइस बिलो द रीसेल मार्केट राइट एंड यू आर गेटिंग दैट एडवांटेज प्लस ब्रांड न्यू होम है गारंटी वारंटी है आपको अप्लायंसेज मिल रहे हैं अपग्रेड मिल रहे हैं बिल्डर की तरफ से सो यूर इट्स काइंड ऑफ चेक्स ऑफ एवरीथिंग फॉर यू प्लस यू कैन डू योर ओन फिनिशिंग आप डिजाइन सेंटर में जाके खुद की फिनिशिंग कलर पैकेजेस पे कर सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ यू नो यू वांट द काउंटर टॉप व्हाट कलर ऑफ किचन यू वांट द कैबिनेट्स एवरीथिंग यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम एवरी सिंगल आइटम इन द हाउस सो दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज साथ ही साथ इट्स नॉट ओनली ब्रैम्पटन वी हैव अमेजिंग डील्स इन कैलेडन बोल्टन कमिंग अप पिकरिंग एजैक्स सो वी हैव एवरी सिंगल लोकेशन दैट यू कैन थिंक अबाउट कैलेडन के अंदर वी हैव अगेन फ्री होल टाउन होम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 596,000 Less than 600,000. Again, 10% deposit. But if you're first time home buyer or investor, now when you're looking at below 600,000, three bedrooms, two and a half washrooms, freehold, it just should check off literally everything on your bucket list, right? Because if you're just trying to get your foot in the door, this is a great opportunity. A Bolton ke andar bhi jo project agle hafte launch hone wala hai, which is called North Hill by Solmar. This is coming on Mount Hope Road and Columbia Way, right at the border of Caledon and Bolton. But in Bolton, this is one of the first community that's coming up after a very long time. And here, three-hole traditional townhomes will start from 789,000. Double-car garage detached homes will start from 999,000. Now, once again, do your homework, look at the resale market, see what's selling in the neighborhood, compare the pricing, and then make a decision. And we have so many clients who are already reaching out because they are coming in from Beaton, New Tecumseh, Barrie's, you know, even from the Vaughan side of things because people want to move closer because the pricing is cheaper. You try to look at something in Vaughan right now, you will not get a townhouse for less than $900,000.
3: सही बात है बिल्कुल इट्स अ हॉट एरिया
4: यू आर लिटरली सेविंग अबाउट ओवर $100,000 इफ यू जस्ट कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स ऑन टॉप ऑफ दैट यू जस्ट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स ड्राइव व्हाई वुडंट यू टेक द अपॉर्चुनिटी दैट्स व्हाट द क्वेश्चन बिकम्स डू योर होमवर्क कंपेयर एंड देन डिसाइड और सिमिलर सिचुएशन होने वाली है एजैक्स के अंदर शामिल जी विदिन अ वीक वी आर लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट इन एजैक्स जहां पे फ्री होल डाउन होम्स will be starting in the 600,000 range. Detached single car garage will be starting in the $800,000 range. And this is going to be cheaper than the resale market for them for Ajax. And I can tell you this, that project is going to sell out. The first release is going to sell out within the first weekend because of the pricing. And we have comparables. We can show you the MLS listings that sold recently in the similar area to give you apples to apples comparisons. आप खुद देख लें कि अगर आप टाउन हाउस लेना चाहते हैं स्क्वायर फुटेज के हिसाब से बेडरूम्स के हिसाब से वो रीसेल में कितने का बिका है इन द लास्ट 30-60 डेज वर्सेस व्हाट द बिल्डर इज गोना गिव यू ऑन द लॉन्च डे एंड देन मेक योर डिसीजन पीपल कीप टॉकिंग अबाउट इट दिस मार्केट इज हार्ड यस इट्स हार्ड बट व्हेन यू आर गेटिंग डील्स देन इट बिकम्स हार्डर फॉर यू टू मूव ऑन फ्रॉम द डील्स So you got to take your opportunity now. We have so many good products. We have opportunities. All you have to do is give us a call, get in touch with our team. We'll sit down with you. We'll go over your requirements. We make sure that we connect you with the right product, right price point that suits your requirements and your needs.
3: Very nice. Kya baat hai. So, Rahul ji, bahut achhi baat aapne kahi requirements aur need ke hisab se apna investment aap chuniye. Shayad ek investment aapke liye acha ho, kisi aur ke liye nahi, and vice versa. To wo jo guidance hai, aapko puri guidance milegi hashtag se, aur isi tarah har taraf ye jo naam hai, aur lawyers ka review karana hai, wo lawyers bhi hain jo ki डॉक्यूमेंट है उसमें ही रिव्यू करके आपको तसल्ली दिलाते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए किस तरह का हो सकता है. तो 6479934844 पर दोस्तों राइट अवे कॉल कीजिए और ज्यादा जानकारी हासिल करें. 6479934844. राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. फिर आपसे जुड़ेंगे. ऑल द बेस्ट.
4: थैंक यू सो मच जी.
3: जी, टेक केयर. और वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं. और कहते हैं कि हर फैमिली में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसकी एंट्री होते ही ड्रामा शुरू हो जाता है, और अगर प्यार की हो तो फिर ड्रामा भी डबल और एंटरटेनमेंट भी डबल. और ये प्यारा सा ड्रामा जो है स्पॉन्सर किया जा रहा है यश विंडोज एंड डोर्स के सौजन्य से. और अगर आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश विंडोज एंड डोर्स, तो आप यश विंडोज एंड डोर्स से जरूर इंस्टॉल कराएं अपने घर में, ऑफिस में. रीजनेबल प्राइस सबसे बड़ी बात है, लेकिन मिलता आपको बहुत कुछ है. बाकी जगह जो अपग्रेड में मिलता है वो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिलता है. तो पूरे ओंटारियो में सर्विसेज देते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद की इंस्टॉलेशन है, और स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एफिशिएंसी सब कुछ मिलती है. और अब तो फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है. आप अगर चाहते हैं एक ग्रोइंग टीम का हिस्सा बनना तो कॉल कीजिएगा 416-732-3600. यश विंडोज एंड डोर्स, 416-732-3600. कहते हैं कि थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी शरारत होने दीजिए. थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी शरारत होने दीजिए. जिंदगी में थोड़ा हंसी मजाक होने दीजिए. हर बात को इतना सीरियस क्यों लेना. कभी कभी अपने दिल को भी बेबाक होने दीजिए.

0: हम बात कर रहे थे जिंदगी में ड्रामा की, जिंदगी में नोकझोंक की, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन एक ऐसा पर कोई गिमिक नहीं होते, कोई भी ड्रामा नहीं होता, वहां पर आप लोगों के लिए प्यार होता है और डील्स ऐसी होती हैं कि जो पवन मिड्डा जी अपने घर लेकर जाते हैं ना, वही डील्स आपको देते हैं अपना समझकर। सो आइए दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम करते हैं पवन मिड्डा जी का फ्रॉम मिड्डा फर्नीचर गैलरी, और अपने इस लॉन्ग वीकेंड को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लॉन्ग बना देते हैं तमाम डील्स के साथ। तो पवन जी हो जाए
1: जी बिल्कुल, मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से 5 लोकेशन से आपकी सेवा कर रहे हैं, और बिल्कुल जो वीकेंड पे, हर वीकेंड हम वैसे हर वीकेंड 3-4 आइटम 4 आइटम हर कैटेगरी की एक आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं, और इस वीक तो थैंक्स गिविंग है और आपका धन्यवाद करना बनता है, और धन्यवाद है आपका कोटि कोटि सभी का, कम्युनिटी का, जो इतना साथ दिया। 1 से 5 स्टोर हुए और हमारी रोटी रोजी आपके प्यार से चल रही है, आपके सहयोग से चल रही है। जैसे मैंने पिछले लिंक में कहा था कि अगर आप पूरे कोई नए घर में मूव हो रहे हैं या आपको पूरी डील बंडल डिस्काउंट चाहिए, नॉट ओनली अगर कोई हाई एंड, जैसे हम उसका लैदर के सोफे बेचते हैं, एशले का रिक्लाइनर, पावर रिक्लाइनर का कंटेनर आया, सिर्फ 12 फैमिली को फायदा मिलेगा क्योंकि हमारा ओवरसोल्ड है पहले ही वो। 1599 का सोफा ओनली है, मैं हाई एंड फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, तो 2 सोफे अगर लेंगे 3100-3200 के बन जाएंगे आपको, वो 36 मंथ्स वाले प्लान में अगर कॉफी टेबल को एक ऐड करी तो आपका वो बन गया $100 per month। और जो मैंने पिछले लिंक में प्लान बोला था कि आपको हाइड्रोलिक वाला स्टोरेज वाला बेड, ड्रेसर, मिरर, एक नाइट टेबल, कैनेडियन मेड सोफा, लव सीट, 2 मॉडल में से एक चॉइस भी आपको दे देंगे, और बेड में भी 2 मॉडल में एक चॉइस आपको दे देंगे, अच्छी मैट्रेस, जो हार्ड मैट्रेस लें, पॉकेट क्वाल लें, फोम वाली लें, मेमोरी फोम वाली लें, 5 तरह की ऑप्शन दे देंगे, मार्बल टेबल, सेंटर स्टोन जिसपे स्क्रैच नहीं लगेगा, हीट पानी किसी से खराब नहीं होगी, चेयरों पे चाय कॉफी गिर जाएगी, दाग नहीं लगेगा, मतलब हम 999 की बेचते हैं, कभी कभी उसे 899 की लगाते हैं, वो 899 की होगी, कॉफी टेबल 199 की, ग्लास की कॉफी टेबल आपको देंगे, कॉम्प्लीमेंट एक फ्री गिफ्ट आपको, जो एशले की, वो भी एशले की ब्रांड नेम रख देंगे आपको, जिसकी वर्थ आपको मतलब वेबसाइट पे दिखा देंगे कि 199 की है वो भी, और आपको $111 per month देने। तो ये कोई गेम नहीं बना रहे, उसका टोटल जो हमारे प्राइसिस का है उसका टोटल ही 36 and above बनेगा, तो जो 111 को डिवाइड करके हमने वो बंडल बनाया है। हाँ, अगर आप कोई स्विच करेंगे, कहेंगे पवन भाई ये हमने ये 1199 वाला बैट नहीं लेना, इसकी जगह 1699 करना है, सोफे की जगह कुछ चेंज करें, हम बहन भाई की तरह हम गेमिक से नहीं बिलीव करते कि नहीं नहीं यही बंडल है, इसमें से कुछ आपको सोफा पसंद है, कुछ और पसंद है, तो बेसिकली वो टोटल हैज टू बी गो मोर देन 3600, तो जो भी 111 के हिसाब से तो या उससे ज्यादा को कोई बनेगा उसको भी बांट के हमने फ्लेक्सी प्लसिंग द्वारा करके दे देंगे। हम चाहते हैं आप एक बार आए, अजमाएं हमें, फिर रिश्ता जो पास होने के बाद जो खुशी आती है ना बंदे को, जैसे कहते हैं ना जब हम अपने मम्मी डैडी के खर्चे पे कर रहे होते हैं तो हमें हो सकता है उतना आनंद ना आता हो, कई बार लगता है कि यार हम डिपेंडेंट है, लेकिन जब पहला सैलरी चेक आता है, इसी तरह जब हम टेस्ट पास कर लेते हैं, हम कोई परीक्षा में हमें मतलब हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, और जब वो आप मेहनत करके पास हो जाते हैं फिर उसकी खुशी अलग है। तो हमें भी चाहते हैं कि आपसे रिश्ता बने, लेकिन रिश्ता इमोशनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, मैं कहूंगा मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, वो इमोशनली तो बनना ही चाहिए, लेकिन एज ए कस्टमर भी आपको लगे कि जो रेडियो पे बोला गया वही वहां पे मिलता है, हमें प्राइस भी ठीक मिली, मैं कॉम्पिटिटिव वर्ड भी कह लूंगा कि हो सकता है किसी किसी आइटम में हम 5% महंगे भी हों।

0: 5 locations to serve you. Our number hai 416-901-2810, 416-901-2810. Thank you, Pavan ji. All the best. Take care.
1: Thank you.
0: दोस्तों 80s का जमाना याद है आपको, चमकदार कपड़े, रंग बिरंगी लाइट्स और डिस्को की ऐसी धुनें कि हर पार्टी में बस एक ही आवाज आती थी, चलो डांस करते हैं। तो आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ, और 1982 का दौर है और फिल्म का नाम है हथकड़ी, और कहते हैं कि खुशियों की धुन पर जरा झूम लिया कीजिए, हर गम को कुछ देर भुला दीजिए करिए, और जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगी, कभी कभी अपने लिए भी जी लिया कीजिए। एंजॉय कीजिए डिस्को स्टेशन, मस्ती की रेलगाड़ी पर।

दोस्तों इसी के साथ शालिनी आप लोगों से इजाजत मांगती है। आशा करती हूँ कि आज आपने इंजॉय किया होगा फिर से मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिए। फॉर ऑल योर एडवर्टाइजिंग नीड्स, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार हो जाइए अपने बिजनेसेस और अपनी सर्विसेज के साथ। शो के बाद हमारा डायरेक्ट नंबर 416-569-7812, 416-569-7812 कर जुड़ेंगे। एक बार फिर से दोपहर के 3 बजे शालिनी को दे इजाजत। नमस्कार।

0: हाँ जी मित्र भाइयों, ये है जैम 101.3 विथ जतिन एंड अमिताभ।
1: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे।
0: काश नाना पाटेकर को हम वापस घर ले आते, खाना खाते, सो जाते, लेकिन नाना पाटेकर जिंदा रहते। बिंदर भाइयों, आप जानते ही है नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे।
2: थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे।
0: न जाने हम कहां होंगे, क्या खूबसूरत डायलॉग नाना पाटेकर का। बिंद्र भाइयों, चेहरे पर सादगी, आंखों में अंगार रखते थे, चेहरे पर सादगी, आंखों में अंगार रखते थे नाना पाटेकर, हर किरदार में जिंदगी का सार रखते थे। नाना पाटेकर को दिल से श्रद्धांजलि। ये है जैम 101.3 विथ जतिन एंड अमिताभ। हम है आपके दोस्त जतिन।

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ये है GTA की साउथ एशियन कम्युनिटी की आवाज जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ डेली 4:05 PM जरा सुनिए तो
4: हाँ जी मेरे भाइयों, ये है जी एम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। हम हैं आपके दोस्त जतिन। कनाडा के लिए खुशखबरी, कनाडा की लेखिका और कवियत्री एन कार्सन को 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति ने उन्हें ऐसी रचनाओं के लिए सम्मानित किया है जिनमें उन्होंने पुराने यूनानी और रोमन साहित्य को आज की जिंदगी, प्यार, रिश्तों और दुख से जोड़ा है। बंदर भाइयों, कार्सन का जन्म 1950 में कनाडा के टोरंटो में हुआ था। उन्होंने प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य की पढ़ाई की। 1981 में उन्होंने इसी विषय पर अपनी डॉक्टरेट की थीसिस प्रकाशित की थी। बंदर भाइयों, उन्होंने एक राक्षस की कहानी को प्यार और हिंसा की कहानी बना दिया। दो चर्चित पुस्तकें भी रही और पिछले 10 साल में 5 महिलाओं को मिला साहित्य नोबेल पुरस्कार। कनाडा की इस विशिष्ट महिला को, वरिष्ठ महिला को, लेखिका और कवियत्री एन कार्सन को जेएम 101.3 और उनके श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई। हम है आपके दोस्त जती।
5: ताजी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, हर तरह की ग्रोसरी आइटम्स और इंडिया से आया आपका मनपसंद सामान मिलेगा अब बेस्ट प्राइसेस पे, क्योंकि आपके अपने शहर में आ गया है अनाज मार्ट। डेली ग्रोसरी हो, चावल, दालें, आटा, देसी घी, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन का बाकी जरूरी सामान, सब कुछ अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी और बढ़िया प्राइसेस पर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आज ही विजिट करें अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड और मेफील्ड रोड का कॉर्नर, 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42A, ब्रैम्पटन, 905-928-8557, अनाज मार्ट।
6: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
7: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
8: घर खरीदना हो, बेचना हो या इन्वेस्टमेंट का हो प्लान, कंफ्यूजन छोड़िए और जाने माने रियल्टी एक्सपर्ट से डायरेक्टली पूछिए अपना कोई भी सवाल। सुनिए रियल एस्टेट पर चर्चा विद PK सभरवाल एवरी वेंसडे शाम 4:25 पर, सिर्फ जैम 101.3 पर। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल विद PK सभरवाल।
9: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
10: उसके पैड का बटन ढूंढ रहे हैं, रेडियो पर तो वो होता ही नहीं।
11: योर मैसेज हर्ड कंप्लीटली बाय कस्टमर्स अक्रॉस द GTA।

0: बंदर भाइयों, कर्ज से भागना नहीं, कर्ज को भगाना है। और इसी सोच के साथ लोगों को डेट फ्री लिविंग की ओर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑल डेट सॉल्यूशंस के सिद्दीक जी। अगर कर्ज का बोझ बढ़ता है, पेमेंट्स संभालना मुश्किल हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करे, तो सही जानकारी और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और ये मार्गदर्शन और बेहतरीन सेवाएं देते हैं ऑल डेट सॉल्यूशंस के कर्ता धर्ता मोहम्मद सिद्दीक जी। इनकी हेड ऑफिस है 155 रेक्सडेल बुलवर्ड सूट 704 इन इटोबिको। मल्टीपल लोकेशन से आपकी सेवा में, जरूर कॉल कीजिएगा 416-671-0577 तहे दिल से सिद्दीक जी का स्वागत करते हैं। और सिद्दीक जी आपसे विनती करते हैं कि आज हमारे श्रोताओं को किस बात पर एजुकेट करना चाहेंगे, प्लीज बताएं। ओवर टू यू सर।
1: जतन भाई, अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई कर्जों का इश्यू है, चाहे वो पर्सनल कर्जे हैं, चाहे वो बिजनेस के कर्जे हैं, चाहे वो छोटे कर्जे हैं या कर्जे ज्यादा, उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरा मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, अपना पैसा इंटरेस्ट में ज़ाया ना करें। कॉल करके चाहे फ़ोन पे इंफॉर्मेशन ले लें या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है, चाहे एक दफ़ा आएँ, 10 बार आएँ, कुछ आपने पे नहीं करना। इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद डिसाइड करें, क्योंकि मैंने पिछले 26-27 सालों में ये देखा है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो मेरे पास उस वक्त आते हैं जब वो काफी सारा पैसा इंटरेस्ट में जाया कर चुके होते हैं। और जाया इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उनके पास बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन होती है या बिल्कुल सिरे से इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन लें, ऑप्शन एक्सप्लोर करें और उसके बाद घर जाके आप डिसाइड कर सकते हैं। नंबर है 416-671-0577 पे कॉल करके चाहे फोन इन्फॉर्मेशन ले लें। कर्जा चाहे आप पे क्रेडिट कार्ड का है, लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, पर्सनल लोन्स हैं, पेडे लोन्स हैं, बिजनेस के लोन हैं, या कोई इनकम टैक्स का मामला है सीआरए के साथ पर्सनल, या बिजनेस का जीएसटी पेर और रही सब्सिडी आउटस्टैंडिंग है, या कोई हेल्थ केयर सिविल लोन लिया था पे नहीं कर सके, या कोई कार ट्रक या ट्रेलर फाइनेंस किए थे पेमेंट नहीं कर सके उठा के ले गए, या पेमेंट नहीं कर सकते वापस करना चाहते हैं, तो ये सारे कर्जे आपके सेटल हो सकते हैं। उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम रिलीफ आपको मिल सके वो मिले और बाकी छोटी छोटी किस्तों में आप जो इजीली अफोर्ड कर सके वो मंथली पेमेंट आप करें। नंबर है 416-671-0577। टॉल फ्री नंबर है 1-855-671-0577। और एक चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ कि अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूँगा तो मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे वादा करूँगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा। और अगर इसमें आपका क्रेडिट ख़राब होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखें क्रेडिट को दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है, उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम में और आपको क्रेडिट भी वापस मिल सकता है। और आपके एसेट चाहे आपके नाम पे घर है, गाड़ियां हैं, आरएसपी, आरएसपी, बिजनेसेस, ये तमाम चीज़ें एज इट इज आपके पास रहेंगी और बड़ी आसानी से आप डेट फ्री भी हो जाएंगे। उसके लिए नंबर है 416-671-0577 पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या मेरी टोबी को लोकेशन पे वॉक इन कर सकते हैं, स्कारब्रो ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या ब्रैम्पटन ऑफिस में भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर 416-671-0577। थैंक यू।
0: वाह बेंद्र भाइयों, कर्जे से मुस्कुराते हुए बाहर आना हो तो एक बार कॉल जरूर कीजिएगा 416-671-0577 टोल फ्री नंबर 1-855-671-0577 वेबसाइट alldebtsolutions.ca। बेनर भाइयों, सिद्दीक जी जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट हमेशा पूरा करते हैं। और फ्री कंसल्टेशन, एक बार बात और मुलाकात तो बनती ही है। 416-671-0577 सिद्दीक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू जतन भाई।
2: अगर फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में है आपका इंटरेस्ट लेकिन आपको पता नहीं शुरुआत कैसे करें या इसमें सक्सेसफुल कैसे हूँ, तो कॉल कीजिए कुमार 9059294881। कुमार आपको अपने कई सालों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे एक्सपर्टली यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी आप इजिली 100 से $300 बना पाएंगे हर दिन। बस चाहिए एक फास्ट कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, टाइम, डेडिकेशन और कुमार के एक्सपर्ट गाइडेंस। टू बिकम एन एक्सपर्ट ट्रेडर कॉल 9059294881 or visit KumarTradesSolutions.com.

नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले, अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। कॉल 9059288 8557 अनाज मार्ट।
4: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
5: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: It's time for our special weekly segment, Mortgage Masterclass with Ayaz.
1: Namaskar, adab aur sat sri akal. You are jamming with Jam 101.3 aur main hoon Amitabh. और अब वक्त हो चला है हमारे बड़े ही पॉपुलर वीकली सेगमेंट का, जिसका नाम है मॉर्गेज मास्टर क्लास विद अयाज। चाहे आप पहला घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, मॉर्गेज रिन्यू करना हो, रीफाइनेंसिंग के ऑप्शंस देख रहे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में सोच रहे हो, अगले 20 मिनट आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। वो ऐसे कि हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं श्री अयाज भांजी, कनाडा के लीडिंग मॉर्गेज प्रोफेशनल्स में से एक और 3 दशकों से कम्युनिटी के ट्रस्टेड मॉर्गेज एडवाइजर, जो लेटेस्ट मार्केट डेवलपमेंट्स को सिंपल इंग्लिश में हमें समझाते हैं और आपके लाइफ क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। तो अगर आपके पास कोई मॉर्गेज रिलेटेड सवाल है, फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055, दैट्स 593-0055। अयाज जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे टिल 4:50 PM, सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू गेट अ प्रूवन एक्सपर्ट्स एडवाइस एंड टिप्स एट नो कॉस्ट और ऑब्लिगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉर्गेज मास्टर क्लास विद अयाज। अयाज जी, जैम 101.3 पर आपका हार्दिक स्वागत है।
2: Thank you so much, Amitabh. A pleasure to be on. I always feel good coming on, and thank you for giving me the chance.
1: The pleasure, as always, is entirely ours, Ayaz ji. And yes, before we go on to mortgage updates and everything, I would like to congratulate you and all of us listening to the show, because a Canadian has won a Nobel Prize for Literature. Our very own Anne Carson has been nominated, and she has won the Nobel Prize for Literature. So that's
2: just
1: the good
2: one
1: news.
2: Second.
1: Hello, Ayaz ji, can you hear us?
2: Sorry, go ahead.
1: Yeah, Ayaz ji, I was just starting that. Let's start the program with a bit of a good news coming out of Canada, which is a Canadian, Anne Carson, has won the Nobel Prize for Literature.
2: Yes. So I read that. That's good news. That's good news, and you know, that's a testament to the intelligence of Canadians. And I think tomorrow is another big day.
1: Yes.
2: Because tomorrow is the announcement of the Nobel Peace Prize.
1: Yes.
2: Right. So we know one person that's really expecting to get it.
1: Yes.
2: Though I can break the news, I'm sure he's not going to get it.
1: But we know that he's going to be definitely up at 3 a.m. and looking at what the Swedish
2: Absolutely.
1: Academy is going to say. And I'm sure he'll have a lot to say if he doesn't win it this time as well. Hello. Hello, Ayaz ji, are you there? I am not able to hear Ayaz ji. Hello. Let's take a quick break. Hello, Ayaz ji, are you able to hear us? Let's take a quick break.

आज का शो क्लोज करते हुए एक सलाम हम सभी के चहेते कलाकार श्री नाना पाटेकर को, उनके बेमिसाल अधिकारी और अनफॉरगेटेबल अंदाज के नाम। नाना की इंटेंसिटी तो हम सभी को याद रहेगी, लेकिन आज याद करते हैं उनका मस्ती भरा अंदाज। पेश है उनकी सुपरहिट फिल्म क्रांतिवीर से एक बैंगर गाना लव रैप। थैंक यू नाना फॉर सो मेनी यादगार परफॉर्मेंसेज, यू विल बी मिस्ड। मैं हूं अमिताभ, कल फिर मिलेंगे ठीक 4 बजे ओनली ऑन जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। जरा सुनिए तो।

अगेन ऑन द डे जहाँ लाइफ में अस्तित्व वाला गेम चालू है बड़े बड़े स्तर पे। अब देखो ना, सूरज बादल खेल रहे हैं आज अपने अपने ही लेवल पे उधर आसमान में। कभी बादल आज जीते जा रहे हैं तो कभी सूरज दादा चमक रहे हैं। नाउ चाओ और ब्रेडफुट वो खेल रहे हैं मेरल इलेक्शन ग्राउंड पे। आज बाइक लेन रिमूवल पर बयानबाजी चालू है।

एंड देन इलॉन मस्क खेल रहे हैं ट्विटर पर मतलब अपने एक्स पर बाय कमेंटिंग ऑन कनाडा की सेपरेटिज्म कॉल्स, जिस पर हमारे पीएम ने तो भाई कह दिया है कि कनाडा की बात कैनेडियंस डिसाइड करेंगे, आप कौन? उधर भारत में खेल रही है ऑपोजिशन सड़क पर फिर से इस्तीफा दो इस्तीफा दो गेम। इस बार मांगा है ज्ञानेश कुमार जी का इस्तीफा। वो बात और है कि कुछ जुड़ गए हैं साथ सिमिलर विचारधारा वाले लोग, बाकी बहुत से कह रहे हैं कि इसमें नहीं कोई जनता के हित की बात, ये क्यों फिर से यही सब कर रहे हैं डिमांड। सौंदर्य जिंदगी का खेल का मैदान जो है ऐसा दिखता है कभी कभी कि इस पे अलग ही लेवल पे एक स्पोर्ट चल रहा है, पर जो देश के हित में खेले या लोगों के हित में वही सच्चा खिलाड़ी होता है ना। वाली नोट, दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर से कि चाहे आप खिलाड़ी हैं कभी कभी या कभी कभी सिर्फ खेल तमाशा देखने वाले या ताली बजाने वाले, एक चीज का रखें ध्यान कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कभी ना भूलें, हमारे देश हमारे लोग और जो हमारे लिए हो वो याद रखना वो जरूरी है ना।

ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाएं, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज। बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन। प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे। अभी कॉल करें 6472220 94, 6472220 94।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: सिटी हॉल विच ब्रेड रेडफोर्ड ने तुहाडा टीटीसी किराया वधाया अते वार वार सर्विस विच कटौती कीती। ओदों भी जदों उन्हां ने कहा सी कि ओ अजेहा नहीं करनगे, ओ अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उसे तरह जिवें उन्हां ने सस्ते करां, किराया कंट्रोल, पुलिसिंग अते बाइक लेना दे मामले विच कीता। ब्रेडफोर्ड कहंदे कुछ होर हन अते करदे कुछ होर, क्योंकि चोणां जित्तण लई ओ कुछ भी कह सकते हन। ओ इदां दे ही हन कि तुसीं सचमुच उन्हां ते भरोसा कर सकदे हो। अपने घर दे किराए लई, अपने टीटीसी किराए लई, अपनी सुरक्षा लई 26 अक्टूबर नूं फैसला तुहाडा है। Authorized by the Olivia Chow Campaign.

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: Let's turn it up.
2: Let's kick it up.

0: टीनेजर हो या टू स्टेट्स, फिल्में तो दोनों ही हैं हमारी फेवरेट, और दोनों को ही लिखने वाले चेतन भगत से होंगी आपकी भेंट। फिल्म स्टोरीज इंस्पिरेशन सब पर करेंगे वो लाइव कॉन्वर्सेशन एट क्लासिक लीजेंड्स इंडियन फिल्म फेस्टिवल। सिनेमा से है प्यार तो इससे आप ना कर पाएंगे इनकार। फॉर डिटेल्स विजिट mycliff.in।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
0: That's the number Aisha Munawwar ji ko call karne ke liye 416-428-2165। Is number pe call karenge to aapki karze se related jo bhi samasyaen hain fatafat fur ho jayengi। Well, call karein, par jab tak aap karte hain call, ek quick si mulaqat main kara deti hu yahi par with Aisha Munawwar। Aisha ji, welcome and over to you।
3: Thank you very much for having me on air. I'm Aisha Munawwar. I'm offering debt solutions since last 25 years to our community. और बेताशा हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अब डेट फ्री हो चुके हुए हैं और हंसी खुशी जो है वो अपनी लाइफ और अपने बिजनेसेस जो हैं उसको रन कर रहे हैं। तो हम कंज्यूमर प्रपोजल्स की सर्विसेज ऑफर करते हैं, बैंकरप्सीज की भी सर्विसेज ऑफर करते हैं, इसके अलावा क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, लमसम प्रपोजल्स, अगर किसी का प्रपोजल्स टूट गए हैं तो उसके लिए भी आप एडवाइस के लिए कॉल कर सकते हैं। सो वी कैन एडवाइस यू कि क्या आपकी ऑप्शंस हैं। आपके एसेट्स जो हैं हम कोशिश करते हैं प्रोटेक्टेड रहें, इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स बन जाएँ और लीगल एक्शन और कलेक्शन जो हैं वो रुक जाएँ। All information is being kept confidential because हम आप ही की कम्यूनिटी से हैं और मैं फुली अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन इट्स नॉट ईजी टू डिस्कस विद एवरीबडी। और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप हर एक से ये इन्फॉर्मेशन लें और गलत किस्म की एडवाइस जो है वो ले लें और बाद में उसका नुकसान हो आपको। तो ऑलवेज यू नो कंसल्ट द प्रोफेशनल्स, सो वी आर प्रोफेशनल्स। और उसमें यह है कि आपको राइट एडवाइस प्रोवाइड की जाती दैट सूट्स यू द बेस्ट। जरूरी नहीं है कि अगर हमने आपके एक फ्रेंड को कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उसी सर्विस को हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे या वो आपको सूट करती है। फर्स्ट वी हैव टू रिव्यू एंड सी आपके लिए क्या बेस्ट है, आपने किस तरह से इसमें से निकलना है, आपने फ्यूचर में किस तरह से दोबारा एस्टैब्लिश होना है और किस तरह से दोबारा क्रेडिट आपने जो है वो एस्टैब्लिश करना है, किस तरह एसेट्स प्रोटेक्ट करने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फर्स्ट कंसल्टेशन में प्रोवाइड करते हैं। आई टोटली एक्नॉलेज एंड ऑनर दिस थिंग दैट ऑल आवर क्लाइंट्स जो हमें कॉल करते हैं, किसी भी सोर्स से हमें कॉल कर रहे हों, चाहे वो दोस्तों ने रेफर की हों, चाहे एडवर्टीजमेंट रेडियो की हो, न्यूज़पेपर की हो, जहां से भी वो कॉल करते हैं, दे प्रेफर टू टॉक टू मी पर्सनली एंड आई हैव टू लेट यू नो कि हमारे ऑफिस से कोई मेरा ऑफिस कलीग मेरे बिहाफ पे अपॉइंटमेंट मेरी अपॉइंटमेंट्स नहीं लेता, मैं खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स की टेक केयर करती हूं। तो अगर आप मुझे सेल नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दें, अगर आप देखते हैं कि फोन मेरा बिजी आ रहा है तो यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड वी विल स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, ताकि आराम से कंफर्टेबली टाइम दे के हम आपकी सिचुएशन को डिस्कस करें और सोल्यूशंस को वर्क out karein and one call will make a difference to your life, that I guarantee. So my phone number is 416-428-2165. Again, it's 416-428-2165. Once you will call, that call will make a difference to your life. Thank you.
0: थैंक यू आयशा जी, थैंक यू सो मच। वेल, ये थी आयशा मुनव्वर जी हमारे साथ। 416-428-2165 उनका नंबर है। एज आई सेड, अगर अपनी जिंदगी में कर्जे में आप डूबते चले जा रहे हैं या लग रहा है कि शायद आ जाएं, तो भाई फटाफट टाइमली एक्शन लें और उस समस्या से बाहर निकल जाएं। उनको कॉल कर लें, लंबा अनुभव है और अपनी जिंदगी के लिए खुशियों का रीसेट बटन आप दबा सकते हैं वंस यू कॉल हर। 416-428-2165।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: सोचो अगर कथक और रॉक में हो जाए संगम तो क्या होगा बन जाएगा कथक रॉकर्स सेलिब्रिटी परफॉर्मर कोरियोग्राफर कुमार शर्मा इज गोइंग टू परफॉर्म लाइव एट कैनेडा दिवाली राजमटास ऑन अक्टूबर 9, 10, 11 एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर डोंट फॉरगेट टू विटनेस द मैजिकल फ्यूजन ऑफ रिदम कल्चर एंड रॉक फॉर डिटेल्स विजिट कैनेडा दिवाली.ca

0: सात से आठ तक बनाओ दिवाली ब्रांड्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: अब फायदा उठाएं अक्टूबर के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 5 years वेरिएबल 3.45%, which is prime minus 1. 3 years fixed 4.29%. 5 years fixed 4.39%. साथ ही हॉट हॉट कैशबैक भी अप टू $5,600 और एक गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा अप टू $1,500. कॉल अमित खुराना नाउ एट 647-341-2785, 647-341-2785 और विजिट अमित खुराना.ca

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

0: आप हो जाए तैयार फॉर द 14th एडिशन ऑफ कैनेडा दिवाली राजमटर्स, जहां सेलिब्रिटी लाइनअप में होंगी इस साल रिचा शर्मा परफॉर्मिंग लाइव हर सुपरहिट सॉन्ग्स इन हर दमदार आवाज एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर, अक्टूबर 9, 10, 11। कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। फॉर डिटेल्स विजिट canadadiwali.com।
1: घर कहीं भी लेना हो या

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Get smart with Sarab Sabarwal on Filmi Nukkad. वेल ट्यूसडे तो आज नहीं है पर जो ट्यूसडे को आपने मिस किया इस वीक मिस नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ सबरवाल जी फ्रॉम टीम सबरवाल. मुझे पता है ट्यूसडे को आपको रहा था उनका इंतजार पर ये देखिए कि आज कुछ बोनस में भी होंगी बात. ट्यूसडे को कई बार हो सकता है हम सिर्फ एक या दो बार पे बात करते, आज हमारे पास और भी बातें इकट्ठी हो चुकी हैं आपको बताने के लिए, उनका एनालिसिस, उनकी क्या टेक है और जिससे कि हम सभी अगर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं दूर दराज से या पास पास से तो कैसे उससे हम कैसे अपनी लाइफ में उसको ले सकते हैं. तो सौरभ जी से बात करने का नंबर आफ्टर दिस सेगमेंट रहता है 647-864-8844 पर ड्यूरिंग दिस सेगमेंट स्टूडियो का नंबर 416-593-0055.
4: सौरभ जी वेलकम. जी थैंक यू वेरी मच स्वाति जी. डिफरेंट बीइंग ऑन एयर ऑन अ थर्सडे.
3: वो भी लॉन्ग वीकेंड के पास है जब हम.
4: जी बिल्कुल, मगर अ लॉट टू टॉक अबाउट. बहुत सारी डेवलपमेंट हैं, बहुत सारी न्यूज है, अपडेट्स हैं. And lot to discuss today.
3: तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि what is your take on this telco thing? Layoffs जो हुए हैं, संडे से कह रहे हैं कि ये take into effect में आ जाएंगे और पहली बार हुए हैं ये telco के job cuts. ये भी कहा जा रहा है ऑटवा शायद इस telco को court में ले जाए. आपका इस पे क्या take है और आप इसको कैसे देखते हैं in terms of as a layman?
4: देखिए एट द एंड ऑफ द डे जॉब कट इज अ जॉब कट, मगर हाउ दिस थिंग हैज शेप्ड एंड इज शेपिंग इज वेरी मेसी एंड इट्स जस्ट नॉट वेरी अनफॉर्चुनेट. क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक 2024 में जो क्लीवलैंड क्लिफ्स करके जो कंपनी है दैट एंडेड अप बाइंग स्टेल्को, there were some agreement that they're not going to lay off the workers and stuff. But the way the market is, the way the environment is, bola ja raha hai ki, this is a cost-cutting precautionary step. But problem kya padti hai ki, it's obviously going to move ahead. I think, if I'm not wrong, the first 90 workers have already received their notices. But in this environment, this begs the question ki Canadian manufacturing jobs risk pe hain aur zarur hain, and the government needs to act up tough in these times to make sure hamare jitne bhi manufacturing jobs hain, they are secure. Kyunki overall environment is not the best, chahe wo manufacturing ho, chahe wo servicing ho. But us as a layman, us as citizens of this country, we need somebody to step up for us to make sure, this is not becoming more and more common. Kyunki, something that was promised, it can be a very easily become a very messy legal battle, but at the end of the day, it's हम काफी बार ये भी डिस्कस कर चुके हैं, it's a domino effect. Once the jobs are laid off, once jobs are gone, people are workers are laid off, that affects everything in the neighborhood. आपकी mortgage, आपका day to day living expenses, groceries, gas, and all that. So at the end of the day, the common man is the one who's taking the most amount of burden. But let's see kya hota hai in the coming days, weeks, kyunki this is something very serious, and it's a lot of jobs. It's 500 jobs we are talking about, and US ke jo saaj jo terrorist ka jo war chal raha hai, it's a direct impact.
3: Obviously, it's owned by US-based Cleveland Cliffs, right? और मैं ये भी पढ़ रही थी कहीं कि फेड सरकार जो है हमारी वो इसलिए भी नाराज है क्योंकि कमिट किया था इस टेलको ने 20 जॉब्स जब उन्होंने एक्वायर किया था 2024 में, तो कमिटमेंट से अपने कहते हैं ना प्रॉमिस ब्रेक करने वाली बात हो जाती
4: है। बट यू सी देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये सारी हाई स्कूल की बातें हैं, प्लेग्राउंड वाली बातें हैं कि आपने हमें पिंकी प्रॉमिस किया था, आपने
3: बिल्कुल ठीक बात है,
4: यू नो व्हाट आई मीन। तो जस्ट इन दिस डे एंड एज आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि आपने मेरे को ये कहा था इसलिए हम आपसे नाराज हैं। So everything is very legal, especially when it comes to business decisions, something like this. It comes down to what kind of agreement our government had with them the company had with the U.S. counterpart. So I don't think we live in a world where word of, you know, ek muh se boli hui cheez jaise bolte na, I think zuban dena it does not apply anymore.
3: Zuban dene ki koi ki baat ki zuban ki kimat nahi rahegi to is baat ki kya kimat reh gayi wali baat,
4: right? So isliye there was a day and age for that, but definitely not this day and age. Nobody really respects that kind of commitment anymore. तो इसलिए बड़ा क्योंकि बहाने 10 मिल जाते हैं किसी चीज को ना करने के लिए, बट इफ दैट कंपनी इज नॉट गोना यू नो ऑनर इट देन इट्स नथिंग मच कैन बी डन। बट अगेन इट्स लाइक आई सेड इट्स बीइंग सेड दैट दिस इज कॉस्ट कटिंग स्टेप, तो यू कैन रियली डू मच इन दिस एनवायरमेंट especially. So we want to make sure our backyard is secure and only then we can move forward with this. But zuban dene wali baat, I don't think that exists anymore in this day and age.
3: All right. अच्छा ये जो कनाडा की पॉपुलेशन का ग्रोथ है, हम देख रहे हैं कि 2021-22 में था कोई 400,000 और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि उससे नीचे गया है ये।
4: सो यू सी देखिए इन 2025 बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोड टू जस्ट 0.5%। दिस वाज द स्लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इन मोर देन अ सेंचुरी फॉर कनाडा।
3: या
4: नाउ ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी वेरी बिग डील क्योंकि यू नो obviously it has slowed dramatically and jaise hai kyunki immigration targets were reduced, population is aging quite a bit, so overall it does affect us in many many ways. Ab aap Japan ko dekhiye, Japan is in fact I would not even say 10 times worse, it's 25 50 times worse kyunki they have population so such an aging population ki there are towns and villages that are completely empty kyunki sari young population bade prefectures mein jati hain, Tokyo, Kyoto, you know, to the south of Japan as well, Hiroshima aapka, and to the bigger cities. So definitely Canada's population is also slowing down, but you know, this can decline a lot of things for us kyunki hamari jo expenditure hai government ka, it's going to concentrate a lot more on the aged population. So I'm not really satisfied with the fact that we have stopped our immigration targets. हमारी ये पहले भी बात हो चुकी है सेगमेंट्स की, यू नो यस अ कंट्री लाइक कनाडा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इमिग्रेशन पीरियड, लाइक देयर इज नो सेकंड डिस्कशन टू दैट।
3: सो
4: नाउ हाउ वी टारगेट दोस हाउ वी टारगेट पॉपुलेशन ग्रोथ इज शुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन क्राइटेरियाज लाइक व्हाट कैन द इनकमिंग डेमोग्राफिक इनकमिंग पीपल डू फॉर द कंट्री क्योंकि यू नो आने के लिए तो सारे तैयार हैं, यू ओपन द गेट्स एनीबॉडी विल कम, बट क्वालिटी ऑफ पीपल हु कैन एक्चुअली
3: कंट्रीब्यूट
4: टू द इकोनॉमी दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। एंड इन ऑर्डर टू फोकस ऑन क्वालिटी पीपल टू कम इनटू द कंट्री वी वांट टू मेक श्योर वी हैव द राइट इंसेंटिव्स फॉर देम क्योंकि चॉइसेस देखिए बहुत है। We have obviously we're living right next to one of the biggest, if not the biggest market in the world. So that is there. So we want to make sure we are providing them with the best incentives. कि दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड कम हियर एंड मेक कैनेडा योर होम. तो पॉपुलेशन डिक्लाइन इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, क्योंकि इनफैक्ट आई हैव सीन दिस फर्स्ट हैंड आई थिंक 2022 या 23 में जब मैं जापान गया था. Like I was with my friend who actually showed me one of the cities or not cities but towns in southern Japan. He was like, literally infrastructure was there. There were empty hospitals, Swatiji. You will not believe. There were empty hospitals with equipment in there, saying nobody is here because everybody's moved out to the bigger cities. And they have much better, bigger, higher paying jobs near Tokyo and all the other places. So, Bani Banaichi is, it's empty because nobody is there, nobody wants to be there because they're just gone. It's a ghost town. So, Canada's population is definitely slowing down. Age is a huge factor as well. I think as a nation, we need to take the right steps to make sure we get quality immigrants coming to this great nation. Or we want to make sure that in the long run, when we pay our taxes, हमें ये बात चुभे ना कि यार हमें taxes देने पड़ रहे हैं, just to make sure we are giving out too much and gaining very little.
3: Okay. नहीं ये बात ठीक है. और मैं देख रही थी कि मीडियन एज जो है कनाडा की इस वक्त 40.9 इयर्स बताई जा रही है इन 2026, व्हिच इज एक्चुअली कनाडा इज गेटिंग ओल्डर अगेन वाली चीज है. तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा मेरे ख्याल से. इसको री स्ट्रेटेजाइज करना होगा कि कैसे और क्या, क्योंकि होना तो है पर कैसे और क्या, सो दैट इट पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स द नेशन. सौरभ जी, छोटा सा मैं म्यूजिकल ब्रेक लूंगी. आई विल बी बैक विद इन टू मिनट्स. स्टे विद अस, आई हैव मोर क्वेश्चंस. बाकी सौरभ जी का नंबर मैं फिर से यहाँ दे देती हूँ, 6478648844. हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, आप सुनते रहें फिल्मी नुक्कड़.
5: Mixing in the house.

0: Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmi Nukkad. और आज हम बात कर रहे हैं सौरभ सबरवाल जी से फ्रॉम टीम सबरवाल. नंबर है 6478648844. हम बहुत सारी यहाँ पे बातें डिस्कस करते हैं, नॉट जस्ट रियल स्टेट, बट या उन सबसे लाइफ हमारी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होती ही है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं. हमने बात करी पॉपुलेशन की यहाँ पे जो स्लो हो गई है, हमने बात करी स्टेल्कों के ले ऑफ्स की. सौरभ जी ने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया, अपना एक एनालिसिस दिया जो मुझे लगता है कि जब बहुत ही लेमेंस टर्म्स में वो बताते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है समझने के लिए और उसकी बहुत सारी आजू बाजू जो होता है वो भी समझ में आने लगता है और हम अपना एक पर्सपेक्टिव खुद भी बना पाते हैं फिर. बट आगे और बात करनी है क्योंकि हमारे पास और भी सवाल हैं. आप जुड़े रहे हमारे साथ सौरभ जी, वेलकम बैक.
1: जी थैंक यू स्वाति जी.
0: अच्छा सौरभ जी, मैं एक और सवाल पूछना चाह रही थी क्वेबेक के बारे में, क्योंकि हमने देखा है कि इट हैज मूव्ड फ्रॉम ए नेशनलिस्ट बट फेडरलिस्ट गवर्नमेंट टू एन ओपनली प्रो इंडिपेंडेंस टाइप की सरकार. तो अब इस पे सवाल उठ जाता है क्वेबेक के फ्यूचर रिलेशनशिप पे विद कनाडा, अदर प्रोविंसेस एंड कनाडा एज कंट्री बैक ऑन नेशनल एजेंडा. आपका इस पे क्या टेक है?
1: या दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट अ व्हाइल. सिक्सटीज में भी था, आई थिंक मिड इन नाइन्टीज में भी था, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स टू सून टू सी व्हाट इट इज. हाउएवर इट इज कंसर्निंग डेफिनेटली, बट विल आई बी लूजिंग माई स्लीप ओवर दिस? वेल इट कुड हैव बीन वर्स, क्योंकि राइट नाउ इट्स अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट. तो बेसिकली हुआ क्या, ऑब्वियसली यू आर राइट, यू नो द एंटायर पॉलिटिकल शेकअप जो हुआ है इट इज माइंड बॉगलिंग. मगर दैट बीइंग सेड, यू नो व्हाट हैज हैपेंड इज जो सेपरेटिस्ट हैं द पार्टी क्वेबेकवा, इट्स लेड बाय पॉल सेंट पियर. आई थिंक लास्ट नेम इज क्लेमेंटोन इफ आई एम सेइंग इट राइटली.
0: यस क्लेमेंटोन,
1: यू नो ही इज रिटर्न टू पावर ऑब्वियसली एंड बट एक किस्म से गुड थिंग इज इट्स अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट. Now, yeah. Because obviously, jo timing hai, it is not the best, which is why I think it's gaining a lot more momentum. Kyunki Mike Carney is, you know, ek taraf se wo handle kar rahe hain US trade war. Now, this issue comes about the nationalistic, you know, Quebec wanting to separate. Aur aag mein namak dalne ke liye, I think Elon Musk just commented not too long ago ki Quebec ke alawa Alberta should be separating as well. Saskatchewan should do the same. So it is, again, it is getting a very, very messy. It's becoming a very messy situation. And the Americans, honestly, quite honestly, are not playing the nicest game, especially with like these influential people. It's really quite honestly irritating. Like, you know, aap apna ghar sambhalo, let us deal with this and that sort of situation. But what exactly happened in Quebec? Dekhiye, Quebec Parti Quebecois, basically they won 59 of the provinces, I think 128 seats. Falling short of the 64 required, jo majority ke liye chahiye hoti hai. Now what that means is basically government will need to support. So government will need support from other parties to pass important legislation, which is good. Because we don't want a majority government. We don't want Canada to break up. We have enough on our plates right now to deal with. So that's basically what it is. इसलिए एट दिस टाइम गिवन द सिचुएशन वी आर इन ओके सिचुएशन, क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है. बट यस, दैट डज नॉट मीन माइनॉरिटी गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्निंग. नाउ दिस इज वेयर यू नो व्हाट मेक्स दिस इलेक्शन सिग्निफिकेंट. जो पार्टी क्यूबेक का है, दिस इज ए नेशनलिस्ट एंड सेपरेटिस्ट पार्टी, व्हिच इज obviously it has been doing this for, like I said, since the late 60s, if my history is correct. So long term objective inka kya hai, to make Quebec an independent country.
0: Yes.
1: How they're going to do it, how they're going to support it, I have no idea. I really don't think that's going to be feasible. And with this return of government, basically debate over Quebec sovereignty is obviously in the forefront, not the mm-hmm. best of times, jaise maine aapko bola, kyunki we have Ji. other bigger issues to deal with that concern the entire country. Basically, you know, it's important to, and I think, in fact, Mike Carney maybe, he's, again, keep in mind, Mike Carney is not a politician. He's a businessman. And he's very rightfully, I was reading about him roughly 30, 40 minutes ago as well. He said, listen, it's up to Canadians to decide if Quebec is going to be part of Canada or not. But we'll let the Canadians decide as well. And rightfully so, because at the end of the day, people are the ones who decide in a democracy. So the problem now becomes, you know, this does create some sort of economic uncertainty as well. Agar aap thoda sa longer results take that out. Jo businesses hain, investors hain, they generally basically want Swatiji, three things jo humne hamesha discuss kari hain. And this goes for anybody in the country, anywhere in the world. Stability, predictability hoti hai, aur ek confidence, market mein confidence chahiye hota hai. Ye teen cheeze achhi hoti hain for a market to thrive. Jab ye questions aate hain ki yaar province chahta hai, you know, want to break off from the country, political future thoda sa question aata hai. Businesses, obviously, they reconsider their investments. Jo bhi multinationals aayengi, they want to make sure we go to a place where things are stable, where they feel confident. So, agar koi company hai jo 500 million invest karna chahti hai, they don't want to go to a country or go to a province or a state where you know, such things are coming out, such news is coming out. So, they may not invest right away, but they'll wait and see how things go. So in the long run, generally speaking, this doesn't really help us too much. But it is quite shocking. It is literally a political shake up hai, definitely. But I think it's good. The good thing is, if you want to make lemonade out of lemons that we've been provided, it's only a minority government.
0: Okay. ठीक है, तो ये तो हमें इस बहुत सारी चीजें पता चली. मुझे लगता है काफी लोग को पता था, लेकिन कई बार डिटेल्स नहीं पता होती और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता क्या चल रहा है. बट यहाँ पे मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इस वक्त इसको सिर्फ 30% का ही सपोर्ट है, तो यू नो कुछ ज्यादा सपोर्ट है नहीं. एंड उन्होंने खुद भी कह दिया है कि रेफरेंडम जो है, इट विल नॉट हैपन बिफोर 2029. तो जो इसके पक्ष में है भी नहीं, उनके लिए भी अभी और टाइम है चीजों को और अनफोल्ड होते देखने का. थैंक यू सो मच सौरभ जी. जाते जाते कोई रियल स्टेट से रिलेटेड हमें कुछ बताना चाहेंगे, कोई अपडेटेड न्यूज, कुछ अपडेटेड प्रोजेक्ट?
1: जी बिल्कुल, देखिए वी हैव सम रियली रियली नाइस प्रोजेक्ट्स लाइंड अप. It all comes down to ki aap kya dekh rahe hain, what you are qualified for most importantly, and what your budget is. There are high-rise projects in AAA locations where you know, we are getting almost up to 300k discounts from the developers, but that is not including the HST rebates jo government de rahi hai, which is even better, and you know, you're substantially saving a lot of money. So agar aap koi investment dekh rahe hain jo aapko 3-4-5 even 6 saal baad mile, high rise especially, I don't think it is a better time to get into the market. Or if you're looking for something low rise, semis, towns, detached, Oakville mein, GTA mein, outside of the GTA, we have some really good incentives lined up with the developers as well, jo aapko 2-2.5 saal mein bhi mil sakte hain. Again, you see what happens is, jab aap bheed chal ke saath jayenge, then obviously, you know, you face the music, you face the market. But right now, it is a fantastic time to buy.

और फेवरेट बॉलीवुड कैरेक्टर आखिरी पास्ता आ रहे हैं मिसी सागा। जी हाँ, चंकी पांडे होंगे लाइव एट कनाडा दिवाली रास्मताज अक्टूबर 9-11 एट सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसी सागा। ये दिवाली होगी सितारों वाली, कॉमेडी, म्यूजिक, मस्ती और बॉलीवुड का फुल ऑन तड़का लिए। फॉर डिटेल्स विजिट कनाडा दिवाली .ca।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
2: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton.

0: 905-458-6808.
1: इस दिवाली होगी फुल ऑन मस्ती विद पंजाबी बीट्स एंड हैप्पी एनर्जी। कनाडा दिवाली राजमटास में लाइव परफॉर्म करेंगे अपने जस बीट जस्सी एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर अक्टूबर 9, 10, 11। फॉर डिटेल्स विजिट कनाडा दिवाली.ca।

0: सात से आठ तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: गेट ऑन योर फीट विद पेपी नुक्कड़ बीट्स।

Well, that was from Parinita. Novels पर बनने वाली फिल्मों में मुझे लगता है परिनीता हो गई, देवदास हो गई, ये सारी फिल्में ना टॉप पे आती हैं when it comes to Indian films. बाकी मुंशी प्रेमचंद जी की भी कुछ कहानियों पर, नॉवल्स पर फिल्में तो बनी हैं, टीवी सीरियल्स भी बने हैं, आप सबको याद भी होंगे कुछ कुछ तो, जहां वो अपने प्रोज और नॉवल्स के लिए मुझे लगता है स्टोरीज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं. आज की डेट में मैं कितने लोगों से कई बार बात करती हूँ, नॉट एवरीवन इज अवेयर कि पोएट्री भी भाई काफी अच्छी लिखते थे वो. जैसे कि उनकी वो पोएट्री है ना ख्वाहिश वाली मुझे बहुत पसंद है. ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना काफ़ी है, याद है ये. वेल, इसी कविता में कुछ और भी लाइन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है. जैसे कि वो एक लाइन है, जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है ना, सबके साथ होता है. एंड That one, very relatable again. कि कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते. कितना ये सब होता है हम सबके साथ, मतलब कितना सुंदर लिखते थे ना, वेरी रिलेटेबल हम सभी के साथ, हम सबकी जिंदगियों के साथ. और उनकी ईदगाह एक स्टोरी थी, वो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें गरीब दादी का एक छोटा सा पोता होता है, मेले में से अपने लिए खिलौने मिठाई ना लेकर थोड़े से पैसे होते हैं वो दादी के लिए चिमटा ले आता है, क्योंकि रोटी सेकते वक्त उसकी दादी के हाथ जलते थे. प्यार और सेक्रीफाइस खूबसूरती से डिपिक्ट किया उन्होंने. देन उनकी वो कहानी सज्जनता, जो मैं अभी भी कई बार रिलेट कर जाती हूँ उस भावना से, उस भाव से अक्सर, कि कैसे आपकी काइंडनेस, डिसेंसी, पोलाइटनेस, सज्जनता का लोग फायदा उठाने लगते हैं. कुछ उसे अंडर कॉन्फिडेंस का नाम दे देते हैं, कुछ बस हावी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप पोलाइट रहोगे, आप तो अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहोगे. और सज्जनता अक्सर अपनी सज्जनता का प्राइस पे कर जाती है. वेल, फिर भी वो कहते हैं ना, मैं उस फिलॉसफी पर भी कई बार चलती हूँ कि डोंट चेंज योर गुडनेस फॉर अदर्स क्रूकेड बिहेवियर. नहीं, क्योंकि अपना अपना सबका कर. बाकी वेल, आज बात ये मुंशी प्रेमचंद जी की और उनकी कहानियाँ या उनके जो भाव होते हैं कहानियों के पीछे, समाज की बातें होती हैं, इसलिए भी निकल आई क्योंकि मैं देख रही थी उनकी आज पुण्यतिथि है. ट्विटर पर काफ़ी एक्स पर काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, उनकी बुक्स, उनके बारे में बहुत कुछ चल रहा है और पढ़ती जा रही थी मैं, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं वो. वन ऑफ द फर्स्ट ऑथर्स हैं मेरी लाइफ के जिन्हें मैंने पढ़ना शुरू किया बचपन से, और उसके बाद किताबें पढ़नी शुरू कर दी, जिसे आप कहते हैं ना किताबों से प्यार होता चला गया. वो कहते हैं ना, शुरुआत में ही अच्छा साहित्य या ऑथर्स आपको मिल जाए, हाथ लग जाए, तो उनकी संगत जब आपकी बन जाती है तो आगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बुक्स में इंटरेस्ट ना रहे. वेल, ये तो रही इनकी बात. फिलहाल चलते हैं अगले गाने पर. आप बने रहे हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़, CMRO 101.3 FM पर.

क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज. बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन. प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर. बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे. अभी कॉल करें 6472222094, 6472222094.

0: To advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show, call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. अब फायदा उठाएं अक्टूबर के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना. 5 years वेरिएबल 3.45%, विच इज प्राइम माइनस 1, 3 years फिक्स 4.29%, 5 years फिक्स 4.39%. साथ ही हॉट हॉट कैशबैक भी अप टू $5,600 और एक गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा अप टू $1,500. कॉल अमित खुराना नाउ एट 647-341-2785, 647-341-2785 और विजिट अमित खुराना .ca.
1: इसके पीने पे तगिया तुम्हें रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए.
2: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
3: This is the effects of famous Masala Chai by Navigator's Cafe.
2: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
4: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
0: फिल्मों के पीछे का सच और सोच जानना चाहते हैं? Then who better than national and international awards के विनर विवेक अग्निहोत्री of ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स एंड बंगाल फाइल्स. उनसे करें बेबाक बात एट क्लासिक लीजेंड्स इंडियन फिल्म फेस्टिवल. फॉर डिटेल्स विजिट myclif.in.

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: रेट्रो इन मेट्रो, नुक्कड़ क्लासिक।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट मैंगो लीव्स खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल हैं। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: सात से आठ तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353 647-453-5353 And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मॉर्गेज। बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन। प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे। अभी कॉल करें 647-222-0946। म्यूजिक चार्ट्स पर ये है ऑन टॉप, प्राइवेट स्टूडियो से लुक कर इंडिया।

0: टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर पल्लवी जोशी से सीखे एक्टिंग के गुण और जानी सिनेमा की कहानी उनकी जुबानी इन अ स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद हर एट क्लासिक लीजेंड्स इंडियन फिल्म फेस्टिवल. फॉर डिटेल्स विजिट myclip.in.
1: घर कहीं भी लेना हो या

0: MMR 101.3 FM पर यू आर विद स्वाति एंड पायस्विनी. एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं आफ्टर दिस शो एज वेल, तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं. हमारा हैंडल रहता है rjswati_toronto. चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या टिकटॉक या ट्विटर बोले तो एक्स या लिंक्डइन या कोई और, आप हर सोशल मीडिया पे हमसे rjswati_toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं. दैट्स माई हैंडल एट ऑल द सोशल मीडिया प्लेसेस. कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती है, कोई फीडबैक देना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ. कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं. तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग, एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना. फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है. सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए. तो इट्स वेरी ईजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया. तो याद रखें rjswati_toronto. एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर. माई नंबर इज 6478305042. दैट 6478305042.
1: This is something

0: ये जो आपने आवाज सुनी, इससे पहले लगातार जो और दो गाने सुने, कोका सुना, अपने दिल ले गई सुना, ये सारी आवाजों में एक कॉमन बात थी। क्या आपके फेवरेट गाने थे ये? और ये थी आवाज जसवीर जस्सी साहब की। अच्छी बात ये है कि आपके शहर में लाइव परफॉर्म करने आ रहे हैं, इसी वीकेंड पे आप उन्हें लाइव सुन सकते हैं और उनके साथ झूम सकते हैं, गा सकते हैं। पर क्या, कैसे, कहाँ, उसके लिए मैं आपसे उनसे भी बात करा देती हूँ और अजय सर से भी। वेलकम आप लोगों का ऑन फिल्मी नुक्कड़।
1: नमस्कार स्वाति जी, और हम आपसे इस बार जो है सितारों से भरा वीकेंड लेकर आए हैं। दिवाली है तो उसमें तरह तरह के पटाखे, तरह तरह के सितारे, तरह तरह के चीजें होनी चाहिए। तो इस बार हम आपके लिए वो पिटारा लेकर आए हैं जिसमें आपको मनोरंजन के साथ साथ मन और रंजन का जो वो संबोधन है उसका हम आपको एक बहुत बड़ा एक बुके दे रहे हैं। जो मैं कह सकता हूँ कि मुझे 20 साल हुए कनाडा में आए, 2006 में आया था, 2026 है मेरा 20वां साल है। पिछले 20 सालों का जो तजुर्बा, प्यार, मोहब्बत जो टोरंटो से, जो कनाडा से हमें मिली है, हम उसका एक निचोड़ निकाल के इस बार लाए हैं। और हमारे साथ इस साल जुड़ने जा रहे हैं, और इस वीकेंड पे नहीं, अब तो कल विद इन 24 आवर्स वी आर गोइंग टू हैव आवर फेवरेट, आवर पंजाबी भंगड़ा, पॉप, सूफी, ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक। और ये मेरा इनसे पहली बार तारुफ नहीं है, मेरा तीसरी चौथी बार तारुफ हो रहा है। और हम सेलिब्रेशन स्क्वायर में हम इनको पहले भी ला चुके हैं जस्सी साहब को। तो मैं आपका ज्यादा सामान लेते हुए आपकी अब बातचीत करवाना चाहूंगा जसवीर जस्सी साहब से। जस्सी साहब, आप हैं रेडियो ऑन लाइन?
2: जी जी, सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब जी,
1: वेलकम टू टोरंटो।
0: नमस्कार आदाब जी,
2: कैसे हैं
0: आप? फिल्मी नुक्कड़ पे है। मेरा नाम है स्वाति और मेरे बहुत सारे लिसनर्स जो आपके फैन भी हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके गाने तो वो रेडियो पे सुनते ही रहते हैं हमारे।
2: थैंक यू सो मच जी, सबको गुड इवनिंग, सत श्री अकाल।
0: अच्छा ये बताएं, टोरंटो में आपकी पहली विजिट नहीं है जो हमें पता चला, तो हर बार जो आपकी विजिट होती है, इस बार की विजिट और हर बार की विजिट में क्या फर्क लग रहा है?
2: इस बार में तो यही है कि हम, क्योंकि बहुत सारी विजिट हो चुकी है और हम, मुझे पता है कि कैसे लोग जो हैं उनका कैसे मनोरंजन करना है और कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, कितने मल्टी कल्चरल लोग हैं, उनके लिए बहुत सारा मटेरियल जो है हम लेके आए हैं। और जैसे आप अजय जी बता रहे थे कि बहुत सारे आर्टिस्ट भी आ रहे हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत सूफी, फोक, पॉप, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब कुछ ही होगा जी वहाँ पर।
1: और मैं सरप्राइज खोल देता हूँ, मैं सरप्राइज खोलूंगा, मैं यहाँ पे सरप्राइज खोलूंगा जस्सी साहब की परमिशन के साथ कि इस बार जस्सी साहब जो हैं अपने बेटे को भी स्टेज पे ला रहे हैं।
0: जी जी जी,
2: बिल्कुल
1: प्रकाश सिंह इज ऑल्सो गोइंग टू बी विद अस, और कल मेरा उनसे तारुफ हुआ थोड़ी देर के लिए। यंग बॉय, यंग चैप इज गोइंग टू गिव अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ म्यूजिक टू अस, तो वो भी कल हम देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और म्यूजिशियन भी हैं हमारे साथ में, हमारे ओन टोरंटो के सिमरन पुथी हैं, वो भी इस समय गाड़ी में हैं, वो भी शाम को, कल आपकी शाम को और हसीन और मनोरंजक बनाने के लिए रहेंगे वहां पर। सो जस्सी साहब के साथ पे, तो आई ओवर टू जस्सी साहब प्लीज।
2: जी जी जी हाँ, पक्का आप भी, मैं जरूर आऊंगा और सबको मैं बेनती करता हूँ कि आप जरूर आइए और वहाँ पर आपको बहुत सारा जो खजाना है, बहुत अलग अलग तरीके का, अपने अपने एक्चुअली इंडो कनेडियन जो सिस्टम है वो आपको सुनने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा और महसूस करने के लिए, क्योंकि ऐसे जो इवेंट होते हैं ना वो एक आपकी मोमेंट कैप्चर करने वाले होते हैं कि आप उसको अपने साथ ले जाते हो, उसके रेफरेंस अपने साथ रखते हो, तो आपको बहुत सारा मजा आने वाला है, प्लीज जरूर आइए वहाँ।
0: अच्छा जसवीर सर, एक चीज और बताएं, आप इतनी जगह परफॉर्म कर चुके हैं, इतने सारे स्टेजेस पर, इतने सारे स्टूडियोज में, आपको स्टेज ज्यादा मजा आता है या स्टूडियो में?
2: स्टेज का तो अपना ही मजा होता है, क्योंकि स्टेज पे जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो इंस्टेंट आपको रिएक्शन मिलता है, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का भी अपना एक मजा होता है। स्टूडियो तो एक स्ट्रगल होती है, आपका एक होमवर्क होता है कि होमवर्क करके आप स्टूडियो में जाते हो और आपका एग्जाम होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मगर ये तो इंस्टेंट आपको रिएक्शन मिलता है कि आप कैसे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप कोई बात करते हो तो लोग हंसते हैं, आप हिप्नोटाइज कर सकते हो लोगों को, आपका हिप्नोटिज्म जो है वो लोगों के ऊपर हावी होता है, आपके विचार जो है वो हावी होते हैं लोगों के साथ, तो ये तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है ये प्रोसेस से निकलना जो है वो वही अनुभव कर सकते हैं जो इस प्रोसेस से निकलता है।
0: वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
3: मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि लाइफ के अंदर एरर करने का स्कोप नहीं होता, गलती करने का स्कोप नहीं होता। स्टूडियो में तो आप टेक रीटेक कर सकते हैं, अपनी गलती को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ तो जो कुछ है दिल से निकल रहा है और दिल से आप लोगों के सामने लोगों के दिलों तक डायरेक्ट जा रहा है बेताब। लाइव इज लाइव का जो लाइव वर्ड है ना उसका मतलब ये है कि आप उस लम्हे को जी रहे हैं, आप उस मोमेंट को जी रहे हैं और उस लम्हे और उस मोमेंट की यादगार अपने अंदर समेट करके आप सालों साल तक उसको रिमेम्बर करते हैं। सो दैट्स व्हाट द लाइव परफॉर्मेंस इज ऑल।
2: लाइव में लाइफ होती है, बस
0: लाइफ में लाइफ होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जसबीर सर, और मैं बहुत उत्सुक हूँ आपको परफॉर्म करते देखने के लिए। आई एम श्योर आपके जितने भी फैंस हैं टोरंटो में, दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू। बस इंतजार है कि आपको स्टेज पे देखें और आपके जितने भी गाने हैं जो हम सभी की पसंद के हैं उन्हें हम आपको लाइव परफॉर्म करते हुए सुने। आपका फेवरेट कौन सा है इतने सारे लाइनअप में से?
2: बहुत सारे हैं, जैसे लौंग दा लिश्कारा भी मैं सुन रहा था, लौंग दा लिश्कारा भी है और निशानी प्यार दी जो है, आला गढ़ विच पाले ने गानी यार दी, वो फोक के साथ जो जुड़े हुए गाने हैं वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। दिल्लैगी है, दिल्लैगी में मतलब मुझे जिंदुआ अच्छा लगता है। तो ये तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो सारे अच्छे लगते हैं।
0: चले, वहाँ बहुत सारे लोग आपके इन सारे बच्चों को सहारने के लिए आ रहे हैं और सराहना करने के लिए, और वी लव यू, सो वी रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस परफॉर्मेंस।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू,
3: थैंक यू दसी सर, और डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड टू योर ग्रेट परफॉर्मेंस टुमारो नाइट। कल शाम 7:30 तक पहुंच जाएं, अपना सबसे बढ़िया स्थान ग्रहण कर लें, उसको रिजर्व कर लें, ब्लॉक कर लें, क्योंकि 8:00 जस्सी सर जो हैं वो स्टेज पे आ जाएंगे। 7:00 हमारी ओपनिंग सेरेमनी है, हमारे पास बहुत अच्छे एमपी आ रहे हैं, पहले हमारा लाइव परेड है, सो ढोल के साथ हमारी लाइव परेड होगी, उसके बाद कुमार शर्मा जी की परफॉर्मेंस होगी और उसके बाद स्टेज विल बी हैंडेड ओवर टू आवर ओन जस्सी साहब। तो 7:00 तक आप आ जाएं, इस शाम को एंजॉय करें, एक फोक सूफी पंजाबी म्यूजिक की शाम आप एंजॉय करेंगे और इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखते हुए सैटरडे को हमारे पास में चंकी पांडे साहब की परफॉर्मेंस होगी, उसके साथ कम से कम 1200 और आर्टिस्ट हैं उस दिन जो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज डांस परफॉर्मेंसेज करेंगे। शाम को खास साहब की हमारे पास परफॉर्मेंस है जिनको की वो भी अगेन सूफी और कव्वाली और एक नया आयाम आपके सामने पेश करेंगे। संडे को हमारे पास में ऋचा शर्मा जी हैं और इस बिटवीन मैं कहना चाहूंगा कि पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री द 4-time नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर मिस्टर विवेक अग्निहोत्री इज हियर और 3-time नेशनल अवार्ड विनर पल्लवी जोशी जी इज हियर। उनकी पांचों छहों फिल्म का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वैक्सीन वॉर जो हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं नाना पाटेकर साहब जिनको हमने कल खो दिया, एक बहुत अफसोस की बात है, सारे हर्षोल्लास में एक बहुत ही जिसे कहते हैं फाइन एक्टर, फाइन एक्टर भी नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तानी सिनेमा की वो एक वो बुनियाद एक वो चीज है जिनको हमने खोया, तो उनकी ट्रिब्यूट के अंदर हमने वैक्सीन वॉर जो है फ्री स्क्रीनिंग की है, तो लोग जल्दी से रजिस्टर करें, वैक्सीन वॉर को वॉक करें जिसके अंदर की नाना साहब की मेन एक्टिंग है, विवेक अग्निहोत्री साहब की फिल्म को डायरेक्ट की हुई है, प्रोड्यूस की हुई है, उस फिल्म को एंजॉय करें। उसके अलावा द बंगाल फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, द ताशकंद फाइल्स, ये सारी फिल्में हम दिखा रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जाके रजिस्टर करें, हमने ये फिल्में सब फ्री कर दी गई हैं, तो आप लोग आए एंजॉय करें और आपको कन्वर्सेशन भी मिलेगी विवेक अग्निहोत्री साहब के साथ, पल्लवी जोशी जी के साथ में वर्कशॉप भी है। सो इन सब चीजों का इस बार आनंद उठाएं, दिवाली फेस्टिवल इज ऑल अबाउट आर्ट कल्चर म्यूजिक डांस फूड फेस्टिविटीज, दिवाली एंड अबव ऑल आप और हम मिल करके इस फेस्टिवल को एक अलग तरीके से, लाइक वासुदेवा है कुटुंबकः जो हमारे भारत का एक बेसिक मंत्र है, यस यूनिवर्स इज वन बिग फैमिली, और हमने उसी को मद्देनजर रख के दिस यूनिवर्स इज वन बिग फैमिली, हमने सारी तरफ से सब तरह से अलग सितारों को जोड़ करके आपके लिए हसीन शाम, एक हसीन हफ्ता जो है, वीकेंड का लॉन्ग वीकेंड है, मौसम बहुत अच्छा है, 20-22 टेम्परेचर है, तो आइए इंजॉय कीजिए, फ्री पार्किंग है, फ्री फेस्टिवल है, फ्री कॉन्सर्ट्स हैं, आपको इसके लिए एक चवन्नी भी नहीं खर्च करनी है, मतलब चवन्नी हम इंडिया की करेंसी लेते हैं, यू डोंट हैव टू इवन स्पेंड अ सिंगल पेनी टू बी देयर, All you need is to come there, enjoy. There is a lot of food, there is a lot of shopping, there is a lot of other things for you to be there. हर किसी के लिए हर तरह का मनोरंजन है.
0: जसवीर सर, अगर आप अभी भी हैं तो एक लाइन सुनाएंगे बिफोर आई लेट यू गो. मुझे लगता है जसवीर सर शायद हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं. बट अजय जी, या बट कोई बात नहीं, अब हम सीधे
3: जानकारी लेनी हो आप canadadiwali.ca हमारी वेबसाइट है, उस पे जाएं, उस पे हमारे से कोई भी कनेक्शन करना हो, कोई भी इंक्वायरी लेनी हो, टाइम शेड्यूल चेक करना हो, कौन कौन से आर्टिस्ट कब परफॉर्म कर रहे हैं वो पता करना हो, तो आप उस पे जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए. और वी लुक फॉरवर्ड टू ऑल, कम वन, कम हंड्रेड, कम थाउजेंड, कम एवरी वन टुमारो टू मिसेस आगा सेलिब्रेशन स्क्वायर एंड एंजॉय अ मेमोरेबल इवनिंग.
0: परफेक्ट. एंड मैं सबको ये बताना चाहूंगी, जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, आई विल बी देयर टुमारो एज वेल. हम लाइव एंड लोकेशन भी करेंगे वहां से, एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू. बट मैं सजेस्ट यही करूंगी आप पहुंचे वहां पे मेरे साथ, आप लाइव एंड लोकेशन करें वहां से, क्योंकि रेडियो पे क्यों सुनना, सीधे वहीं जाके सुने जसवीर जसी सर को तो आनंद ज्यादा आएगा. चलिए, थैंक यू अजय सर, कल मुलाकात होती है आपसे.
3: थैंक यू जी, थैंक यू
0: एंड गुड लक.
4: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती.
5: मगर क्यों, पिताजी नहीं माने क्या?
4: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं ना तुम अच्छा गाते हो.
5: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
0: हाँ, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा. रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव.
6: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं. तेजा,
7: हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं, हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे.
8: आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे.
7: भूल कैसे गए, हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे.
9: चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते.
0: वाह वाह, क्या तो डायलॉग और क्या तो डायलॉग डिलीवरी, कि मतलब आप किसी के हाथ में चाकू भी देखते हैं ना तो यही डायलॉग मुझे निकलता है. एंड आई गेस सारे के सारे चिनॉय सेठ इन पूरी दुनिया, इवन ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, आफ्टर दिस डायलॉग वाज डिलीवर्ड इन वक्त, अपने शीशे के घरों को बचाने में ही लगे होंगे. पत्थर हाथ में उठाना तो फिर दूर की बात है. वेल, राजकुमार साहब को अब यूं ही तो डॉन ऑफ डायलॉग डिलीवरी नहीं कहा जाता था, बीट इन एनी मूवी. और जो ये एटीट्यूड था ना उनका, ये उनकी शख्सियत में ही था. सौरभ मोदी ने मूवी थिएटर में उन्हें देखते ही फिल्म ऑफर कर डाली थी, एंड उन्होंने साफ मना भी कर डाला था. पर कहते हैं ना, करियर करियर पर लिखा है उसको करने वाले का नाम. तो फाइनली ही एंडेड अप इन मूवी इंडस्ट्री एंड यू नो ही वाज अ हिट एक्टर. कहते हैं बेबाक इतने थे कि अजीब और अलग टाइप डेफिनेटली लगते थे, बट बोरिंग वो तो वो बिल्कुल नहीं थे. बट वेल, राजकुमार साहब की आज है बर्थ एनिवर्सरी, तो नेक्स्ट वन इज माई फेवरेट फ्रॉम पाकीज़ा, कमिंग अप नेक्स्ट.

0: 3FM
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। पेश खिदमत है सबसे पहले हेडलाइंस। पीटीआई से मुज़ाकरात का अंदिया, मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म से जल्द राब्ते का इम्कान। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दों की हमायत की कीमत, पुलिस मुसल्ह अफवाज और शहरी अदा कर रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का बयान। अपोजिशन कायदीन ने मुज़ाकरात को इमरान खान की मुलाकात से मशरूत कर दिया। PTI के लॉन्ग मार्च का प्लान तब्दील, नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। ECC के इजलास में पंजाब KP इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। PTI का 8 अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली के गिरफ्तार होने का दावा। सूबे में गवर्नर राज लगाने की साजिशें की जा रही हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। 190 मिलियन पाउंड के मामले में बुशरा बीबी की जमानत का केस वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। ये थी अब तक की खास खास खबरें। खबरों की तफसील होगी ठीक 8 बजे। सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।
3: खास खास खबरें बिलाल तमाम साहब आपके लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबत के नंबर 4165930003। गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 193.60 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए, वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए, gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट 193.60 रुपये। कॉल कर लीजिए 9053060000 थर्सडे आपको पवन मिड्डा साहब से मुलाकात करवाते हैं। मिड्डा फर्नीचर आपको लिए चलेंगे। आलम लॉ ऑफिस से आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ होते हैं। ब्राम्पटन टीवी अप्लाइंसेस से सुल्तान राणा साहब और शिबान हसन साहब इंश्योरेंसेस के हवाले से आप तक मालूमात पहुंचाया करते हैं। तफसीली खबरें होंगी 8 बजे। लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए आप हमारे साथ रहना है। 9 बजे तक मैं आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ। मेरे छोटे भाई सामिन, हक वाले को उसका सही हक मिल जाए तो ही इसे अदल कहते हैं। मुजरम को उसके जुर्म के मुताबिक सजा मिल जाए तो अदल कायम हो जाता है। किसी तराजू तोलने वाले को गौर से देखा जाए तो मालूम होगा कि दोनों पलड़े किस तरह हम वजन किए जाते हैं। इसी हम वजन करने को ही तो अदल कहा जाता है। तराजू को डंडी नहीं मारनी चाहिए। कम तोलना, कम वजन के औजान इस्तेमाल करना अदल नहीं बल्कि जुल्म है। मिलावट करके वजन बराबर करना भी इसी जुल्म का हिस्सा है। अदल का मैदान बड़ा वसी है। ये इंसान की तन्हाई से शुरू होकर मैदान हशर तक फैला हुआ है। जो शख्स अपनी तन्हाई से अदल नहीं करता वो ज़िंदगी में क्या अदल करेगा। यानी ख्याल अदलाना ना हो तो अमल भी अदल नहीं होता। जाहिर और बातिन में फ़र्क रखने वाला ही जालिम है। एक से ज़्यादा जिंदगियां गुजारने वाला आदिल नहीं हो सकता। आदिल हमहाल आदिल है। इसकी बात अदालत में, इसकी खामोशी अदालत, इसकी गवाही अदालत, इसके फैसले अदालत और इसकी ज़िंदगी अदालत और इसकी मौत भी एक बहुत बड़ी अदालत है। अदल करना सिर्फ खौफ खुदा और फजल खुदा से ही मुमकिन है, वरना एक बड़ा मुश्किल काम है। आदलाना ज़िंदगी ही पुल सरात है। आदिल बनने की बुनियादी शर्त यह है कि इंसान पहले ये सोचे कि कौन सा दीन अदल और मसावात के लिए सही माहौल पैदा करता है। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। मैं आपको होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज। इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू।